0: ये जो जीवन की लय है, सब कुछ पहले से ही तय है। इसलिए जय रघुनंदन, जय सियाराम।
1: श्री रामचंद्र आशीष
0: पारिजात, तुम्हें प्रणाम। आप सुन रहे हैं

जय रघुनंदन, जय सिया राम। आप सुन रहे हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रेडियो का ये खास प्रोग्राम हमारे संग संगीता माल्या दुबई से। और जब राम जी

आप सुन रहे हैं पायो जीवने राम रतन मोहन पायो प्रोग्राम राम रेडियो से डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये राम रेडियो है। आपकी आवाज आपकी पहचान। आज की पायलट सिंगर

अद्भुत अनुपम छवि श्री राम की और अपने शब्दों से अपनी आवाज से

ऐसा ही सुख हमें मिला है इस प्रोग्राम को सुन के संगीता जी। पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। बहुत आभार इस प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट को सार्थक

0: डिजिटल वॉइसवर राम रेडियो का विशेष आयोजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
1: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो।

0: आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेतु दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल हैं, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्या शंकर, गायत्री जगन्नाथन, आभा माथुर, शर्मिष्ठा सारंगी और स्वयं मैं।

यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपी आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठें खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठें खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाएं तो एक चीज हमारे बीच स्वरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधि भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, एमडी त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मोंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
4: आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न तो कोई आरंभ है और न कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ भोर भर

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सत्युग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप ले।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

बहुत खूब दोस्तों, आदि शक्ति को सनातन निराकार परब्रह्म जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ, और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर, और भाव से चलें तो बहुत पास। नजरों से देखें तो कण कण में, और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, आप सभी के जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा क्षण अवश्य आया होगा जब आपने अपने अंतर्मन के तार उस अलौकिक आदर्श शक्ति से जुड़े हुए महसूस किए होंगे। कुछ ऐसे ही अनुभूति ये भजन सुनकर आपको अवश्य होगी, जिसे लेकर आ रहे हैं संजय गुप्ता जी।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मजरू सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है तिरुनेलवेली से।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए

संजय जी, आपने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बेहद खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं।

0: वाह संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मोन्द्रा।
1: बोल साचे दरबार।

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाए समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्कार।

जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

एक ऐसा सिंगर जो न केवल बॉलीवुड को पूरी तरह एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहा, बल्कि इस यूनिवर्स को एक ऐसी आवाज दे गया जिसको सुनकर हम ईश्वर, भगवान या अल्लाह की आवाज की कल्पना के नजदीक पहुंच जाते हैं। आज के इस एपिसोड में आवाज के इस सम्राट को अपना स्वर नमन दे रही थी अर्जुन रानू 16 और आपका साथ दे रहे थे अनिल शर्मा 1961। और अब आंखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत को इस मंच पर लेकर आए हैं अर्जुन रानू के संग सोनी शिवकुमार।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चू रानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर। हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चू रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मुनमुन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है, लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो जीवन की रीत है। ये जीवन है, जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। इस गीत में साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का फनी भूषण। और अब राजा रानी क्या कह रहे हैं अपनी सुरीली आवाजों में, किशोर फॉर यू आए हैं अर्जुन रानू के संग इस शॉर्ट वर्जन में।

राजा रानी की प्यार की कहानी हमने सुनी अर्जुन रानू और किशोर फॉर यू की जुबानी इस गीत में, और इस सुरीले से शॉर्ट वर्जन के साथ ही जयपुर रेडियो के इस मंच से मैं आरजे भूमिका आपको एक बार फिर बतला देती हूँ इस मंच के नंबर। हमारे नंबर हैं 9352-784-724। इस नंबर पर आप अपना सिंगिंग का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज की ये सुरीली सौगात सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग यहीं तक। आरजे भूमिका को विदा दें। नमस्कार।

बहुत शुक्रिया आरजे भूमिका। और इसके बाद अब आ गए हैं हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग, और अनुराग लेके आए हैं अपनी सुरीली आवाज में अपने गाए हुए कुछ गीत। आइए शुरुआत करते हैं, सुनते हैं आपका ये पहला गीत।

प्यार मांगा है तुम्हें से ना इनकार करो। और ये आवाज रही हमारे सुरीले सिंगर अनुराग की। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास एपिसोड। हमारे संग है अर्चुरानो 16 और अनुराग सिंगर के रूप में। आइए सुनते हैं अगला गीत अनुराग की आवाज में।

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, और यदि गीतों से प्यार हो जाए, बेशुमार हो जाए, तो आप जयपुर रेडियो पर आ जाएं। यही कह रहे हैं अनुराग, हमारे आज के मेल सिंगर। आपकी आवाज, आपकी पहचान और बहुत सारे तकनीकी कारणों के वजह से हम अनुराग से यही अनुमति लेंगे और जारी रखेंगे प्रोग्राम। भूमिका आज के सिंगर अर्चुरानू के संग।
1: और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चू रानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुल रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चुल रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चुल रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मुनमुन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है, लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो जीवन की रीत है। ये जीवन है, जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। इस गीत में साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का फनी भूषण, और अब राजा रानी क्या कह रहे हैं अपनी सुरीली आवाजों में, किशोर फॉर यू आए हैं अर्जुन रानू के संग इस शॉर्ट वर्जन में।

राजा रानी की प्यार की कहानी हमने सुनी अर्जुन रानू और किशोर फॉर यू की जुबानी इस गीत में, और इस सुरीले से शॉर्ट वर्जन के साथ ही जयपुर रेडियो के इस मंच से मैं आरजे भूमिका आपको एक बार फिर बतला देती हूँ इस मंच के नंबर। हमारे नंबर हैं 9352-784-724। इस नंबर पर आप अपना सिंगिंग का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज की ये सुरीली सौगात सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग यहीं तक। आरजे भूमिका को विदा दें। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, फिल्मों का नाम लेते ही हॉलीवुड और बॉलीवुड का नाम तुरंत जहन में आ जाता है। वैसे तो फिल्में 1940 से बन रही थीं, पर उनका सुनहरा समय 1970 से शुरू हुआ, जिसमें एक से एक हिट फिल्म्स रिलीज हुईं, जैसे कि मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरा नाम जोकर, जीवन मृत्यु, सफर, आपकी कसम, लोफर, प्रतिज्ञा, कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, यादों की बारात, डॉन, शोले, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्म्स। ये वो फिल्में थीं जिनकी स्क्रीनिंग सालों तक चलती रहीं और जिनका संगीत आज तक अमर है। चलिए आज उसी दौर के कुछ यादगार नगमे सुनते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 1970 की एक फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, जिसमें धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर थीं। इस फिल्म का झूमता संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं अनिल जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूबसूरत गीत पेश किया। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1970 की फिल्म जीवन मृत्यु से है, जिसमें धर्मेंद्र और राखी थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। आइए इसी फिल्म का प्यार भरा गीत सुनते हैं डॉक्टर आदेश और डॉक्टर तरुणा जी की मधुर आवाज में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1970 की एक सुपरहिट फिल्म सफर से है, जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर थीं। इस फिल्म का मदभरा संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने और खूबसूरत गीत लिखे इंदिवर जी ने। असित सेन को इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। आइए इसी फिल्म का एक मदभरा गीत सुनते हैं विद्या जी और विश्वजीत जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूबसूरत गीत पेश किया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1973 की एक सुपरहिट फिल्म लोफर से, जिसमें धर्मेंद्र और मुमताज थीं। इस फिल्म का मस्ती भरा संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। आइए इसी फिल्म का ये खूबसूरत गीत सुनते हैं मुकेश गुलानी और किशोर जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूबसूरत प्रस्तुति थी। फिल्म लोफर के गीत और संगीत बेहद मस्ती भरे थे, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी जी का जादू भरा हुआ था। आइए इसी फिल्म का एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं गायत्री जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या समा बांध दिया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1974 की एक और सुपरहिट फिल्म आपकी कसम से, जिसमें राजेश खन्ना और मुमताज थीं। इस फिल्म का झूमता हुआ संगीत दिया आरडी बर्मन जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने, जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म का संगीत उस साल का बिना का गीतमाला की सरताज गीतों में भी था। आइए इसी फिल्म का एक मजेदार गीत सुनते हैं किरण नाडकर्णी और श्वेता सम्बा सिवन जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1975 की फिल्म प्रतिज्ञा से है, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थी। इस फिल्म का मस्ती भरा संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। कहा जाता है कि मोहम्मद रफी जी ये गाना गाते हुए नाच रहे थे और धर्म जी को बोले कि मैंने अपना काम कर दिया भाई, अब आगे आपका काम। इसी फिल्म से धर्म जी को उनका सिग्नेचर स्टेप भी मिला। आइए इसी फिल्म का ये मस्ती भरा गीत सुनते हैं संजय हारने और संजीव जी की मधुर आवाज में।

क्या शानदार प्रस्तुति थी। आइए अगला गीत सुनते हैं 1976 की मशहूर मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्म कभी कभी से, जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, ऋषि कपूर और नीतू सिंह थीं। इस फिल्म का शानदार संगीत दिया खय्याम जी ने और गीत लिखे साहिर लुधियानवी जी ने, जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म को फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट मेल सिंगर, बेस्ट डायलॉग्स अवार्ड भी मिला। आइए इस फिल्म का एक गीत सुनते हैं मेरी और वरुण जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत सुनते हैं 1976 की फिल्म नागिन से, जिसमें सुनील दत्त और रीना रॉय थीं। इस फिल्म का संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे वर्मा मलिक जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं तनुजा मुंद्रा और संजय गुप्ता जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूब गीत पेश किया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1978 की एक सुपरहिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, जिसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा और राखी थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया कल्याण जी और आनंद जी ने और गीत लिखे अनजान ने। आइए इसी फिल्म का ये शानदार गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत सुनते हैं 1978 की एक और सुपरहिट फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, जिसमें शशि कपूर और जीनत अमान थी। इस फिल्म का बेहद मशहूर संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं इंदिरा जी की मधुर आवाज में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूं कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूं।
1: दीदी देखो ना, मेरी स्किन कितनी रफ और ड्राई हो रही है, और ये पिंपल्स। लेकिन आपका फेस इतना ब्राइट और ग्लोइंग कैसे है?
2: देख छोटी, तुझे कितना समझाया था कि ये केमिकल्स वाले प्रोडक्ट मत यूज किया कर। देख मेरे पास है जादू जेएमडी का एलोवेरा जेल, जो कि 100% आयुर्वेदिक है और स्किन की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है।
1: अरे वाह, अब तो ये जादू मेरे पास भी है।
3: जेएमडी, वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
4: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले धिधिन तिनक धिन, धिधिन तिनक धिन। अरे हल्ले हल्ले किम, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का जगमगाता प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। आज हम भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक झिलमिलाता सितारा लेकर आए हैं, जो कि न सिर्फ अपने गीतों से बल्कि अपने काम से भी लोगों की जिंदगियों में खुशियां भर देते हैं। जी हाँ, अपने श्रोताओं की मुलाकात करवा रहे हैं जयपुर के जाने माने सर्जन डॉक्टर मनीष कल्ला से। स्टूडियो में स्वागत है आपका मनीष।
2: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर रेडियो के डिजिटल स्टूडियो के अंदर आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये हमारी खुशनसीबी है मनीष। तो सबसे पहले हमें आप जयपुर के बारे में बताइए। आज के समय में ये शहर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए बहुत जाना जाता है, और इसके साथ ही कुछ अपने बारे में भी बताइए।
2: सबसे पहले मैं आप लोगों का एक बार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। जहाँ तक रहा सवाल जयपुर शहर का, जयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पिंक सिटी
1: जी,
2: एंड इस गुलाबी नगरी की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी खासियत यहाँ का खाना, यहाँ की रजवाड़ी पोशाकें और यहाँ के राजमहल, और इसी की वजह से पूरी दुनिया से लोग बाग यहाँ पर ना सिर्फ रहने के लिए बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स, रिसोर्ट इन सब के लिए आते हैं। मैंने, मेरी ये खुशनसीबी है कि मैंने SLS मेडिकल कॉलेज, जो जयपुर राजस्थान, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां से मैंने अपनी डिग्री प्राप्त करी।
1: क्या बात,
2: मैं यही का पला बड़ा हूँ। और जहां तक रहा कि मेरी मदर भी डॉक्टर थी, और आज की तारीख में अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी मदर डॉक्टर थी।
1: अरे वाह, ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात बताई हमें। और इसी के साथ मनीष, हम आपका पहला गीत लेते हैं, क्या सुनवा रहे हैं हमें?
2: मेरी मदर का फेवरेट सिंगर थे मोहम्मद रफी साहब, उनका एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, आज की रात मेरे दिल की सलामी दे।
1: अरे
2: आज चूंकि मैं आया हूँ तो आप लोग मेरे दिल की सलामी दे।
1: जी जी जी जी, तो दीजिए आपका गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।

0: अच्छी खूबसूरत सलामी आपके दिल ने दी हमारे श्रोताओं के लिए मनीष, मजा आ गया। तो पेशे से आप सर्जन हैं, बहुत ही बिजी लाइफ होगी आपकी। हम ये जानना चाहते हैं कि संगीत में आपकी रुचि कैसे बनी और इस शौक का आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों से तालमेल कैसे बिठाते हैं।
1: मेरी संगीत की रुचि जो है वो मेरी नानी जी की वजह से बनी। मुझे मेरी नानी जी और नाना जी ने पाला पोसा, तो क्योंकि उन्होंने पाला पोसा तो मेरी नानी जी जो थी क्लासिकल म्यूजिक टीचर भी थी और सिंगर भी थी, तो वहां से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उनकी कॉपी करते करते उनसे थोड़े बहुत गुर सीखते सीखते मैंने गाना शुरू किया। तो 5 साल की उम्र में जब स्कूल के अंदर मेरा पहला स्टेज प्रोग्राम हुआ उस वक्त मेरी नानी जी थी वहां पे, तो यहाँ से मेरा संगीत का सफर शुरू हुआ।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज आप हमारे पास स्टूडियो में आए हुए हैं तो हम इस बात का फायदा उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए आप अपनी मीठी सी आवाज में कुछ यहीं पर दो लाइनें गुनगुना दीजिए अपने किसी भी पसंदीदा गीत का।
1: जी, ये अभिजीत जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, एक था दिल एक थी धड़कन मूवी से।
0: जी जी।
1: रेशम जैसी है राहें खोले हैं बाहें वादियां। और अभी बरसात के मौसम में इससे बेहतर गाना और कोई होगा।
0: वाह मनीष वाह, आपकी सुर और ताल की समझ की दाद देनी पड़ेगी, आपने बेहद खूबसूरती से समा बांध दिया। तो हम अपने श्रोताओं को जल्दी ये गाना सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि अपने शौक का आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों के साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं।
1: संगीत एक ऐसी दवा है जो सारे सारे मर्जों का इलाज है।
0: जी,
1: तो जहाँ कभी भी मैं थक कर आता हूँ और परेशान सा होता हूँ तो यही एक जगह है जो मुझे पनाह देती है। आता हूँ, सुनता हूँ, गुनगुनाता हूँ, गाता हूँ, अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ। और इसी तरीके से मेरी जो टॉक्सिसिटी है, बिकॉज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी।
0: जी जी।
1: व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर और लेस मेंटल हेल्थ, म्यूजिक एक सबसे अच्छी थेरेपी है जो सारी की सारी टॉक्सिसिटी को निकाल कर आपको एकदम से तरोताजा महसूस कर पाती है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से जो एप्स बनी है उससे बहुत मदद मिल रही है। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि इस म्यूल ऐप पर डॉक्टर मनीष कल्ला एक जाने माने सिंगर हैं और इनकी एक बड़ी स्ट्रांग फैन फॉलोइंग है वहां पर। तो इसी के साथ हम आपका गीत सुनवाते हैं।

0: बहुत खूब मनीष। आजकल सोशल मीडिया पर आता रहता है अक्सर कि कुछ डॉक्टर्स अपने मरीजों के इलाज के वक्त नाचते भी हैं, गाते भी हैं। कोविड के वक्त से शायद ये चलन शुरू हुआ, तो क्या आप भी अपने पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसा करते हैं?
1: ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल मुझसे किया, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर और जब मैं जूनियर सर्जन हुआ करता था, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम लोगों का ये तब से ही रिवाज था। गाने चलते रहते थे वहां पर पुराने, मोहम्मद रफी साहब के, किशोर कुमार साहब के, और हम लोग गुनगुनाते रहते थे, हम लोग गाते रहते थे। उससे हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद मिलती थी, और उसके साथ साथ जो कि सर्जरी का प्रेशर हम लोगों के ऊपर आ रहा है वो निकल जाता था दिमाग से। तो हम लोगों की तो ये परिपालना ये काफी लंबे समय से है, और आज की तारीख के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि संगीत जो है वो आपकी आत्मा को, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। तो उसी की वजह से आज की तारीख के अंदर म्यूजिक थेरेपी हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि पेशेंट को, और इस तरीके की चीजें आई हैं सामने जहां पर इवन कैंसर के मरीज तक म्यूजिक थेरेपी से, उन लोगों का पेन काफी कम हुआ है। तो म्यूजिक बहुत ही अच्छा है मेंटल हेल्थ और पेन के लिए, इवन बच्चों के लिए भी। अगर आप जो है कुछ गुनगुनाते हैं तो उनको तुरंत से नींद आ जाती है, वो तुरंत से शांत हो जाते हैं। इट इज अ मेडिसिनल प्रेस्क्रिप्शन नाउ डेज।
0: क्या बात है, ये तो वाकई एक बहुत ही दिलचस्प बात आपने बताई है, और लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि संगीत का क्या इम्पोर्टेंस है हम सबकी लाइफ में। तो इन सभी दिलचस्प बातों से एक छोटा सा विराम लेते हैं और आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं।

0: मनीष कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे कोई खड़ा रहता है जो कि उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, उसे मॉरल सपोर्ट देता है। तो आप अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा और किसे देना चाहेंगे?
1: मैं सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को इस चीज का धन्यवाद देना चाहूंगा। महादेव का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं कोशिश करता हूँ महादेव की कई भी चीजों के ऊपर आचरण करने का। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर पृथ्वी की कम बात करूँ तो मेरे नाना नानी का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया। मेरे अंदर जो भी वैल्यूज डाली गई उनके थ्रू डाली गई। एंड उसके बाद मैं मेरी माँ का, क्योंकि मेरी माँ अगर डॉक्टर नहीं होती तो मैं नहीं होता, ये बात मैं पहले भी बता चुकी
0: हूँ।
1: और इन सारी चीजों के साथ साथ जिस एक और इंसान का जिसका मैं बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, वो है मेरी अर्धांगिनी ऋचा।
0: वो क्या बात है,
1: मेरे सपोर्ट में अगर वो नहीं खड़ी होती तो जितनी जगहों पर मैं बाहर गया, आज की तारीख में भी मैं अफ्रीका में हूँ, मैं अफ्रीका में सिर्फ इसीलिए हूँ कि कहीं ना कहीं उसने मुझे ये संबल दिया हुआ है, ये कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि नहीं आप वहाँ पर काम कीजिए, मैं यहाँ पर परिवार संभालती हूँ।
0: जी,
1: तो ये सारी चीजें, एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग वुमेन, इट इज नॉट दैट शी इज नॉट अ वर्किंग वुमेन। तो ये सारी की सारी चीजें, कई सारी जगहों पर उसने भी सेक्रीफाइस किया है, कई सारी जगहों पर मैंने भी सेक्रीफाइस किया, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली इफ शी हैड नॉट सपोर्टेड मी आई वुड नॉट हैव बीन इन दिस।
0: बहुत ही आप धरती के साथ जुड़े हुए इंसान हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में मनीष जी बात यह है कि बहुत लोग कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही होते हैं जो वाकई श्रेय अपने परिवार वालों को देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर। तो हम और हमारे श्रोता चाहेंगे कि इन सब के लिए जिनको भी आपने श्रेय दिया है, आपकी अर्धांगिनी, आपकी मम्मा और आपके नानी नानू, उनके लिए आप एक गीत हमें प्यारा सा सुनवा दीजिए।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष कल्ला। आपसे ये गुफ्तगू बहुत ही मजेदार रही। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए दो शब्द कह जाइए।
1: सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर आपके और आपके श्रोताओं के समक्ष खड़ा हूँ।
0: थैंक यू।
1: और श्रोताओं के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि संगीत गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात डॉक्टर मनीष कल्ला के साथ, जो कि जयपुर के जाने माने सर्जन हैं और फिलहाल साउथ अफ्रीका में किसी काम से वहां पर रह रहे हैं। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में उन्होंने आने के लिए अपनी मसरूफ जिंदगी से कुछ टाइम निकाला। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारे के साथ। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहे। रब राखा।

0: महफिले गजल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्ते, आदाब। सुनने वालों को लक्ष्मी का प्यार भरा सलाम। आओ झूमे गाये के जानिब, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आज के इस महफिल में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, जगजीत जी ने बेशुमार गजलों को अपनी रूह परवर आवाज से सजाकर हमेशा के लिए हयाते जावेदा बख्श दी है। ताहम कुछ अनमोल जवाहरात हैं जिनमें खूबसूरत शायरी, बेपनाह मौसीकी और अजीम पेशकश मौजूद हैं। उन्हीं नायाब मोतियों में से एक मोती यानी एक एल्बम को रेयर जेम्स का एजाज हासिल है। आज के महफिल के फनकार उसी एल्बम से कुछ चुनिंदा गजलों को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगी जनाब मनीष सूद जी को। वे हमारे लिए पेश करेंगे जब भी आती है तेरी याद, जिसके शायर हैं कृष्णा अदीब साहब। मनीष सूद जी।

वाह मनीष जी, आफरीन आफरीन, क्या खूब पेशकश थी। ये थे मनीष सूद जी, अपने खूबसूरत अंदाज और गुदाज भरी आवाज में इस गजल को इन्होंने पेश किया। दोस्तों, हमने अभी अभी सुना था कि जब हमें और आपको किसी की याद आती है तो हमारी कैफियत क्या होती, लेकिन क्या आलम होगा जब वह शख्सियत आपसे रूबरू हो। ना मजा है दुश्मनी में, ना है लुत्फ दोस्ती में, कोई गैर गैर होता, कोई यार यार होता। तो चलो हम चित्रा सिंह जी की पुरसोस आवाज में पेश करदा दाग दहलवी की एक हसीन गजल को समाप्त करते हैं। जयपुर रेडियो के लिए इसे पेश करने आ रही हैं शोमा सी रॉय। अजब अपना हाल होता जो विसाल यार होता,

वाह, बहुत खूब शोमा जी, बेहतरीन पेशकश। दोस्तों, जब दो दिल एक दूसरे की चाहत में जज्बातों की आंधी से गुजरते हैं, वह जज्बा है इश्क। लेकिन जिगर मुरादाबादी साहब कहते हैं, जिंदगी न देख जलवाए आफताब बन, शौक को रहनुमा बना जर्रे में रोशनी न देख, क्योंकि इश्क फना का नाम है। इस खूबसूरत गजल को अपनी सुरीली आवाज में पेश करने आ रही हैं अनुराधा जी।

वाह अनुराधा जी, बहुत खूब। ये जयपुर रेडियो पर आपकी पहली पेशकश थी जिसे आपने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, आपका ये सफर यूं ही चलता रहे। दोस्तों, जनाबे जिगर मुरादाबादी ने ना सिर्फ उर्दू गजल को एक पहचान वो परवाज बख्शी बल्कि शहनशाह तगज़ल का खिताब भी हासिल किया। इनकी एक मशहूर गजल जो इंसानी जज्बात व एहसासात को खूबसूरत अंदाज में बयां करती है, सुनते हैं इसे डॉक्टर अंकित अवस्थी की आवाज में। मुझे दे रहे हैं तसल्लियां जनाब अंकित अवस्थी जी।

वाह अंकित जी, सदा फ्री। दोस्तों, गजल एक ऐसा फन है जिसमें महबूब से बातें होती हैं। इश्क मोहब्बत के जज्बात को लफ्जों में पिरोकर गुनगुनाया जाता है, साथ ही साथ गजल के जरिए शिद्दते गम का भी इजहार किया जाता है। इसमें टूटे हुए दिलों के लिए मरहम मुदावा का भी सामान होता है। अब हम दावत देते हैं आशुतोष भट्ट जी को, ये पेश करेंगे कृष्ण अदीब जी की ये नज्म शहरों शहरों आज है तन्हा। जनाब आशुतोष भट्ट जी।

वाह आशुतोष जी, बहुत खूब, क्या कहने, आपने तो कमाल ही कर दिया। दोस्तों, 19वीं सदी में मुगलिया सल्तनत का जाहो जलाल अब जवाल का शिकार हो चुका था। तभी दिल्ली उर्दू के अजीम शायरों का मरकज बन गया था, जिनके शहंशाह मिर्जा असदुल्ला खां गालिब थे। गालिब साहब न सिर्फ इश्को मोहब्बत और सोजो शराब की बातें करते थे, बल्कि जिंदगी की नशेबो फराज के बारे में भी अपने ख्यालों और जज्बों का इजहार करते थे। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि उन्होंने तकरीबन आधी जिंदगी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अपना मुकदमा पेश किया और सालों पेंशन की बहाली के लिए कानूनी चाराजोई करते रहे। और ये ऐसी शख्सियत थी जिसकी शायरी इस्तियारों से पुर थी। वह अपनी एक गजल में मजा से भरा एक कानूनी इस्तियारा यूं पेश करते हैं। फिर खुला है दरे अदालत नाज, गर्म बाजार ए फौजदारी है। तो चलिए सुनते हैं संजीव नागर जी की आवाज में इस बेहद खूबसूरत गजल, जनाब संजीव नागर जी।

Always, always, always available to fill our hearts. Especially जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है. नेक्स्ट प्यारा सा गीत सुनाने आ रही हैं दो ब्यूटीफुल मदर्स themselves, तानिया और गायत्री. इसे फिल्माया गया था वरुण धवन पे. इवन ही गॉट इमोशनल लिसनिंग टू इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सॉन्ग है चुनर, जिसका म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और स्वरबद्ध किया है अरिजीत सिंह ने. आइए सुनते हैं.

अब बात है तानिया गायत्री, छा गए आप तो। अगला गीत सुनाने से पहले दो पंक्तियां बोलूंगी। कभी ना करो उनका अपमान, माता पिता तो हैं भगवान। जो करता है उनका सम्मान, मिलता उसे स्वर्ग का धाम। ऐसी भावना से भरपूर हमारे लिए अगला गीत ला रहे हैं जगदीश जी। उसको नहीं देखा हमने कभी, इसे गाया है मन्ना डे और महेंद्र कपूर जी ने। म्यूजिक डायरेक्टर रोशन, मूवी दादी माँ। चलिए सुनते हैं।

आधा जगदीश जी कमाल कर देता। दोस्तों, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी इमोशनल। जब एक्सप्रेस करने की बारी आती है तो लव्स कम पड़ जाते हैं, है ना? आई एम वन सच पर्सन, स्पेशली विद माई मॉम। ऐसी सिचुएशन में म्यूजिक कम्स इन वेरी हैंडी। अपनी माँ के प्रति लव एक्सप्रेस करने के लिए ये अगला गीत बहुत अप्रोप्रिएट है। एंड ऑल्सो आई मस्ट टेल यू, माई मॉम्स एक्सप्रेशंस वर प्राइसलेस जब मैंने उन्हें पहली बार ये गीत सुनाया था। आइए सुनिए माई फेवरेट मम्मा सॉन्ग बाय बिमल एंड माई सेल्फ। सिंगर, लिरिसिस्ट और कंपोजर है कैलाश खेर। मूवी है दस विदानियां। आई होप यू लाइक इट।

है ना, कितना हार्ट वार्मिंग सॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है, माँ मेरी हमदम, मेरी दोस्त, मेरी सैड सी न्यूज फीड में खुशियों वाली पोस्ट, मेरी बोरिंग सी लाइफ को अमेजिंग बनाने वाली होस्ट, मेरी माँ मेरी सबसे प्यारी दोस्त। और एक सेल्फलेस ट्रू दोस्ती का प्रतीक है फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड शेयर एनीथिंग विद योर मॉम। और इसी से इंस्पायर्ड एक गीत फिल्म हम आपके हैं कौन से रति और डॉली हमें सुनाने जा रही हैं आज, माई नी माई, ओरिजिनली संग बाय लता मंगेशकर और म्यूजिक बाय राम लक्ष्मण।

0: सबसे स्पेशल चीज है ना, तो हमने सोचा हम भी कुछ स्पेशल करते हैं इस प्रोग्राम में। तो सुनिए एक स्पेशल सरप्राइज तनुजा से।
1: माँ, एक छोटा सा शब्द लेकिन कितने एहसासों को अपने अंदर समेटे हुए है। माँ कह लीजिए या फिर मम्मी, मम्मा, आई, अम्मी या फिर अम्मा। कुछ पंक्तियां समर्पित मेरी अम्मा को। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती अंबर आग हवा जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उघरते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई अम्मा। अम्मा मुझे मालूम है आप जहाँ भी हैं आपका आशीर्वाद भरा हाथ सदा हमारे साथ है। लव यू अम्मा।
0: वाह वाह वाह, बहुत मजा आया सुन के है ना। चलिए गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों इजाजत चाहूंगी दो लाइनें अर्ज करने की। गम में भी मुस्कुराना सिखा दे इतनी उसमें क्षमता है, इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत तो सिर्फ माँ की ममता है। है ना, ऐसे ही माँ की खूबियों को उजागर कर देने वाला एक बहुत ही प्यारा गीत ला रही है राजश्री हमारे लिए, तू कितनी अच्छी है, फ्रॉम द मूवी राजा और रंक। सिंगर है लता मंगेशकर और म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लेट्स हियर दिस आउट।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आओ झूमे गाएं ग्रुप के सुरेले सिंगर्स को जयपुर रेडियो पर, और मैं हूं प्रियंका, आपकी होस्ट और दोस्त भी। बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि माँ एक ऐसी शख्सियत है जो सबकी जगह ले सकती है, चाहे वो दोस्त हो या भाई, बहन हो या पापा, इवन भगवान की जगह भी हमने माँ को रखा है। बट माँ वो है जो इररिप्लेसेबल है। वह आपके चेहरे से जान जाएगी कि कोई समस्या है, और मुझे तो लगता है कि मॉम्स के पास कुछ इंट्यूटिव महाशक्तियां भी होती हैं, जो आपको गलतियां करने से पहले ही वार्न कर देती हैं, और गलती से मिस्टेक हो भी जाए तो शी विल बी द लास्ट पर्सन टू जज, है ना। माँ के लिए ही बना एक सुंदर सुरीला गीत सुनते हैं श्याम और अनुजा की आवाज में, फ्रॉम द फिल्म तारे जमीन पर। सॉन्ग है मेरी माँ, सिंगिंग और म्यूजिक डायरेक्शन किया है शंकर एहसान लॉय ने।

वाह, सुपर्ब रेंडिशन। आई होप यू एंजॉयिंग द शो। आई ऑलवेज वंडर, भगवान ने दुनिया की सभी मॉम्स को थोक भाव पे पेशेंस का गिफ्ट दिया है। गलती करके डर से छुपने के लिए माँ के आंचल से बेटर प्लेस दुनिया में नहीं मिलेगी, है ना? शी नेवर जजेस यू और ऑलवेज खुले दिल से सब इग्नोर करके गले लगाने वाली है माँ। इन बातों में मैं आज का नेक्स्ट सॉन्ग बताना ही भूल गई, जो कि है माँ है मोहब्बत का नाम, मूवी का नाम माँ का आंचल, और सिंगर हैं हमारे प्यारे रफी साहब, और हमें आज सुना रहे हैं प्रशांत नायर।

आहा क्या गाते हो प्रशांत, मजा आ गया सच। एज एडल्ट्स हम हमेशा बचपन के दिन याद करते हैं और वापस वही माँ की गोद में सोना चाहते हैं, जहां माँ अपने आंचल के छांव से हम पे किसी भी दुविधा का साया नहीं पड़ने देती। ऐसे ही बचपन के दिन याद करते हुए देवयानी सुना रही हैं हमें आज मूवी नीरजा का सॉन्ग ऐसा क्यों माँ, जिसका म्यूजिक दिया है विशाल खुराना ने और सिंगर है सुनिधि चौहान। लेट्स

वाह दोस्तों, आपको फिर से याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं आओ जुमे गायन ग्रुप के सुरीले सिंगर्स को, वो भी जयपुर रेडियो पर, और मैं हूँ प्रियंका, आपकी होस्ट और दोस्त। माँ की ताकत इतनी अपरंपार है कि हर कोई छोटी से छोटी चोट से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी में माँ को ही याद करता है। बस माँ के सर पे हाथ फेरते ही दर्द उड़न छू हो जाता है। ऐसी शक्ति है हमारी माँ के प्यार में। और भगवान को पूजने भी जाओ तो हिंदू माइथोलॉजी में भी माँ के कई रूप मिलेंगे, शक्ति, प्रेम, विश्वास, सुरक्षा, मार्गदर्शन, दया, अनेक रूप है माँ के स्नेह के। चलिए जय माता दी बोलते हुए अगला गीत सुनते हैं मनीषा और समीर से, लुक्का छुपी फ्रॉम द मूवी रंग दे बसंती। सिंगर है लता मंगेशकर और म्यूजिक कंपोज किया है AR रहमान ने। जय माता दी।

इतने सुरीले गीत सुनते सुनते कब प्रोग्राम का अंत आ गया पता ही नहीं चला। दोस्तों, आज की इस भावनाओं से भरी खूबसूरत शाम से मैं प्रियंका इजाजत चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पेशकश पसंद आई होगी। आवजू में गायन ग्रुप की तरफ से आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी माँ का हमेशा हमेशा हमेशा ध्यान रखें, ओके? और उनको आई लव यू बोलना कभी ना भूलें। आई लव यू मम्मी, आई नो यू लिसनिंग। गुड नाइट, फिर मिलेंगे। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आवजू में गायन ग्रुप के द्वारा आयोजित इस संगीत में शाम में मैं प्रियंका आपका दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आज के प्रोग्राम के थीम की ओर चलें। एक शाम माँ के आंचल तले। जी हाँ, शुरुआत करना चाहूंगी अपनी ही लिखी कुछ पंक्तियों से। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। आपने कभी रियलाइज किया है जिंदगी कैसी होती है जब माँ घर पर नहीं होती? इनिशियली लगता है वाह वाह अब मस्ती करेंगे, बट कुछ देर में ही रियलाइज होता है कि जिंदगी ऐसी है जैसे बिन शक्कर की चाय, जैसे बारिश में पकौड़े ना बनाए, जैसे नेटफ्लिक्स बिन वाईफाई, जैसे चाबुक बिन नैया यूं ही बहती चली जाए, जैसे दिल्ली की गर्मी में पावर कट हो जाए और घर में चीजें ढूंढने के लिए मची हाय हाय। क्यों करते हो ना आप सब अग्री, जिंदगी माँ बिन ऐसे जैसे संगीत बिन सब कुछ उलझा उलझा सजाए। तो चलिए इसी लवली नोट पे शुरू करें अंताक्षरी, मेरा मतलब आज की ये एक शाम माँ के आंचल तले। कहते हैं माँ इंसान की पहली गुरु होती है और खेल कहानियों के जरिए अपने बच्चों को जिंदगी की रियलिटीज फेस करने की पावर देती है। प्रेरणा और शोमा आज एक ऐसा ही खूबसूरत भावनाओं से परिपूर्ण गीत पेश कर रही हैं। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसे शीजा रॉय ने गाया है और म्यूजिक डायरेक्टर हैं अपने जाने माने गजल सम्राट जगजीत सिंह जी। आइए सुनते हैं।

वाह, दिल को छू गया ना ये पिछला गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर माँ के स्नेह का रंग ढूंढने जाएं, तो अनकंडीशनल एंड सेल्फलेस वाला रंग ही मिलेगा। माँ, मॉम, मम्मी, अम्मी, अम्मा, मामा, ये सब सिनोनिम्स हैं अनकंडीशनल और नेवर एंडिंग वाले लव के। इट्स ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल टू फिल आर हार्ट्स, स्पेशली जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट प्यारा सा गीत सुनाने आ रही हैं दो ब्यूटीफुल मदर्स देमसेल्व्स, तानिया और गायत्री। इसे फिल्माया गया था वरुण धवन पे, इवन ही गॉट इमोशनल लिसनिंग टू इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सॉन्ग है चुनर, जिसका म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और स्वरबद्ध किया है अरिजीत सिंह ने। आइए सुनते हैं।

बात है तानिया गायत्री, छा गए आप तो। अगला गीत सुनाने से पहले दो पंक्तियां बोलूंगी। कभी ना करो उनका अपमान, माता पिता तो हैं भगवान, जो करता है उनका सम्मान, मिलता उसे स्वर्ग का धाम। ऐसी भावना से भरपूर हमारे लिए अगला गीत ला रहे हैं जगदीश जी, उसको नहीं देखा हमने कभी। इसे गाया है मन्ना डे और महेंद्र कपूर जी ने, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन, मूवी दादी माँ। चलिए सुनते हैं।

आधे जगदीश जी कमाल कर देता। दोस्तों, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी इमोशनल। जब एक्सप्रेस करने की बारी आती है तो लव्स कम पड़ जाते हैं, है ना? आई एम वन सच पर्सन, स्पेशली विद माय मॉम। ऐसी सिचुएशन में म्यूजिक कम्स इन वेरी हैंडी। अपनी माँ के प्रति लव एक्सप्रेस करने के लिए ये अगला गीत बहुत अप्रोप्रिएट है। एंड ऑल्सो आई मस्ट टेल यू, माई मॉम्स एक्सप्रेशन वर प्राइसलेस जब मैंने उन्हें पहली बार ये गीत सुनाया था। आइए सुनिए माई फेवरेट मम्मा सॉन्ग बाय बिमल एंड माई सेल्फ। सिंगर, लिरिसिस्ट और कंपोजर है कैलाश खेर। मूवी है दस विदानिया। आई होप यू लाइक इट।

वाह, है ना कितना हार्ट वार्मिंग सॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है, माँ मेरी हमदम, मेरी दोस्त, मेरी सैड सी न्यूज फीड में खुशियों वाली पोस्ट, मेरी बोरिंग सी लाइफ को अमेजिंग बनाने वाली होस्ट, मेरी माँ मेरी सबसे प्यारी दोस्त। और एक सेल्फलेस ट्रू दोस्ती का प्रतीक है फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड शेयर एनीथिंग विद योर मॉम। और इसी से इंस्पायर्ड एक गीत फिल्म हम आपके हैं कौन से रति और डॉली हमें सुनाने जा रही हैं आज, माई नी माई। ओरिजिनली संग बाय लता मंगेशकर और म्यूजिक बाय राम लक्ष्मण।

0: की सबसे स्पेशल चीज है ना, तो हमने सोचा हम भी कुछ स्पेशल करते हैं इस प्रोग्राम में। तो सुनिए एक स्पेशल सरप्राइज तनुजा से।
1: माँ, एक छोटा सा शब्द लेकिन कितने एहसासों को अपने अंदर समेटे हुए है। माँ कह लीजिए या फिर मम्मी, मम्मा, आई, अम्मी या फिर अम्मा, कुछ पंक्तियां समर्पित मेरी अम्मा को। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है, धरती अंबर आग हवा जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उघरते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई अम्मा। अम्मा मुझे मालूम है आप जहाँ भी हैं आपका आशीर्वाद भरा हाथ सदा हमारे साथ है। लव यू अम्मा।
0: वाह वाह वाह, बहुत मजा आया सुन के, है ना। चलिए गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों इजाजत चाहूंगी दो लाइनें अर्ज करने की। गम में भी मुस्कुराना सिखा दे, इतनी उसमें क्षमता है, इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत तो सिर्फ माँ की ममता है। है ना। ऐसे ही माँ की खूबियों को उजागर कर देने वाला एक बहुत ही प्यारा गीत ला रही है राजश्री हमारे लिए, तू कितनी अच्छी है, फ्रॉम द मूवी राजा और रंक। सिंगर है लता मंगेशकर और म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लेट्स हियर दिस आउट।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आओ झूमें गाएं ग्रुप के सुरेले सिंगर्स को जयपुर रेडियो पर, और मैं हूं प्रियंका आपकी होस्ट और दोस्त भी। बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि माँ एक ऐसी शख्सियत है जो सबकी जगह ले सकती है, चाहे वो दोस्त हो या भाई, बहन हो या पापा, इवन भगवान की जगह भी हमने माँ को रखा है। बट माँ वो है जो इररिप्लेसेबल है। वे आपके चेहरे से जान जाएगी कि कोई समस्या है, और मुझे तो लगता है कि मॉम्स के पास कुछ इंट्यूटिव महाशक्तियां भी होती हैं, जो आपको गलतियां करने से पहले ही वार्न कर देती हैं, और गलती से मिस्टेक हो भी जाए तो शी विल बी द लास्ट पर्सन टू जज, है ना। माँ के लिए ही बना एक सुंदर सुरीला गीत सुनते हैं श्याम और अनुजा की आवाज में, फ्रॉम द फिल्म तारे जमी पर। सॉन्ग है मेरी माँ, सिंगिंग और म्यूजिक डायरेक्शन किया है शंकर एहसान लॉय ने।

Wow, superb rendition. I hope you're enjoying the show. I always wonder, भगवान ने दुनिया की सभी मॉम्स को थोक भाव पे पेशेंस का गिफ्ट दिया है। गलती करके डर से छुपने के लिए माँ के आंचल से बेटर प्लेस दुनिया में नहीं मिलेगी, है ना? She never judges you और always खुले दिल से सब इग्नोर करके गले लगाने वाली है माँ। इन बातों में मैं आज का नेक्स्ट सॉन्ग बताना ही भूल गई, जो कि है माँ है मोहब्बत का नाम, मूवी का नाम माँ का आंचल, और सिंगर हैं हमारे प्यारे रफी साहब, और हमें आज सुना रहे हैं प्रशांत नायर।

आहा, क्या गाते हो प्रशांत, मजा आ गया सच। एज एडल्ट्स हम हमेशा बचपन के दिन याद करते हैं और वापस वही माँ की गोद में सोना चाहते हैं, जहां माँ अपने आंचल के छांव से हम पे किसी भी दुविधा का साया नहीं पड़ने देती। ऐसे ही बचपन के दिन याद करते हुए देवयानी सुना रही हैं हमें आज मूवी नीरजा का सॉन्ग ऐसा क्यों माँ, जिसका म्यूजिक दिया है विशाल खुराना ने और सिंगर है सुनिधि चौहान। लेट्स हियर हर आउट।

दोस्तों आपको फिर से याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं आओ जुमे गायन ग्रुप के सुरीले सिंगर्स को, वो भी जयपुर रेडियो पर, और मैं हूँ प्रियंका आपकी होस्ट और दोस्त। माँ की ताकत इतनी अपरंपार है कि हर कोई छोटी से छोटी चोट से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी में माँ को ही याद करता है। बस माँ के सर पे हाथ फेरते ही दर्द उड़न छू हो जाता है। ऐसी शक्ति है हमारी माँ के प्यार में। और भगवान को पूजने भी जाओ तो हिंदू माइथोलॉजी में भी माँ के कई रूप मिलेंगे, शक्ति, प्रेम, विश्वास, सुरक्षा, मार्गदर्शन, दया, अनेक रूप है माँ के स्नेह के। चलिए जय माता दी बोलते हुए अगला गीत सुनते हैं मनीषा और समीर से, लुक्का छुपी फ्रॉम द मूवी रंग दे बसंती। सिंगर है लता मंगेशकर और म्यूजिक कंपोज किया है AR रहमान ने। जय माता दी।

आहा, इतने सुरीले गीत सुनते सुनते कब प्रोग्राम का अंत आ गया पता ही नहीं चला। दोस्तों, आज की इस भावनाओं से भरी खूबसूरत शाम से मैं प्रियंका इजाजत चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पेशकश पसंद आई होगी। आवजुमे गायन ग्रुप की तरफ से आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी माँ का हमेशा हमेशा हमेशा ध्यान रखें, ओके? और उनको आई लव यू बोलना कभी ना भूलें। आई लव यू मम्मी, आई नो यू लिसनिंग। गुड नाइट, फिर मिलेंगे। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आवजुमे गायन ग्रुप के द्वारा आयोजित इस संगीतमय शाम में मैं प्रियंका आपका दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आज के प्रोग्राम के थीम की ओर चलें। एक शाम माँ के आंचल तले। जी हाँ, शुरुआत करना चाहूंगी अपनी ही लिखी कुछ पंक्तियों से। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। आपने कभी रियलाइज किया है जिंदगी कैसी होती है जब माँ घर पर नहीं होती? इनिशियली लगता है वाह वाह अब मस्ती करेंगे, बट कुछ देर में ही रियलाइज होता है कि जिंदगी ऐसी है जैसे बिन शक्कर की चाय, जैसे बारिश में पकौड़े ना बनाए, जैसे नेटफ्लिक्स बिन वाईफाई, जैसे चाबुक बिन नैया यूं ही बहती चली जाए, जैसे दिल्ली की गर्मी में पावर कट हो जाए और घर में चीजें ढूंढने के लिए मची हाय हाय। क्यों करते हो ना आप सब अग्री, जिंदगी माँ बिन ऐसे जैसे संगीत बिन सब कुछ उलझा उलझा सजाए। तो चलिए इसी लवली नोट पे शुरू करें अंताक्षरी, मेरा मतलब आज की ये एक शाम माँ के आंचल तले। कहते हैं माँ इंसान की पहली गुरु होती है और खेल कहानियों के जरिए अपने बच्चों को जिंदगी की रियलिटीज फेस करने की पावर देती है। प्रेरणा और शोमा आज एक ऐसा ही खूबसूरत भावनाओं से परिपूर्ण गीत पेश कर रही हैं। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसे शिजा रॉय ने गाया है और म्यूजिक डायरेक्टर हैं अपने जाने माने गजल सम्राट जगजीत सिंह जी। आइए सुनते हैं।

अनकंडीशनल और नेवर एंडिंग वाले लव के. इट्स ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल टू फिल आवर हार्ट, स्पेशली जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है. नेक्स्ट प्यारा सा गीत सुनाने आ रही हैं दो ब्यूटीफुल मदर्स देमसेल्व्स, तानिया और गायत्री. इसे फिल्माया गया था वरुण धवन पे. इवन ही गॉट इमोशनल लिसनिंग टू इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सॉन्ग है चुनर, जिसका म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और स्वरबद्ध किया है अरिजीत सिंह ने. आइए सुनते हैं.

क्या बात है तानिया गायत्री, छा गए आप तो। अगला गीत सुनाने से पहले दो पंक्तियां बोलूंगी। कभी ना करो उनका अपमान, माता पिता तो हैं भगवान, जो करता है उनका सम्मान, मिलता उसे स्वर्ग का धाम। ऐसी भावना से भरपूर हमारे लिए अगला गीत ला रहे हैं जगदीश जी, उसको नहीं देखा हमने कभी। इसे गाया है मन्ना डे और महेंद्र कपूर जी ने, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन, मूवी दादी माँ। चलिए सुनते हैं।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम माँ का आंचल। सभी सुनने वालों को मदर्स डे की शुभकामनाएं। माँ के चरणों में वंदन, नमन और प्रणाम। माँ मातृभूमि है, माँ हमें पालने वाली है, हमें दुलारने वाली है, हमें अपनी गोद में सुला के लोरी सुनाने वाली हैं। वही माँ जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया और एक समझ दी कि दुनिया क्या है और तुम कहाँ हो। उसी माँ का वंदन, नमन और प्रणाम। सबसे पहले माँ के आंचल प्रोग्राम में जो रचना लेके आई हैं, आइए उसको सुनते हैं और समझते हैं।
1: नमस्कार, मैं रचना अमित पाराशर नर्मदापुरम नर्मदा जी की नगरी से आप सभी के सामने मातृ दिवस के उपलक्ष्य में ये एक छोटी सी कविता सभी को समर्पित करती हूँ, सभी माओं को समर्पित करती हूँ, सभी बहनों को समर्पित करती हूँ। कविता का शीर्षक है हे माँ। हे माँ, माया भी तुम, मोक्ष भी तुम, बंधन भी तुम, मुक्ति भी तुम। माया भी तुम, मोक्ष भी तुम, बंधन भी तुम, मुक्ति भी तुम। प्रतिपल गुजरते समय के साथ गुजरती भी तुम, ठहरती भी तुम। कहे अनकहे शब्दों के साथ कानों में घुलती भी हो, महकती भी तुम। खंड खंड हुए इस जीवन की पतझड़ भी तुम, बसंत भी तुम। इस विश्वास में है दुनिया कि सिर्फ मेरी हो तुम, मैं इस यकीन में थोड़ी सी खुद की भी तुम। मन मंदिर के घंटा ध्वनि की ईश्वर भी तुम, पुजारण भी तुम। खुद से खुद तक पहुंचने को मजबूर भी तुम, जिम्मेदार भी तुम। एक आंख से हंसती हो, एक आंख से रोती, दुनिया के इस रंग मंच की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री भी तुम, अदाकारा भी तुम। नमस्कार।
0: बहुत खूब।
2: जिन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया, विशेष रूप से मैं डॉक्टर।
0: इस रचना के साथ रचना पाराशर को हमने सुना और दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। और वही माँ जो है वो विष्णु की माया है, इसलिए रचना जी ने बहुत ही सही फरमाया है, उसे सृष्टि के कण कण में व्याप्त देखा जा सकता है और वही माँ हैं। जब हम एक शब्द बोलते हैं माँ, तो हमारा पूरा मुंह जो है वो भर जाता है, जैसे हमने बहुत कुछ खा रखा है, और वो है माँ का आशीर्वाद। रचना पाराशर के बाद आइए सुनते हैं एक और रचना जिसे सुना रही हैं सीमा जी कोलकाता से।
3: नमस्कार, मैं सीमा गुप्ता कोलकाता से हूँ। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जयपुर रेडियो और पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया। विशेष रूप से मैं डॉक्टर निशा अग्रवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे आप सबके सामने अपनी कविता सुनाने का अवसर दिया। मैं मातृ दिवस पर एक कविता, स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ। माँ, प्रेम का पहला नाम माँ। माँ केवल एक शब्द नहीं, माँ केवल एक शब्द नहीं,
2: ईश्वर का सबसे सुंदर वरदान है। माँ केवल एक शब्द नहीं, ईश्वर का सबसे सुंदर वरदान है। उसकी गोद में सिमटा बचपन जीवन का सबसे सुरक्षित स्थान है। माँ केवल एक शब्द नहीं। जब जब दुनिया ने ठुकराया, जब जब दुनिया ने ठुकराया, माँ ने बाहों में भर लिया। मेरे हर आंसू को चुपके से अपने आंचल में धर लिया। खुद भूखी रहकर भी जिसने मेरे हिस्से का सुख बोया। मेरी हर छोटी मुस्कान पर अपने जीवन का दर्द खोया। मेरे गिरने से पहले ही जिसका दिल घबराने लगता है। मेरी दुख की हल्की आहट से जिसका मन भर आने लगता है। माँ की ममता गंगा जैसी निर्मल पावन असीम होती है। उसके चरणों की धूल भी सारे तीर्थ के समान होती है। यदि इस जग में स्वर्ग कहीं है तो माँ के चरणों के पास है। उसके प्रेम के आगे फीका हर सुख हर वैभव हर प्रकाश है। मातृ दिवस पर बस इतना कहूँ, मेरा तेरा ऋण मैं चुका नहीं सकती। तूने जो जीवन दिया है माँ, उसकी कीमत बता नहीं सकती। तू है तो हर दिन उत्सव है माँ, तू है तो हर दिन उत्सव है। तुझसे ही मेरा संसार है, तेरी हर धड़कन कहती है, मेरी हर धड़कन कहती है, माँ तू ही मेरा पहला प्यार है, माँ तू ही मेरा पहला प्यार है। धन्यवाद।
0: कितनी सुंदर बात, माँ तुम ही मेरा पहला प्यार है। और सच में पहला प्यार माँ का ही होता है और पहला गुरु भी माँ ही होती है। सीमा गुप्ता कोलकाता वेस्ट बंगाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे हमने ये मातृदिवस पर बहुत ही खूबसूरत रचना सुनी। और अब इस प्रोग्राम का संयोजन करने वाली जयपुर रेडियो की आरजे डॉक्टर निशा अग्रवाल, जो सब प्रबंध करती हैं, सबको एक साथ जोड़ती हैं, इस मंच पर लाती हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि इस अवसर पर अपनी रचना हमें ज़रूर सुनाएं। लेकिन इससे पहले भोपाल से उन्होंने जोड़ दिया है निशा जी ने अनिशा संदीप नेमा को। अनिशा जी भी कवित्री हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। अब बारी आ गई है, हम आग्रह करें कि इस मंच पर अनिशा जी आज मातृदिवस पर कोई अपनी छोटी सी रचना हमें सुनाएं।
4: रूप से मानी। नमस्कार, मैं अनिशा संदीप नेमा भोपाल से, जी हाँ, झीलों की नगरी भोपाल से गुलाबी शहर जयपुर तक के काव्य पाठ के सफर के लिए मैं डॉक्टर निशा अग्रवाल जी एवं जयपुर रेडियो का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने समय समय पर मुझे काव्य पाठ के लिए रेडियो पर आमंत्रित किया है और ये मेरे लिए बहुत ही गौरव एवं बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ। मातृ दिवस पर काव्य पाठ के लिए मैंने जो रचना चुनी है वह एक बेटी की अपने माँ के प्रति प्रेम की एक छोटे से क्षण है जिन्हें वो स्मृति में रखती है। लीजिए, प्रस्तुत है मेरा काव्य पाठ माँ से बातें चादर में। जीवन की राहों में जब माँ ऊब बहुत मैं जाती हूँ, चादर को आंचल समझ माँ आंख मूंद सो जाती हूँ। जीवन की राहों में जब माँ ऊब बहुत मैं जाती हूँ, चादर को आंचल समझ माँ, आँख मूंद सो जाती हूँ। तकिया तेरी गोद लगे माँ, तकिया तेरी गोद लगे माँ, थपकी हवा का झोंक लगे। तेरी ममता की यादों संग बचपन मेरा फिर लौट चले। मेरी बकबक सुन सुन कर, मेरी बकबक सुन सुन कर माँ जब तुम झल्ला जाती थी, मेरी बकबक सुन सुन कर माँ जब तुम झल्ला जाती थी, मैं जब भी रूठी थी तुमसे तुम रबड़ी मुझे खिलाती थी। मैं जब भी रूठी थी तुमसे तुम रबड़ी मुझे खिलाती थी। जब कोई संगी ना थे माँ, जब कोई संगी ना थे माँ, मैं तन्हा बैठी रोती थी। तब तुम सखा बनी थी मेरी और रोटी पहिया खेली थी, तब तुम सखा बनी थी मेरी रोटी पहिया खेली थी। मेरी हर बातों को तुमने माँ, मेरी हर बातों को तुमने सहज रूप से मान लिया। जीवन के हर पल से लड़ने सब्र प्रेम का ज्ञान दिया। मुस्कान भरी तेरी सूरत माँ, मुस्कान भरी तेरी सूरत माँ मन से आलिंगन देती है। मुस्कान भरी तेरी सूरत माँ मन से आलिंगन देती है। सचमुच माँ उस पल में ही मेरे दर्द सभी हर लेती है। सचमुच माँ उस पल में ही मेरे दर्द सभी हर लेती है। निराशा नहीं विश्वास भरा है, निराशा नहीं विश्वास भरा है मन की मेरी राहों में। निराशा नहीं विश्वास भरा है मन की मेरी राहों में। संस्कार दिए उत्साह दिया तुमने बातों ही बातों में, संस्कार दिए उत्साह दिया तुमने ही बातों बातों में। हो गई सहर माँ जाग उठी मैं, हो गई सहर माँ जाग उठी मैं, नवजोश शक्ति भर के मन में। बहुत सुकून मिला है मेरे मन को माँ से करके बातें चादर में, बहुत सुकून मिला है मन को माँ से करके बातें चादर में। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आप सभी को नमस्कार।
0: बहुत धन्यवाद अनीशा संदीप नेमा जी को, इतनी सुंदर रचना माँ को समर्पित की आपने उसके लिए। और बहुत धन्यवाद डॉक्टर निशा अग्रवाल को जिन्होंने इस मंच को सजाया और आपको बुलाया। और अब आ रही हैं यूएसए कैलिफोर्निया से मंजू शर्मा। जी हाँ, मंजू शर्मा की रचनाएं प्रोग्राम माँ का आंचल में आप तक प्रस्तुत है।
5: जीने की अब चाह।

0: मंजू शर्मा को सुन रहे हैं आप।
1: से पनाह नहीं मांगती हूँ, कांटों की सतह पे चलना चाहती हूँ, कांटों की सतह पे चलना चाहती हूँ।

आंधियों के वेग सी है चाल मेरी, तूफान का उछाल ही तो ढाल मेरी। पर्वतों को चीर दे निर्झर हूँ ऐसी, सतत सलीला सुर सजी सरगम के जैसी। डूब कर अंतस में मोती ढूंढ लाऊं, डूब कर अंतस में मोती।

0: अधर लाली माँ चुरा उषा बनी, अधर लाली माँ चुरा उषा बनी, केश राशि बिखरी तो निशा बनी, आंखों के दीपक बरे स्नेह भर के, कांति मुख की मंजु रवि प्रभा बनी। मैं स्वयं सौंदर्य से भरपूर हूँ जब, मैं स्वयं सौंदर्य से भरपूर हूँ जब, चांद की मैं चाह नहीं मांगती हूँ।
1: वाह, बहुत खूब।
0: चांद

0: वाह, जीने की चाह इतनी बढ़ गई है कि मौत से पना नहीं मांगती हूँ। और माँ को बनाने में सृष्टि के कण कण को मिला दिया जाए, हर एक चीज को, हर एक वस्तु को एकदम मिला के घोट के और फिर माँ की मूर्ति बनाई जाती है। माँ वही स्वरूप है, वही रूप है और मंजू जी ने उसी का वर्णन किया है अपने सुरीले शब्दों में। भावबोध के साथ बहुत बधाई मंजू शर्मा, कैलिफोर्निया से हमारे साथ रहीं। निशा जी बहुत ही खूबसूरत माँ पर कविताएं लेके आई हैं, हम क्या कहें, बहुत कमाल है, बहुत बेमिसाल है। और अब मुंबई से जुड़ गई हैं सुखमिला अग्रवाल, अपनी माँ पर रची रचना के साथ। आइए सुनते हैं सुखमिला अग्रवाल जी को। वेलकम, स्वागत।
1: जयपुर रेडियो का हार्दिक आभार करती हूँ। मैं जयपुर की हूँ, अभी मुंबई रहती हूँ और मातृत्व दिवस पर मुझे निमंत्रित करने के लिए मैं डॉक्टर निशा अग्रवाल जी का भी हार्दिक आभार करती हूँ। एक स्वरचित रचना मेरी मैं प्रस्तुत करती हूँ, इसका शीर्षक है अम्मा की यादें।

जब भी आऊं मैं नई अरमां, तुझ बिन सब है सूना। जब

0: अम्मा की मीठी यादें और आपको ये मीठी यादें सुन के ज़रूर सुख मिला होगा, क्योंकि हमारी कवित्री का नाम ही सुखमिला अग्रवाल है और आपने मुंबई से हमारे लिए ये कविता गाई है, आप तक पहुंचाई है। और इसमें निशा जी ने अपनी चतुराई दिखाई है, तो अब समय आ गया है कि आपने सबकी रचनाएं सुना दी। रचना पराशर जो नर्मदापुरम से थी, और उसके बाद सुखमिला जी की रचनाएं भी आपने सुनाई। सीमा गुप्ता कोलकाता से अपनी रचनाओं को लेके यहाँ उपस्थित हुई, तो अब अनिशा नेमा, जी हाँ अनिशा संदीप नेमा ने भी अपनी शानदार रचना यहाँ प्रस्तुत की इस मंच पर। और अब आज के इस खास प्रोग्राम में इसका संयोजन करने वाली डॉक्टर निशा अग्रवाल को हम आमंत्रित करते हैं कि माँ के आंचल जिसके तले हम पले हैं बड़े हैं, उसकी छांव में हम झुलसने से बचे हैं, उस माँ पर निशा जी की क्या विचार हैं, आइए सुनते हैं समझते हैं और आप तक पहुंचाते हैं।
1: माँ, ओ माँ, माँ सुन रही हो ना माँ, तुम केवल जन्म देने वाली ही नहीं, जीवन को दिशा देने वाली भी बनो माँ। बच्चों के सपनों पर अपनी अधूरी इच्छाओं का बोझ मत थोपो माँ, मत थोपो। उनके नन्हे मन को अपेक्षाओं की जंजीरों से मत बांधो माँ, मत बांधो। आप जानती नहीं, हर बच्चा एक नई किताब है माँ, जिसके शब्द अलग अलग होते हैं। हर बच्चे की उड़ान का अपना अलग आकाश होता है माँ। कोई रंगों में दुनिया खोजता है माँ, कोई सुरों में अपना जीवन जीता है माँ, कोई किताबों में खो जाता है तो कोई खेल में अपना कल लिखता है माँ। तुम समझो माँ, तुम समझो, तुम बस पहचानो उसके भीतर छिपी रोशनी को। उसे इतना मत डांटो माँ, मत डांटो कि उसका आत्मविश्वास ही टूट जाए। उसे इतना मत रोको माँ, मत रोको कि उसके सपने ही छूट जाए माँ। माँ तुम समझो, तुम समझो माँ, बच्चे को डर नहीं केवल विश्वास चाहिए माँ। हर कदम पर ताने नहीं एक दोस्त का साथ चाहिए माँ, एक दोस्त का साथ चाहिए। जब जब वह हार जाए तो तुम उसकी हिम्मत बन जाना माँ, तुम उनकी हिम्मत बन जाना। जब वह रो पड़े तो उसकी मुस्कान बन जाना माँ। उसे अपनी इच्छा से विषय चुनने दो, चुनने दो विषय अपनी इच्छा से, अपनी राह बनाने दो, क्योंकि जब सपने अपने होते हैं तभी उन्हें पूरा करने का साहस भी जन्म लेता है माँ, साहस भी जन्म लेता है। हर समय तुलना करके उसका मन छोटा मत करो माँ, मत करो। हर बच्चे की चमक अलग होती है माँ, उसे किसी और जैसा बनने पर मजबूर मत करो माँ, मत करो। प्रेरणा बनो दबाव नहीं, तुम सहारा बनो बोझ नहीं, क्योंकि एक समझदार माँ सिर्फ बच्चों को बड़ा नहीं करती बल्कि उनका व्यक्तित्व ही गढ़ती है माँ, उनका व्यक्तित्व भी गढ़ती है, उन्हें इतना मजबूत भी बनाती है कि वे दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सके माँ, अलग पहचान बना सके। तुम मेरी प्यारी माँ हो माँ, तुम मेरी अच्छी माँ हो माँ, इस दुनिया की सबसे प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ,
0: मेरी माँ और दुनिया की सबसे प्यारी माँ। और ये खूबसूरत माँ के नाम संदेश और माँ के लिए ही ये रचना, और माँ ने ही रची है, निशा अग्रवाल ने खुद रची है और आप तक पहुंचाई है। आज की जो नई युग की माएँ हैं उनके लिए एक संदेश भी छुपा है इसमें, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। और इस प्रोग्राम का संयोजन किया निशा अग्रवाल ने और ये रचनाएं इस मंच पर लेके आई, और रचनाकार रही रचना अमित पाराशर नर्मदापुरम एमपी से, सीमा गुप्ता कोलकाता वेस्ट बंगाल से, मंजू शर्मा कैलिफोर्निया यूएसए से, अनिशा संदीप नेमा भोपाल से, और सुखमिला अग्रवाल मुंबई महाराष्ट्र से। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। और रचना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो क्यों ना निशा जी हम इनसे बातचीत कर लें।
2: हेलो, हेलो
3: जी सर, सर आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मैं तो ओपनिंग कर देता हूँ, उसके बाद तो बात आप ही करेंगे। स्वागत है आप दोनों का इस मंच पर।
3: बहुत बहुत आभार रचना जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी जयपुर रेडियो हेड हमारे आदरणीय व्यास जी ने बताया कि अभिव्यक्ति का आचरण एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि महिलाओं से, महिलाओं की अभिव्यक्ति से जुड़ा है, तो इसी कार्यक्रम की कड़ी में आज आपके साथ रचना पारासती नर्मदापुरम होशंगाबाद में हमारे साथ हैं। श्रोताओं इनको की बहुत धन्यवाद। आप सभी रचना जी से पहले से परिचित हैं, एक बार फिर से इनकी आवाज और इनके शब्दों से आज समाज और संवेदनाओं को, इनके संस्कारों को एक नई पहचान देने के लिए आज का एक कार्यक्रम एक बार फिर से जयपुर रेडियो के द्वारा प्रसारित होने जा रहा है, जहां इनकी प्रतिभा, इनके विचारों और साहित्यिक अभिव्यक्तियों को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम जयपुर रेडियो बना है। और आज फिर से आपकी आवाज, आपकी कलम, आपकी प्रतिभा, आपके विचार अभिव्यक्ति का आचल कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो पर प्रसारित करने जा रहे हैं। रचना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी क्योंकि आप एक अपने आप में एक इतनी बड़ी शख्सियत बन चुकी है, न जाने कितने पदों से सुशोभित, मैं रोज आपको देखती हूँ, सुनती हूँ, एक बहुत बड़ी कवयित्री के रूप में आपकी एक नई पहचान है। अखिल भारतीय नर्मदीय समाज की महासभा में साहित्यिक प्रभारी के पद पर कार्यरत है, और क्या कहूं, भोपाल में महिलाओं के द्वारा आयोजित एक समाज सेवी संस्था समर्पण में विशेष अतिथि के रूप में भी आपने सम्मान पाया है। तो रचना जी आप बताइए कि इस कार्यक्रम में जो भोपाल में ऑर्गेनाइज हुआ था, इस कार्यक्रम में आपने कौन सी कविता सुनाई जिसके माध्यम से आपको बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ? क्योंकि आपके परिचय से थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देते हुए आप अपनी कविताएं सुनाएं।
2: जी मैं सबसे पहले तो मैं रचना अमित पाराशर नर्मदा नगरी से होशंगाबाद नर्मदापुरम से डॉक्टर निशा दीदी का और आदरणीय व्यास जी का बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और कि आपने मुझे दोबारा इस मंच पर बुलाया, मुझे मौका दिया एक बार फिर से आपसे जुड़ने का, अपनी कविताएं पढ़ने का, अपने मन की बात करने का। तो सबसे पहले तो आप मेरा आभार स्वीकार करें। अभिव्यक्ति का आंचल के सभी श्रोताओं को का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ कि वो मुझे सुन रहे हैं, सुनेंगे और सराहेंगे। निशा जी, अभी एक प्रोग्राम हुआ था भोपाल में एक समर्पण ग्रुप की तरफ से, ये एक समाज सेवी ग्रुप है, तो इन्होंने मुझे बुलाया और ये नारी शक्ति के ऊपर एक प्रोग्राम उन्होंने किया था, तो उन्होंने मुझे वहां बुलाया और मुझे एक कविता पाठ करने का मौका दिया, मुझे सम्मान दिया, तो वो कविता भी मैं आपको सुनाऊंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर एक हाउसवाइफ हूँ पर मैं साथ साथ एक ऑनलाइन बुटीक भी चलाती हूँ। खाली समय में मैं लिखना पढ़ना पसंद करती हूँ, मैं थोड़ा सा घूमने की भी शौकीन हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड एक आर्किटेक्ट है और मुझे यहाँ नर्मदापुरम में, क्योंकि यहाँ नर्मदा जी हैं तो मुझे मेरे शहर से बहुत प्यार है।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर
2: जी।
3: तो सर क्या सुनना चाहेंगे?
0: बिल्कुल वही कविता जो इससे आपको नाम मिला, ख्याति मिली, और हमारे श्रोता भी वही सुनना चाहेंगे।
2: जी बिल्कुल, ये कविता स्त्रियों के ऊपर लिखी गई है पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि स्त्रियों पर लिखना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि स्त्रियां एक्चुअल में इतनी सरल, इतनी सहज होती है ना कि उन पर लिखना मुझे बड़ा कठिन लगता है।
0: जैसे
2: आप माँ है, बहन है, जैसे मैं हूँ। अच्छा, इनकी एक विशेषता बताती हूँ आपको कि ये सुबह से लेके रात को 12 बजे तक पूरा काम करती हैं। वो थक जाती हैं,
0: हम देखते हैं
2: तो वो बहुत, हाँ, पर वो करती रहती हैं। लेकिन पता क्या होता है कि इसी बीच में जब उनसे कोई ये कह देता है कि अरे आपने इतना काम किया, आपने कर लिया, आपसे हो गया, तो उन्हें बताओ कैसा लगता है निशा जी, जैसे बुखार पे तपते हुए बदन पर कोई रख दे ठंडे पानी की पट्टियां, या कुवार जी या कुवार की धूप में कोई ठंडी हवा का झोंका, और जैसे किसी जख्म पर मिल जाए कोई मलहम और धुल जाए सारे दिन का मलाल। तो ऐसी होती हैं स्त्रियां, ऐसी होती हैं स्त्रियां, ऐसा अनुभव करती हैं स्त्रियां।
0: बहुत खूब, बहुत।
2: तो जी मेरी ये कविता सभी माओं, सभी बेटियों, बहनों, सभी नारियों को समर्पित, ये मैंने भोपाल में जो पढ़ी थी मैं आपको सुनाती हूँ, सबका आशीर्वाद चाहूंगी। मैं शुरू करती हूँ।
0: बिल्कुल वेलकम
2: जी। इस कहानी का शीर्षक है केवल तुम।
0: केवल तुम
2: जागृत जी, जागृत प्रातः का जागृत मन, जागृत प्रातः का जागृत मन, तुम और केवल तुम। स्थिर तन चंचल चितवन, नव नूतल नवीनतम तुम, नव जीवन नव संचरण तुम, तुम और केवल तुम। मौन प्रार्थनाएं, मौन इच्छाएं, मौन विचार, मौन वेदनाएं, परम अनुभूति की अभिव्यक्ति, तुम और केवल तुम। प्राण चेतना की प्राण वायु, सहज सरल सुंदरतम तुम, स्वप्न आकृति का स्मृति चिन्ह, तुम और केवल तुम। आधी रात में पूर्णमासी का चांद, पाठ्य पुस्तक का अक्षर ज्ञान, मोह माया राग आलाप, और मोह माया से मुक्ति भी तुम और केवल तुम।
3: केवल तुम
2: न्यून तुच्छ कमतर किंचित क्षणिक और तनिक है जीवन, न्यून तुच्छ कमतर किंचित क्षणिक और तनिक है जीवन, पूर्ण संपूर्ण परिपूर्ण तुम और केवल तुम।
0: वाह वाह बहुत खूब,
3: बहुत सुंदर
2: जी, बहुत धन्यवाद।
0: तुम पूरी सृष्टि हो और तुम ही रचना
2: जी
0: हो।
2: जी
0: और इन्हीं को कहते हैं रचना पाराशर, हमारे साथ हैं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल
3: जी। तो रचना जी, आपने ये कविता आपने हमारे श्रोताओं को सुनाई जिसमें आपने एक मौत के लिए पूरा समर्पण भाव दिखाया कि केवल तुम ही हो सृष्टि की रचनाकार, रचयिता, और सारी कामना भी जो है वो माँ को ही जाती है एक बेटे की। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आज सुबह घूम रहा था एकदम, कि क्या कल की माँ और आज की माँ में कुछ अंतर पाया है आपने?
2: जी, जो
3: कल की माँ कैसी थी और आज की माँ कैसी है, आज की वक्त के बदलते समय, वक्त बदल रहा है, आधुनिकता के दौर में एक बेटा एक माँ का जो संबंध है वो क्या पहले जैसा है या कुछ बदलाव है?
0: बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत शाश्वत हो गया है। और ये मोबाइल आने के बाद तो माँ भी अपना मातृत्व जो है जरा सा भूल गई हैं, तो इस को जोड़ते हुए कुछ कहिए
2: जी। मेरे हिसाब से तो प्रेम वही है, वात्सल्य वही है, बेटा भी वही है और माँ ही वही है। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में सब कुछ थोड़ा तो बदला ही है, क्योंकि हमारी माँ को हमने देखा कि वो अपने कार्य के प्रति, अपने घर के प्रति ही पूरी पूरी समर्पित रही हैं। लेकिन आज जो हम अपने आप को देखते हैं, हम हाउसवाइफ होते हुए भी हाउसवाइफ नहीं है, क्योंकि हम बाहर भी निकलते हैं, अपने बच्चों के लिए भी निकलते हैं, उन्हें 10 बार कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, स्विमिंग जाना है, डांस क्लास जाना है, कराटे क्लास जाना है, तो हम उनको टाइम टू टाइम लेके जाना, लेके आना, उनको शॉपिंग कराना, उनको पढ़ाना, मतलब उनके साथ हम भी उनकी तरह आधुनिक हो गए हैं। तो माएं वही हैं, जीवन हमारा आधुनिक है। तो मेरे ख्याल से हाँ, हम हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, इसलिए हम जैसे हमारी माँ हमारी दोस्त थी, ऐसे हम आज हमारे बच्चों के दोस्त होना चाहते हैं, इसलिए हम ये सब करते हैं अपने बच्चों के लिए।
3: यानी आपका कहने का मतलब यही है कि कल की जो माँ थी वो एक त्याग की मिसाल थी, कारों की छाव थी, लाड़ थी, दुलार थी, बच्चों को गिरने से बचाती थी, बच्चों को गिरने से बचाती थी। लेकिन आज की माँ गिरने से बचाते बचाते समय और क्या करती है, संभाल
2: के साथ दौड़ती है।
3: जी जी बिल्कुल, आज की माँ गिरने को, गिरते हुए बच्चे को संभालती है, आत्मनिर्भर बनाती है। और पहले की माँ चुपचाप सहती थी, अधिकारों और भावनाओं के साथ उनकी कद्र करती है। बस इतना सा अंतर आज की माँ और कल की माँ में आया है। माँ का जो स्वरूप है वो वैसा था, जैसा था वैसा ही। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर ढंग से आपने इसको
0: रूपायित किया है,
3: हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो
2: जी
3: सर, आप कुछ बीच में इनसे पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, मेरा प्रश्न यही था कि जो आधुनिक जीवन शैली है और कोरोना के बाद में हमारे जीवन स्तर में बहुत सारे बदलाव आए हैं, और उनको अंकित करते हुए हमने जो है वो कहाँ कहाँ उन बदलावों को चुनौती समझा है, और कहाँ कहाँ हम उसमें विलग हो गए हैं, अलग हो गए हैं, या हम उनमें घुल मिल गए हैं, बात हम ये चाहना जानना चाहेंगे रचना जी से कि बदलाव आया तो है और परिवर्तन शाश्वत है, प्रकृति का नियम है, और धीरे धीरे बदलाव आता है। तो माँ में, क्योंकि कल हम मातृत्व दिवस मना रहे हैं, मदर्स डे मना रहे हैं, तो माँ में वैसे तो माँ को हमने भगवान का रूप दे रखा है, भगवान ने अपने रूप में माँ को धरती पर पैदा किया है, अवतरित किया है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी समय की चुनौतियाँ और परिवर्तन के जो साक्षी हैं, उन्होंने उसके मन मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डाला है। तो वो क्या है?
2: आदरणीय सर, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि कोरोना काल से हमने जीना सीखा है। उस काल में हमने ये सीखा कि जीवन कितना क्षणिक है, कितना क्षण भंगुर है। आज हम हैं, कल हम नहीं हैं। लेकिन हम जब इस कोरोना काल से वापस बाहर निकले तब हमने जीना सीखा। हमारे अंदर एक डेयरिंग आ गई जीने के लिए कि देखो जो होना है वो तो होना है, लेकिन जो अभी हमारे पास समय है इसको हमें किस तरह से उसका सही उपयोग करना है। हमें जीना है, हमें जीना सीखना है। तो मुझे लगता है हमने जीना सीखा है कोरोना से।
0: और माँ के लिए क्या कहेंगे?
2: माँ के लिए तो अभी मैंने इतनी सारी बातें कही हैं, और माँ के लिए ही कहूंगी मैं कि वो तो ठंडी हवा का झोंका है। माँ, उनका आंचल सबके सर पर बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। माँ के बिना तो जीवन ही संभव नहीं।
0: बच्चों के साथ माँ का जो सामंजस्य है वो आज की परिस्थिति में कैसे देखती हैं आप? क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं और पीछे माँ एक आदर्श के रूप में रही हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने को सुनने को मिलता है कि माँ ने बच्चे के साथ क्रूरता की। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है आगे चल के, क्या सोचती हैं?
2: मुझे तो लगता है जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण ही रहा होगा कि उस तरह की घटनाएं घटी, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी माँ कुमाता नहीं होती। कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं पर माता कभी कुमाता नहीं होती।
0: बिल्कुल,
2: तो मैं इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक
0: बात के,
2: बिल्कुल मैं कोई मनोवैज्ञानिक कारण ही समझती हूँ इसके पीछे।
0: जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
3: जी
0: तो एक कविता और हो जाए, रचना जी की एक रचना हम और सुनना चाहेंगे इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है अभिव्यक्ति का आंचल। और इस आंचल में न जाने कितनी कविताएं, कितने शब्द, कितने लफ्ज, कितने अल्फाज तारे मोती की तरह से जड़े हैं। तो उसमें से कोई एक हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाएं तो अच्छा रहेगा।
2: जी बिल्कुल। मेरी दूसरी कविता, जैसे कि मैं आपको मैंने बताया कि नर्मदापुरम से हूँ, नर्मदा जी की नगरी से, तो दूसरी मेरी कविता नर्मदा जी को समर्पित मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी। ये कविता एक माँ नर्मदा जी के किनारे एक पेड़ के ऊपर है, एक वृक्ष के ऊपर, जिसका नाम है मौलश्री। ये इसको मोरछल्ली भी कहते हैं
0: जी।
2: तो नर्मदा जी के किनारे एक मौलश्री एक वृक्ष था जो एक सदी से भी पुराना था, और सभी लोग नर्मदा जी के घाट को और उस मोरछल्ली के वृक्ष को जोड़कर ही देखते थे। मोरछल्ली का पेड़ मतलब माँ का घाट, और माँ नर्मदा मतलब मोरछल्ली का पेड़। तो उसके नीचे, मतलब मैंने भी उस पेड़ को 20 साल देखा है, मेरे पुराने लोग बताते हैं कि ये एक सदी से भी पुराना पेड़ वहां खड़ा हुआ है। तो पिछले समय में क्या हुआ था कि वो पेड़ बहुत बूढ़ा हो गया था, और बूढ़ा होके वो गिर गया। तो इस तरह मैंने उस पेड़ के प्रति संवेदनाएं देखी लोगों में, इतना मार्मिक रहा उसका गिरना। तो मैंने उस वृक्ष के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है जो मैं आप सबको समर्पित करना चाहूंगी। और मेरी ये कविता को यहाँ नर्मदापुरम में भी काफी सम्मान मिला, क्योंकि ये कविता कहीं ना कहीं उनके हृदय को कहीं ना कहीं अंदर से बहुत छू गई। तो ये कविता
0: मुझे भी बहुत, आपकी आइडेंटिटी बन गई, आपका परिचय बन गई।
2: बिल्कुल। तो मैं ये कविता आपको सुनाना चाहूंगी, आप सभी को स्वागत करती हूँ आपका। मौलश्री, मेरी कविता का नाम है मौलश्री। शुरू करती हूँ। माँ नर्मदा के तट पर खड़ा, माँ नर्मदा के तट पर खड़ा एक सदी से भी पुराना वह मोरछल्ली का झाड़। माँ नर्मदा के तट पर खड़ा एक सदी से भी पुराना वह मोरछल्ली का झाड़, जिसे मिला माँ रेवा का दुलार, सूरज की पहली किरण का प्यार और चांद की चांदनी का दुलार। पता नहीं उस पेड़ के नीचे किसी को निर्वाण प्राप्त हुआ कि नहीं, पता नहीं उस पेड़ के नीचे किसी को निर्वाण प्राप्त हुआ कि नहीं, पर हाँ जब भी बैठा है कोई वहां भारी मन लेकर, तो कम हुआ है उसका दुख, उसकी उदासियां, उसकी उपेक्षाएं, उसकी दुविधाएं। कितने ही प्रेमियों की पूरी हुई है मन्नतें, उसके नीचे रचे गए कितने ही सुनहरे गीत, संगीत और भविष्य लिखी गई कितनी ही कविताएं, किताबें और काव्य। उसने देखे हैं बदलते मौसम, बदलते रंग और बदलते रिश्ते। वो पेड़ उस एक पक्षी के लिए भी रहा तटस्थ और प्रतीक्षा रथ, जिसने बनाए थे उसके डाल पर घर। वो पेड़ एक पक्षी के लिए भी रहा हमेशा तटस्थ और प्रतीक्षा रथ, जिसने उसकी डाल पर बनाए थे घर। और एक लंबी यात्रा और तपस्या के बाद जब वो हुआ धराशायी, और जब एक लंबी यात्रा और तपस्या के बाद हुआ वो धराशायी, तो सुना है मैंने, देखा है मैंने कि पूरा शहर उतर आया था उस पेड़ को आखिरी बार देखने। पूरा शहर उतर आया था उस पेड़ को आखिरी बार देखने। मैंने देखा है नम आंखों से उसे विदा करते, उसके सूखे अवशेषों को बटोरते, उसकी स्मृतियों को सहेजते, उसकी स्मृतियों को सहेजते।
0: वाह, बहुत ही खूबसूरत,
3: बहुत
0: बहुत ही सुंदर
2: जी, बहुत धन्यवाद।
0: धरती हमारी माँ और पेड़ पिता, उसका मानवीयकरण हो गया है और वो सबके लिए सोच रहा है इतना तटस्थ होके, और जितने भावपूर्ण तरीके से रचना जी ने ये रचना प्रस्तुत की है, वो तो सच में क्या कहें, कमाल है, बेमिसाल है। इसका वर्णन जो है अवर्णनीय है, ऐसा ही हम कह सकते हैं। और जब प्रकृति की, पेड़ की, वृक्ष की बात चली है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ तो नदियां भी बहती है, पानी है, तो
2: जी।
0: पानी पे, नदी पे, प्रकृति पे कुछ कहा जाए आपके श्रीमुख से।
2: जी, हमारे नर्मदापुरम में बहुत पानी है, बहुत हरियाली है, बहुत सुंदरता है और बहुत शांति है। मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत सुंदर है हमारा शहर। कभी आप आए, कभी देखें, तो आप उसको समझेंगे, बहुत सुंदर है हमारा शहर। यहाँ नर्मदा जी के पानी का जो प्रताप है, वो यहाँ के लोगों में भी देखने को मिलता है। यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर, बहुत शांत और बहुत प्यारे,
3: जैसे कि आप प्यारी हो।
0: हाँ, ऐसा क्यों होता है
3: बिल्कुल
0: रचना जी, ऐसा क्यों होता है? आप तो स्वयं रचना है, इसलिए आपसे ही प्रश्न कर रहे हैं हम, कि ऐसा क्यों होता है कि जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, आसपास के जीव, चाहे वो मानव समुदाय हो, चाहे पशु पक्षी हो, उनका व्यवहार भी वैसा ही होता है। इसका क्या मनोवैज्ञानिक कारण है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप?
2: जैसे कहते हैं ना आदरणीय, कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि जैसी परिस्थितियों में, जैसी स्थितियों में, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उस वातावरण का असर भी हमारे मन पर, हमारे दिल पे और हमारे दिमाग पर बिल्कुल उसी तरह होता है। इसीलिए यहाँ के लोग सब इतने शांत, इतने प्यारे, इतने हरे हरे भरे, इसीलिए।
0: बहुत खूब, बहुत ही शानदार बातचीत रही निशा जी रचना जी के साथ। और रचना जी ने हमें बताया था कि गीत उनको बहुत ही प्रिय है, अच्छा लगता है, क्योंकि माँ से मोह होता है, वैसे ही प्रकृति से मोह होता है, नदियों से मोह होता है, और पेड़ पौधों से भी मोह होता है। प्रकृति और से प्यार करना, मोह होना, तो ये मोह मोह के धागे कहाँ तक फैले हैं। रचना जी के इस गीत में, जो इनको बहुत ही प्रिय है, आइए सुनते हैं हम भी रचना जी के साथ।

अभिव्यक्ति का आंचल और इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ रही रचना अमित पाराशर और डॉक्टर निशा अग्रवाल। और उससे पहले आपने सुना प्रोग्राम माँ का आंचल, और दोनों प्रोग्राम्स में आंचल शब्द आया, और वही आंचल जिसे हम आसमान कह सकते हैं वो भी हमारे ऊपर हमारी रक्षा के लिए शाश्वत है, कायम है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये प्रोग्राम भाया होगा, इसने आपको लुभाया होगा, अपने प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर प्रेषित करें। आज का ये सुनहरा सफ़र यहीं तक। बहुत धन्यवाद रचना जी और निशा जी।

से जुड़े हुए सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी।

0: और आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का जगमगाता सा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आम सी जिंदगियों के चमकते सितारों से, जो अपनी चमक से हमारे कुछ लम्हों को खास बना जाते हैं। आज हम अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं एक बेहद खूबसूरत और बेहद टैलेंटेड गायिका सोनिका को, जो कि शहर अंबाला की शान है। सोनिका जी, हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू सपना, एंड थैंक यू सभी श्रोताओं गण को मेरा नमस्ते, और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: ये हमारी खुश नसीबी है। हमारे सुनने वाले बेताब हैं ये जानने के लिए कि आज की जो हमारी जगमगाता सितारा हैं, उनकी पहचान क्या है और आपके शहर अंबाला की खासियत क्या है।
1: मेरी पहचान छोटी सी पहचान है सोनिका। आई एम सोनिका
0: जी,
1: और बेसिकली आई एम फ्रॉम कानपुर, कानपुर शहर से हूँ, और मेरी शादी अंबाला में हुई है
0: जी,
1: और अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। दो बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं, गुड़गांव में रहते हैं।
0: तो आपकी जो सारी परवरिश हुई है वो कानपुर की ही हुई है?
1: सारी परवरिश कानपुर की हुई है, मेरे पेरेंट्स कानपुर से ही हैं।
0: अच्छा अच्छा, तभी आपकी हिंदी जो है इतनी अच्छी है,
1: शुद्ध है।
0: जी, तो खैर ये तो बड़ी जाहिर सी बात है कि हर एक लड़की को अपना मायका बहुत ही पसंद होता है, पर आपके लिए इन दोनों शहरों में से आपके दिल के कौन से ज्यादा करीब है, अम्बाला या कानपुर?
1: एक्चुअली मैं बोलूँ तो अंबाला ज्यादा करीब है, कानपुर पसंद है, वहाँ पे मैंने बचपन बिताया है, लेकिन वो क्राउडेड ज्यादा लगता है मुझे।
0: अच्छा,
1: और मुझे पीसफुल जगह ज्यादा पसंद है, तो अंबाला मुझे बहुत छोटा सा और पीसफुल शहर लगता है
0: जी।
1: तो इसलिए मुझे अंबाला ज्यादा पसंद है कानपुर से ज्यादा।
0: वैसे आपने जो ये शब्द यूज किया है छोटा, कहने को तो शायद ये छोटा हो, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है हरियाणा के लिए भी और भारत के लिए भी। तो आपने शब्दों में बताइए कि आप अंबाला को किस तरह देखती हैं।
1: अंबाला हिस्टोरिकल अगर आप देखा जाए तो हिस्टोरिकल में भी, मतलब कि जब जिस टाइम पर ब्रिटिश और मुगल ने यहाँ पर रूल किया था उस टाइम से है
0: जी।
1: तो बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है ये उस टाइम का
0: जी।
1: और अंबाला फोर्ट है यहाँ पे
0: जी जी,
1: जो 14th सेंचुरी से है।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: हाँ जी, और एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, इंक्लूडिंग स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सब लोग बहुत अच्छी हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: इकोनॉमिक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, कपड़ा यहाँ बहुत फेमस है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि खासकर पंजाब के लोग, अगर किसी के घर में कोई शादी आती है तो वो पंजाब को छोड़ के सीधा रवाना हो जाते हैं अंबाला की तरफ शादी की शॉपिंग के लिए।
1: राइट। यहाँ के कुछ एक दो फेमस शॉप्स हैं तो जहाँ पर लोग स्पेशल शॉपिंग करने आते हैं।
0: क्या बात है। तो सोनिका, इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: तो सोनिका, अपनी बातों का हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। संगीत के बारे में कुछ बताइए कि आपकी रुचि क्या संगीत में शुरू से ही थी या इसके अलावा भी कुछ शौक रखती हैं आप?
1: हाँ, मैं शौक रखती हूँ, बहुत सारे शौक रखती हूँ। संगीत में मेरी रुचि सच में स्टार्टिंग से ही थी, और एक्चुअली मैं सिंगिंग से ज्यादा डांस करती थी।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: तो डांस का ज्यादा शौक था, लेकिन हाँ, सिंगिंग भी साथ साथ चलती रहती थी। मुझे म्यूजिक सुनने का बचपन से ही बहुत शौक था
0: जी।
1: बट हाँ, कभी कोई स्टेज प्रोग्राम तो नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरी मम्मी से मुझे ये गिफ्ट में मिला, आवाज मिली है।
0: अच्छा, वो गाती हैं आपकी मदर?
1: थी।
0: ओहो, अच्छा।
1: बहुत अच्छा गाती थी
0: जी।
1: और मींस 80 इयर्स में वो गए हैं, तो 80 इयर्स में भी उनकी वॉइस बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई बच्चा गा रहा हो।
0: अरे वाह, मतलब क्रिस्टल क्लियर वॉइस थी उनकी।
1: हाँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वॉइस
0: में ही मिली है ये सौगात।
1: हाँ, ये मुझे जीन्स में मिली है बिल्कुल, तो ये मेरी माँ का गिफ्ट है मेरे लिए।
0: तो आपके पिताजी को भी शौक रहा है संगीत?
1: नहीं, वो बिल्कुल सोशल वर्कर थे।
0: अच्छा।
1: वो बीजेपी की साइड थे और बहुत अच्छे सोशल वर्कर रहे हैं मेरे पापा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट। तो आपके हस्बैंड को है शौक संगीत का?
1: सुनते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन हाँ, मुझे मना नहीं करते हैं। कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो वो स्पेशली मेरे से बिना पूछे अनाउंस कराते हैं कि सोनिका गाएगी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अदरवाइज स्पाउसेस में बड़ा कम होता है कि एक दूसरे को इतना प्रोत्साहन मिले। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप बहुत लकी हैं, और हमारी यही भगवान के आगे भी यही प्रेयर रहेगी कि इसी तरह आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहे। तो सोनिका, आपने कभी स्टेज परफॉर्मेंसेज शादी के बाद दिए हैं?
1: मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेज ऐसे प्रोफेशनली तो नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ, 2-3 मीट्स में, ऐसे गेट टुगेदर में मैंने एक दो बार गाया है
0: जी जी
1: स्टेज पे।
0: तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आपके दिल को छू गया हो, या कोई हंसी वाली बात हुई हो जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहती हैं?
1: ऐसा तो कुछ खास मुझे याद नहीं है।
0: तो यहाँ मैं अपने श्रोताओं को सोनिका की तरफ से इसका जवाब मैं देना चाहूंगी कि मैंने इनकी मीट का एक वीडियो देखा था, जहाँ पर ये अपनी ऑडियंस से पूछ रही थी कि माइक कैसे पकड़ना है, कम से कम मुझे ये बता दो।
1: यस यस यस, मुझे सच में माइक पकड़ना अभी तक, क्योंकि मैंने अभी एक दो बार ही मीट्स में मैं गई हूँ और मैंने वहां पर स्टेज में परफॉर्म किया है, तो मैं जब भी माइक पकड़ती हूँ तो वो वॉइस सबके तक जाती ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे माइक पकड़ना सिखा दो।
0: वैसे सोनिका, आप इतनी मंझी हुई कलाकार हैं, तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि इसमें माइक की गलती है कि वो आपसे पकड़ा नहीं जा रहा, आपकी गलती नहीं है।
1: ठीक है।
0: चलिए, इसके साथ हम आपका अगला गीत लेते हैं।

0: सोनिका, आप स्म्यूल के जगत में एक जाना माना नाम है। वर्सेटिलिटी में आपका कोई जवाब ही नहीं। अलग अलग जॉनर्स के गीत आप बड़ी कुशलता से गा लेती हैं और ये मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है क्योंकि मैं अक्सर आपको सुनती रहती हूँ।
1: थैंक यू सो मच।
0: कई ग्रुप्स की भी आप बहुत एक्टिव मेंबर हैं, तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आप अपने संगीत के परिवार का तालमेल कैसे बनाती हैं।
1: बहुत सिंपल है
0: जी।
1: जब पहले घर का काम देखती हूँ
0: जी,
1: जो मेरी प्रायोरिटी है,
0: हाँ,
1: सुबह से उठकर, तो उसके बाद जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो वो टाइम मैं खुद को देती हूँ, वो काम करती हूँ जो मुझे खुशी देता है, और म्यूजिक मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है
0: जी। हम सबकी रूह की खुराक है संगीत, और इसके बगैर तो खैर हम अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। तो बड़ी अच्छी आपने ये बात बोली कि प्रायोरिटी तो हमेशा हर किसी की पहले परिवार ही होना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपने शौक भी पूरे करने चाहिए, नहीं तो
1: बहुत जरूरी है,
0: बड़ी नीरस हो जाती है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने शौक की जिंदगी कुछ टाइम अपने लिए हमें देना है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सोनिका, आप संगीत के साथ साथ आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अब अपने जीवन में कदम बढ़ाया है, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए कि आपको कैसे उस तरफ इंटरेस्ट बना।
1: स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए सिर्फ एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा इंसान बनकर रहना है
0: जी,
1: जिसमें लाइक मैं समझती हूँ कि नो क्रिटिसिज्म, नो जजमेंट
0: जी,
1: नो जेलसी, नो एंगर, इन शॉर्ट कि मुंह से कुछ भी निकालने से पहले हमें एक सेकंड का पॉज लो, फिर बस मुंह से निकाला हुआ ये शब्द सोच लो कि सामने वाले को कहीं हर्ट तो नहीं कर रहा।
0: और कहते हैं ना कि ये तो एक ऐसे तीर की तरह होता है जो वापस नहीं आप कभी ले पाते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से यही स्पिरिचुअलिटी है।
0: जी जी जी। एंगर की आपने बात की, तो एंगर को तो खैर काबू में रखना बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि आजकल की जिंदगी इतनी व्यस्त और इतनी तेज हो गई है। इवन अगर हम रोड पर भी जा रहे हो, कोई तेजी से हमें गलत तरीके से ओवरटेक कर जाए तो भी गुस्सा आ जाता है। तो
1: मुझे नहीं आता
0: है। आप अच्छा
1: आता ही नहीं है?
0: आता ही नहीं है।
1: नहीं आता, आसानी से नहीं आता।
0: अच्छा,
1: बहुत मुश्किल से गुस्सा आता है मुझे।
0: और जब आता है
1: आता है तो फिर थोड़ी देर का होता है, निकल जाता, फिर मैं बस वो रोती हूँ।
0: ओहो, मतलब आप अपने आप को ही तंग करती हैं, दूसरों को तंग नहीं करती?
1: नहीं, पर ठीक भी जल्दी होती हूँ।
0: जी जी, बहुत ही प्यारी इंसान हैं आप। हमारे श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सोनिका के साथ स्म्यूल में कई ड्यूएट्स भी गा चुकी हूँ, अक्सर इनको सुनती तो रहती ही हूँ। ये जितनी प्यारी इंसान है उतनी ही इनकी प्यारी आवाज है, शख्सियत है। खैर, हमारे श्रोता अब तक तो ये जान ही चुके होंगे आपके गीत सुनकर, तो इन दिलचस्प बातों से एक छोटा सा विराम लेते हैं और आपका अगला गीत सुनते हैं।

0: सोनिका, आज आपके डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने से यहाँ आपकी खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत आवाज और खूबसूरत गीतों से सारा माहौल महक उठा है। आपका दिल से आभार कि आपने अपनी व्यस्त जिंदगी से इतना वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में स्पेशली हमारे श्रोताओं के लिए कुछ अपने इतने बेशकीमती नगमे लेकर आई हैं। जाते जाते मैं चाहूंगी हमारे श्रोताओं के लिए आप दो शब्द जरूर कहते जाए।
1: बिल्कुल, मैं बस इतना सा कहना चाहूंगी, ऑलवेज चूज टू बी हैप्पी
0: जी,
1: चाहे कुछ भी हो। और इसके लिए मतलब और चाहे कुछ भी हो, आप सिर्फ हैप्पीनेस को चूज करो, आपको खुश रहना है। और इसके लिए रोज कुछ समय अपने लिए निकालकर अपनी पसंद का अपना पसंद का काम जरूर करो जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि हम सबके लिए तो जीते ही हैं, अपने लिए जीना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्यार, खुद को प्यार करना सबसे ज्यादा जरूरी है।
0: बहुत ही बढ़िया बात कही। अक्सर हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में अपने आप से ही प्यार करना भूल जाते हैं। हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, अपना नंबर हमारा सबसे पीछे होता है। स्पेशली जो भारत की गृहणियां हैं, जो होम मेकर्स हैं, मदर्स हैं, उनके ऊपर तो खैर ये बात बहुत ही 100% सही उतरती है। इनफैक्ट हम तो खाना भी जब बच्चे छोटे होते हैं तब खाते हैं कि चलो ठीक है, अगर इनका कुछ छूटा है तो वो खा लो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सच। हाँ,
0: तो अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात हमारे श्रोताओं को बोली।

0: आपका बहुत धन्यवाद सोनिका.
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन.
0: ये हमारी खुशनसीबी है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए. तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात अंबाला से सोनिका जी के साथ. मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी. जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ. यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए. रब राखा.

नया साल नई शुरुआत जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू के संग लेकर आए हैं हम नया एपिसोड जिसका नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। हर दिन रात 8 बजे आप सुनेंगे जयपुर रेडियो की ये खास पेशकश, आपकी आवाज आपकी पहचान। और इस खास प्रोग्राम में अर्चू रानू के संग होंगे बहुत सारे मेल फीमेल सिंगर्स जो अपनी आवाज में आवाज मिलाएंगे।

0: संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी, और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का जगमगाता प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। स्टूडियो में स्वागत करती हूं आज की अद्भुत शख्सियत का, जो अपनी प्रतिभा और जज्बे से न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी कमाल कर रहे हैं। ये है एक फैबुलस सिंगर और ये रह चुके हैं भारतीय वायुसेना के पायलट अधिकारी। ये ना सिर्फ सुरों के जादूगर हैं बल्कि आसमान में भी अपने साहस और कौशल का परचम लहरा चुके हैं। ये है प्रदीप देशपांडे जी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद। जयपुर डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मुझे आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए सपना जी आपका और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, हमारी खुशकिस्मती। प्रदीप जी, जहां आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भरते हुए देश की रक्षा में अपने कर्तव्य को निभाना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है, वहीं आपकी आवाज का जादू श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। हमारे सुनने वालों को आप अपने शब्दों में बताइए कि प्रदीप देशपांडे की पहचान क्या है।
1: जी, मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ था और उसके एक भारतीय वायुसेना फौजी परिवार में हुआ था। उसके पश्चात, क्योंकि मैं एक फौजी परिवार में था, हवाई जहाजों के आसपास था, तो एक नेचुरल सा चॉइस बन गया कि मैं भी इन एयरक्राफ्ट को उड़ाने की कोशिश करूं। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए फिर मैंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करी, और उसके बाद तकरीबन 22 साल भारतीय वायुसेना में काम किया। जी। और उसके बाद एक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके मैं एक इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए फ्लाई कर रहा हूँ, और आज तक वही कर रहा हूँ।
0: जी, तो आपके पिताजी भी इंडियन एयरफोर्स के ही पायलट थे।
1: जी, वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट नहीं थे, वो इंजीनियर थे। अच्छा। पर फ्लाइंग बेसिस में उनकी पोस्टिंग रही है, तो इस वजह से हवाई जहाजों के आसपास ही बचपन सारा गुजरा।
0: जी, तो आपके जो माता जी हैं वो हाउसवाइफ रही हैं कि उन्होंने भी काम किया है?
1: वो अधिकांश वो हाउसवाइफ नहीं है, पर उन्होंने जब हम तीनों बच्चे कुछ बड़े हो गए तो उन्होंने फिर अपनी जो इच्छा थी, जो उनको टीचिंग का बहुत शौक था, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी बीएड करके। फिर वो कुछ दिन, काफी साल, करीबन 15 साल पुणे में एक अध्यापिका के रूप में रहेंगी।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि 22 साल तक आप इंडियन एयरफोर्स के साथ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ट्रांसफरेबल रही होगी ये पोस्टिंग्स। तो बहुत सारे शहरों में रहे हैं आप?
1: जी, बहुत सारे, मतलब भारतीय, पूरा भारत का, हिंदुस्तान का तकरीबन हर कोना देखा है मैंने, पर कोने ही देखे हैं। शहरों में नहीं गया हूँ, पर शहरों के आसपास की जो कुछ बॉर्डर्स के पास की जो छोटे छोटे शहर है, वहाँ पे मोस्ट ज्यादातर मेरा एयरफोर्स का जीवन गुजरा है।
0: जी, तो भारत का कौन सा कोना आपके दिल के बेहद करीब है?
1: जी, सबसे सबसे दिल के करीब तो मेरा शहर है जो कलकत्ता है, वो मेरा जन्म स्थान भी है। पर कलकत्ता से मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है, क्योंकि हमारी सारी बचपन की यादें कलकत्ता से जुड़ी हुई। वहाँ की दुर्गा पूजा के जो पंडालों में हम जाते थे, और वहाँ की जो नारियल और नारियल के भूसे के साथ जो खुशबू आती थी वहाँ पे पंडालों की, वहाँ की मिठाई, और उस वजह से मुझे कलकत्ता शहर बहुत बहुत पसंद है।
0: अरे वाह, क्या बात है। बहुत ही दिलचस्प परिचय रहा आपका। तो इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी।

0: प्रदीप जी, संगीत में क्या आपने कोई शिक्षा ली है?
1: जी, कुछ शिक्षा जरूर ली है मैंने, पर वो इतनी फॉर्मल भी नहीं थी। पर जी हाँ, तकरीबन 6-7 साल में एक मेरी गुरु हैं उर्वशी झा जी, जो पद्म भूषण गिरिजा देवी उनकी शिष्य रही हैं। वो बंबई में मेरे घर के पास ही रहती हैं। तो जब मुझे कुछ वक्त मिला अपने एयरलाइन के जॉब में, तब मैंने सोचा कि उनसे जाके कुछ शिक्षा लूँ। तो जरूर हाँ, उनसे मैंने कुछ 6-7 साल म्यूजिक सीखा है।
0: तो इसका मतलब जो आपने म्यूजिक सीखा है वो बचपन में नहीं सीखा, आपने बाद में अपने कह सकते हैं कि अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ आपने इसमें थोड़ा सा शौक रखा।
1: जी हाँ, दरअसल बात ये हुई कि बचपन में मेरी माँ वैसे नेचुरली बहुत अच्छा गाना गाती हैं, वो एक नेचुरल सिंगर हैं।
0: अच्छा।
1: तो जब मैं बहुत छोटा था तब उन्होंने एक म्यूजिक टीचर हमारे यहाँ आते थे और वो उनको सिखाते थे। तो मैं बहुत छोटा था, 6-7 साल का था, तो उनके जब उनका उनके जो लेसन चलते थे, मैं वहाँ पे जाके उनके पास बैठ जाता था और उनके गाने सुनता रहता था। और जब उनका लेसन खत्म हो जाता था, मैं जाके खुद हारमोनियम बजाने लगता था। तो मुझे शायद एक नेचुरल सा लगाव हो गया म्यूजिक के साथ। और उसके बाद मेरी माँ ने हमें बहुत एनकरेज किया, फॉर्मली बेशक हमने म्यूजिक ना सीखा हो, पर हमें स्कूलों के प्रोग्राम्स में, रेसिटेशन में, गानों के प्रोग्राम में उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। और उसके वजह से हम गाते रहे। और मेरी बड़ी बहन जो है, उनको भी गाने का बहुत शौक है, उनको सुरों पर और एक गाने के लफ्जों पर बहुत अच्छी पकड़ है। तो वो भी सारा दिन गाना गुनगुनाते और हम भी उनके साथ गाना, फिर उनका गाना सुनते और गाना गाते। उसके बाद एयरफोर्स में भी एक वैसा ही एक एटमॉस्फेयर रहा है, जहाँ पार्टीज में इनफॉर्मली गैदर होके लोग बैठ के गाना बजाते हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई गाना बजा रहा है। तो इसके साथ साथ मेरा गाना बजाना चलता रहा। पर मैंने सोचा जरूर था कि कभी फॉर्मल अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं इसको जरूर सीखूं। तो वो मैंने कुछ हद तक एफओस छोड़ने के बाद पूरी की।
0: जी जी, तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी बड़ी बहन को भी संगीत का काफी शौक है और आपकी माता जी तो आपकी प्रेरणा रही हैं, तो क्या आप सबने कभी मिलकर कभी कोई स्टेज परफॉर्मेंस दिया है?
1: हाँ जी, बचपन में किए हैं एफओस के कई प्रोग्राम्स में। और हमारे जो गणेश पूजा होती थी हर जगह पे, जैसे महाराष्ट्र मंडल एक तरीके से होता था, बेशक बंगाल में हो या हम पंजाब में भी थे, पर ये गणेश पूजा के दौरान कुछ प्रोग्राम्स होते थे और उसमें हम लोग मिलके, और भी लोग होते थे, पर हाँ, मैं, मेरी माँ और मेरी बहनों ने मिलके, बहन ने मिलके काफी प्रोग्राम्स किए हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स।
0: आपने कभी बचपन में सोचा कि बड़े जब आप हो जाएंगे तो स्म्यूल जो कैरियोके ऐप है वहां पर आपका इतना जाना माना नाम हो जाएगा, इतनी अच्छी फॉलोइंग हो जाएगी, इतने फैंस आपको मिल जाएंगे, तो कभी आपने इस बारे में सोचा था?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर स्प्यूल में एक इतनी सुंदर एक अपॉर्चुनिटी मिली है जो मेरे को बहुत बेहद बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड वाइड हम सारे देशों विदेशों में सिंगर्स के साथ जुड़ सकते हैं और बड़े बड़े अच्छे सिंगर्स से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। बहुत बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रही है।
0: यहाँ मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि प्रदीप देश पांडे जी बहुत ही उच्च स्तर के गायक हैं और मेरी खुशकिस्मती रही है कि स्म्यूल में मैंने इनके साथ कभी कभी युगल गीत मैं इनके साथ गा लेती हूँ, और हमेशा मुझे मेरे मन के अंदर डर सा लगा रहता है कि वहाँ से कोई ऐसा कमेंट ना आ जाए कि सपना ये क्या गा बैठी हो तुम, क्या गाया है?
1: बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य रहा है कि आप जैसे गायकों के साथ इतने इतने एनर्जेटिक और इतने एक्सप्रेसिव गायक
0: प्रॉब्लम है आपका प्रदीप।
1: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं नहीं, बिल्कुल वाकई में। अब बाकी श्रोता जो स्म्यूल पे हैं वो देखें सपना जी को और वो खुद डिसाइड करें इस बात।
0: चलिए, यहाँ पर हम आपका एक और गीत लेते हैं।

0: प्रदीप जी, जैसे आपने बताया कि आप एक इंटरनेशनल कमर्शियल एयरलाइंस में पायलट हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जिंदगी बेहद व्यस्त होगी। तो आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी साथ में जरूर वक्त निकालते होंगे। संगीत के शौक के साथ आप इन सब का तालमेल कैसे बनाते हैं?
1: दरअसल फ्लाइंग में मेरा वक्त काफी निकलता जरूर है, पर मुझे फ्लाइंग का इतना शौक है कि मुझे फ्लाइंग करने के बाद एक एनर्जी सी, एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से जब मैं होटल्स में पहुंचता हूं या घर वापस आता हूं, तो भी मेरे को उस इतनी थकान महसूस नहीं होती है। और मैं जहाँ पे जितना मुझे वक्त मिलता है, बीच बीच में मैं गाने सुनता जरूर हूँ, और होटल्स में भी अपने म्यूजिक सिस्टम को लेके चलता हूँ, कुछ कई बार मैं अपने कीबोर्ड को भी लेके चलता हूँ अपने साथ, और वहीं पे मैं अपने जो भी कुछ रियाज है या कुछ प्रैक्टिस है या कुछ गाने प्रोग्राम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं तो मैं वहां कर लेता हूँ। और घर में मैं सुबह यूजुअली जल्दी सुबह उठ जाता हूँ, बाकी घर बार उठने से पहले उठकर अपना कुछ प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया है, उन्होंने कभी इस बात में कोई अड़चन नहीं डाली। और मेरे आसपास दोस्त हैं, उनके साथ मिलकर हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो
0: तो कभी कोई ऐसा मौका आया है कि विमान उड़ाते वक्त आपने अपने पैसेंजर्स के लिए कभी कोई इम्प्रॉम्प्टू गीत गाया हो?
1: नहीं, ये तो नहीं हुआ है और ये होना भी नहीं चाहिए।
0: क्योंकि हम तो जी बॉलीवुड की फिल्मों पे पले हैं, तो वहां पर तो अक्सर यही दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार या ऐसा कोई हीरो अगर विमान उड़ा रहा है तो वो वहीं पर अपना संगीत और गीत शुरू हो जाते हैं।
1: नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर जी हाँ, फ्लाइट खत्म होने के बाद हम लोग क्रू कई बार इकट्ठे होके जरूर गाते हैं, कराओके करते हैं, वो जरूर होता है।
0: अरे वाह, बहुत ही दिलचस्प आपके साथ बातचीत हो रही है। यहाँ पर हम एक छोटा सा विराम लेते हैं और आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं।
1: जी जरूर।

0: प्रदीप जी, कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे कोई खड़ा रहता है जो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है और उसे मॉरल सपोर्ट देता है। आपने अपनी संगीत की प्रेरणा अपनी माता जी को बताया है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जहाँ पर आप खड़े हैं, अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर अगर आप देखते हैं, तो आप अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा और किसे देना चाहेंगे?
1: जी, मेरी अपने इस कामयाबी का श्रेय मैं अपने परिवार को देना चाहूंगा। सबसे पहले मेरी पत्नी को, जो मेरे साथ बॉर्डर स्टेशंस पे रही हैं सारा टाइम। 20-22 साल हमने बॉर्डर्स पे गुजारे हैं, जहाँ पे बिल्कुल बहुत कम फैसिलिटीज नहीं है। उसके डिस्पाइट दैट वो बिल्कुल स्ट्रांगली मेरे साथ खड़ी रही हैं थ्रू आउट माई करियर। और मेरी बेटी तानिया, जो अब खुद माँ बन गई हैं, जिनकी छोटी बेटी आर्या है, वो मेरे साथ हमेशा रही हैं। और ऑफ कोर्स मेरे माता पिता, मेरी दोनों बहनें, मेरी छोटी बहन जो अब यूएस में है, वो भी मेरे गानों को बहुत बहुत चाव से सुनती हैं।

0: बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आपकी स्टूडियो में आप बुलाने का, बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी रेडियो इंटरव्यू करूंगा, इस तरह का रेडियो इंटरव्यू करूंगा आप जैसे आरजे के साथ। और
1: जी अगेन ये आपका बड़प्पन है। और यहाँ पर फिर से मैं अपना वही वाला सवाल दोहराती हूँ कि क्या आपने बचपन में कभी सोचा था कि जयपुर रेडियो पर भी आप इस तरह के म्यूजिकल प्रोग्राम में एक गेस्ट बनकर आएंगे?
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सोचा था। और अभी जब मैंने ये इसके बारे में अपने माँ और बहनों को बताया और अपनी बीवी को बताया, तो उन्होंने पहले तो सोचा कि ये शायद कुछ झूठ बोल रहा है या हमारे से कुछ खिलवाड़ कर रहा है। तो जब आपकी रिकॉर्डिंग मैं उनको सुनाऊंगा, जब प्रोग्राम सुनाऊंगा, तब शायद वो मुझ पे यकीन करेंगे।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद प्रदीप जी।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ आके।
0: तो दोस्तों ये थी हमारी मुलाकात प्रदीप जी के साथ। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारे के साथ। हमारे साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा। संगीत से जुड़े हुए

0: सब तो सुना था हमने वहां, पर ना जाना महुआ को।
1: शुभ आरंभ।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ रहती हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुरानू 16 यानी अर्चना अग्रवाल। वेलकम है अर्चना जी आपका आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम सबसे पहले माँ जो जननी है, माँ जो प्रकृति है, माँ जिसके आंचल के छांव तले हम पले हैं, बढ़े हैं, चले हैं और चल रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और आज का ये अंक उनके नाम करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो गीत हो वो माँ को समर्पित हो, लेकिन नाम तो किया ही जा सकता है, क्योंकि गीत किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। और ये क्या कह रहे हैं ये भी सुन ही लेते हैं।

माँ का नाम, माँ को प्रणाम। अर्चना अग्रवाल हरिनारायण के साथ इस गीत में।

माँ का नाम, माँ के नाम ये पैगाम। अर्चना अग्रवाल के संग हरि नारायण।

तेरा ही नाम लिखा रखा है, चीर के देखे इस दिल को तो प्यार का नाम खुदा रखा है, और वो खुदा जिसके अनेक रूप नहीं हो सकते, वो माँ को अपना रूप देके इस दुनिया में भेजता है और हमसे बात करता है माँ के रूप में। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। और आज के गीत माँ के नाम, जो भी कहते हैं वो सब माँ के नाम। हरिनारायण और अचुरानो 16 को आपने सुना, आइए सुनते हैं अगला गीत।

तुम ही करो कोई फैसला ओ मेरी जाने जा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। सैंडी चौहान साथ दे रहे थे इस गीत में अर्चुरानू 16 का। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच। लेके आता है हर सप्ताह आपके लिए सुरीले गीत। जो गीत इस मंच पर गाती हैं अर्चुरानू 16 और साथ देते हैं उनके को सिंगर्स। इस गीत में सैंडी चौहान ने अर्चना अग्रवाल का साथ दिया। और आइए सुनते हैं अगला गीत।

गीत के हिस्से गायक किशोर सुशील ठिंगरा। आपकी आवाज आपकी पहचान, दोनों सुरीले सिंगर इस मंच पर

किशोर फॉर यू अर्चुरानू का साथ दे रहे थे। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और इस कोशिश में हम कामयाब होते हैं जब हमारे गीतों के साथ आप गाते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में अर्चुरानू का साथ देने आए अब तक सैंडी चौहान, हरि नारायण और किशोर फॉर यू। आपकी आवाज आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। वादे की बात करते हैं, एक और मुलाकात। और इस गीत में साथ दे रहे हैं अर्चुरानू का, सिंग फॉर पीस।

और चलते चलते हम कहां आ गए हैं ये हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन जहां आ गए हैं वहां से हम वापस नहीं जा सकते, आगे ही बढ़ेंगे। और आपने सुना प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये पहला सोपान, और इसमें हमारे साथ रही अपनी सुरीली आवाज के साथ सुपर सिंगर अर्चुरानू 16 यानी अर्चना अग्रवाल मुंबई से। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये प्रसारण आपने सुना जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस मंच पर हमारे एक मेल सिंगर और होते हैं जिनके नाम से आप वाकिफ होंगे और जिनके गीतों से आपको होने लगा है आजकल थोड़ा थोड़ा अनुराग। तो हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं अनुराग का इस मंच पर।

अनुराग का पहला गीत। फिल्म घर से।

0: हाय ओल्क।
1: आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज हैं, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं। आपने सुना अनुराग को प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के इस पहले गीत में, और आइए सुनते हैं अगला गीत अनुराग की आवाज में।

इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और हमारे संग है जयपुर रेडियो के मेल सिंगर अर्चु रानो के साथ अनुराग मुंबई से। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच, आवाज आपकी है और हम आपके साथ हैं। आइए सुनते हैं अनुराग अगले गीत में क्या कहते हैं।

फिर वही रात है और फिर वही बात है, और बात ये कि आपने सुना ये खूबसूरत गीत जिसे आवाज़ दे रहे थे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग। आपकी आवाज़, आपकी पहचान का ये मंच, और हम कहेंगे फिर वही सिंगर लेके आए हैं हम, यानी अर्चुरानो 16 को अगले दो गीतों में। तो आइए सुनते हैं पहला गीत।

0: आपकी आवाज आपकी पहचान, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। संजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं आइए सुन लेते हैं।
1: छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई।
0: अर्जुन रानू के साथ

आवाज ने गीत को पुकारा और मुलाकात हो गई। मुलाकात का ये मंच, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, प्रोग्राम के तहत जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं। आपकी आवाज आपकी पहचान। अगले गीत में प्रीतपाल सिंधु आ गए हैं अर्चुरानू के साथ। आपकी आवाज आपकी।

0: गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर लिसनर्स ऑफ जयपुर रेडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे वीकेंड शो में। नई आवाज नई पहचान में हम नए सिंगर्स को उनकी आवाज को आपसे रूबरू कराते हैं। सिंगर्स फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री कम एंड परफॉर्म हियर। दे ऑल्सो शेयर देयर थॉट्स एंड ओपिनियंस, स्पीक देयर हार्ट आउट। अच्छा लगता है सिंगिंग के साथ साथ उनकी जुबानी को भी हम सुनते हैं, तो इट मोटिवेट्स अ लिसनर्स एंड ऑफ कोर्स दैट गिव्स अस आल्सो अ काइंड ऑफ मोटिवेशन टू कीप गोइंग। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ जयपुर रेडियो पर। मैं हूँ आरजे श्री और मेरे साथ हैं रेडियो हम सफर आरजे देव।
1: थैंक यू सो मच श्री, आप आती हैं और अपनी मधुर आवाज हम सबको सुनाती हैं, वेलकम करती है हमारे नए श्रोताओं को, हमारे नए सिंगर्स को इंट्रोड्यूस भी करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पर गायक कलाकारों को लेकर आती हैं। और ऐसे ही आज भी हम ऐसे ही कलाकार को लेकर आए हैं। इनका नाम है अशोक कुमार। अशोक कुमार जी पंचकुला हरियाणा में विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे कार्यरत हैं और बहुत अच्छा प्रयास रहता है इनका। तो हम आज इनके गीत हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे। डिजिटल वॉइस फेड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान। मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में भी तो यारो जन्नत होती है। आज बहुत ही खास दिन है, आज माँ का दिन है। वैसे तो कौन सा दिन है जो माँ के बिन है, लेकिन आज विशेष मनाया जाता है। तो हम भी जयपुर रेडियो की हमारे पूरी टीम की तरफ से आप सभी को मातृ दिवस की

हार्दिक शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही अपने माता पिता की सेवा करते रहें, क्योंकि माँ है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी ही बेहतरीन आवाज से, जो नई आवाज नई पहचान बनेगी। सबसे पहले हम सुनते हैं पेंगेस्ट फिल्म का गीत, जो मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था। एसडी बर्मन साहब ने इसे संगीतबद्ध किया था और लीजेंड हमारे किशोर दादा ने इसे गाया था। आइए हम सुनते हैं इसे अशोक कुमार की आवाज में। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गंवारा नहीं। बहुत ही खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं हम किशोर कुमार की गाई हुई इस गीत को अशोक कुमार से।

क्या बात है, बहुत अच्छी शुरुआत। अशोक कुमार जी हरियाणा में पंचकुला के रहने वाले हैं और वहाँ ये विद्युत वितरण विभाग में जेएल हैं। तो आइए इनसे सुनते हैं अगला गीत, मदहोश फिल्म से। राजा मेहंदी अली खान साहब के लिखे इस गीत को मदन मोहन ने संगीत दिया था। तलत महमूद साहब ने इस गीत को गाया था अपने विशेष अंदाज में और हम आज इसे सुनेंगे अशोक कुमार जी की आवाज में।

वाह, ये भी बहुत प्यारा गीत आपने सुनाया है। कोशिश करते रहिए, वैसे ही आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि संगीत के सफर का कोई अंत नहीं होता है और ये जहाँ से भी शुरू होता है वहाँ पर भी खत्म करने की इच्छा नहीं होती है। तो चलिए हम सुनते हैं अगला गीत प्यार की जीत फिल्म से। खबर जलालाबादी साहब के लिखे इस गीत को हुसन लाल भगतराम ने संगीत से सजाया था। हमारे लीजेंड सिंगर आदरणीय रफी साहब ने इस गीत को गाया था और आज हम इसे सुनेंगे अशोक कुमार की आवाज़ में।

बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत डिजिटल वॉइस वर्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ड है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान। आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं हमें अपनी राय अपने कमेंट्स जरूर देते रहिए। चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। तकदीर फिल्म के इस गीत को आनंद बख्शी साहब ने लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इसे संगीत से सजाया था, रवि साहब ने इस गीत को गाया था और आप सुनेंगे इसे अशोक कुमार जी की आवाज में। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए तुम और याद आए, बहुत ही खूबसूरत गीत है।

का विशेष दिन याद रखिए, आज मातृ दिवस है और हमें अपने माँ के लिए कुछ न कुछ नया सोचना है। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हमें दिया है, हमें जीवन दान दिया है। हमें इस संसार में लाने का श्रेय जो है वो माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो हमें उन्हें उनके चरणों में ये बात हमेशा समर्पित रहना है। किसी को घर मिला इससे मैं किसी की दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था तो मेरे हिस्से में बस माँ आई। चलिए सुनते हैं अगला गीत बारात फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी साहब के लिखे इस गीत को चित्रगुप्त ने संगीतबद्ध किया था। लीजेंड सिंगर मुकेश चंद्र माथुर साहब ने इस गीत को गाया था। हम आज इसे सुनेंगे अशोक कुमार जी की आवाज में हरियाणा से।

बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत सांझ और सवेरा फिल्म से। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को शंकर जय किशन साहब ने संगीतबद्ध किया था और रफी साहब ने इस गीत को गाया था। आइए हम सुनते हैं अशोक कुमार जी की आवाज में।

हरियाणा की आवाज आप सुन रहे हैं। ऐसे ही उभरते कलाकार हम तक आते हैं और हम उनकी आवाज को पूरी दुनिया को सुनाते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही है नई आवाज नई पहचान। कुछ कमियां तो होती है जिन्हें धीरे धीरे ठीक किया जाता है, और वो कमियां हम उन्हें कहते हैं कि आप इसे सुधार करके आगे के लिए संभाल कर रखिए, क्योंकि संगीत को सीखने की कोई उम्र नहीं होती और संगीत के बिना तो अधूरा सा लगता है कुछ इस जीवन में। आज हम मना रहे हैं मातृ दिवस और अपनी माँ के लिए लबों पे उसकी कभी बददुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। चलिए सुनते हैं अगला गीत गोरी फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को रवि ने संगीतबद्ध किया था और रफी साहब ने इस गीत को गाया था। आइए सुनते हैं हम इसे अशोक कुमार की आवाज में।

कुछ बातें होती है, कुछ गीत होते हैं, कुछ अंदाज होता है और हम उन्हें आप तक पहुंचाते हैं। आइए सुनते हैं अशोक कुमार जी से एक और प्यारा सा गीत, बड़ी मुश्किल में। चलिए सुनते हैं।

0: इनक्रेडिबल सिंगिंग।
1: मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता बन जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बस बच्चा बन जाऊं। अब सुनते हैं एक गजल, खूबसूरत है तेरी आंखें, बहुत प्यारा सा गीत है, बहुत ही अलग अंदाज का। आइए सुनते हैं अशोक कुमार जी की आवाज में।

0: सॉन्ग सिंगिंग करते ना, इसलिए
1: प्यारे प्यारे सिंगर्स आके परफॉर्म करते हैं तो अच्छा लगता है ना दोस्तों। बहुत से सिंगर्स ऐसे हैं जिनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है, लेकिन हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश उन तमाम सिंगर्स के लिए जो खुद पर विश्वास रखते हैं और खुद के हुनर पर विश्वास रखते हैं।
2: एक और गजल है, मिले किसी से नजर, सुनते हैं हम इसे अशोक कुमार जी की आवाज में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान, और आज की हमारी नई आवाज है पंचकुला हरियाणा से अशोक कुमार जी की। अशोक कुमार जी विद्युत विभाग में कार्यरत है और बहुत अच्छा गाने की कोशिश करते हैं। आगे भी हम इनके गीत सुनते रहेंगे, तो चलिए हम सुनते हैं एक और गीत सौतन फिल्म से। सामन कुमार साहब ने इस गीत को लिखा था और उषा खन्ना ने इसे संगीत से सजाया था। लेजेंड हमारे किशोर दादा ने इस गीत को गाया था और ये बड़ा फनी सॉन्ग है। इसे आप सुनेंगे आपको मजा आएगा, तो चलिए सुनते हैं ये भी गीत। सासु तीरथ ससुरा तीरथ तीरथ साले साली हैं। तो आइए सुनते हैं अशोक कुमार जी की आवाज में।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये देव रेडियो वर्ल्ड है और आप सुन रहे थे प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान में अशोक कुमार जी को पंचकुला हरियाणा से। दोस्तों हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं हमें अपनी राय अपने कमेंट्स जरूर करते रहिए क्योंकि आप
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। मैं हूँ अजय प्रीत लेकर के आ गई हूँ एक खास प्रोग्राम मदर्स डे स्पेशल। आज माँ का दिन है। वैसे मैं ये नहीं बोल सकती क्योंकि माँ के दिन तो रोज ही है, माँ के बिना कौन सा दिन है। लेकिन 10th of May जो मदर्स डे स्पेशल डे होता है उसमें हमारे कुछ चुनिंदा सिंगर्स लेकर के आए हैं अपने कुछ प्यारे प्यारे से नगमे हर एक माँ को स्पेशल फील करवाने के लिए। तो जयपुर रेडियो की पूरी टीम की ओर से अजीत की ओर से हर माँ को प्यार और सम्मान। चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये स्पेशल प्रोग्राम और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। तो सुनते रहिए जयपुर रेडियो, मिलते हैं प्रोग्राम के बाद। हैप्पी मदर्स डे।
2: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: हैप्पी मदर्स डे।
1: मैं प्रताप भार्गव जयपुर रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई देता हूँ।

माँ के लिए क्या लिखो, मैं खुद उनका लेख हूँ। आत्मा के बंधन की गहराई देखो ऐसी, मुझे चोट लगे पर पीड़ा माँ को हो जैसी। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल लिसनर्स। जयपुर रेडियो की तरफ से मैं वैदेही खंबाती अहमदाबाद से आपके लिए एक बहुत ही सुरीली

माँ के बिना हर खुशी अधूरी लगती है और उसके साथ हर मुश्किल छोटी। रचिता की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।

चैटर रेडियो के सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। माँ धरती है, माँ ही नभ है, माँ रब है और माँ ही सब कुछ है। सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ जयश्री बॉम पुना से।

साथ दे या ना दे, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। मैं किरण बैंगलोर से विशिंग ऑल द जयपुर रेडियो लिसनर्स अ हैप्पी मदर्स डे।

के प्यार का कोई मोल नहीं होता, इसीलिए तो दुनिया में माँ से अनमोल कोई नहीं होता। मैं हूँ आरजे प्रीत, जयपुर के हॉलमार्क के लिए।

0: हैप्पी मदर्स डे।
1: नमस्ते, जयपुर रेडियो विशेस अ हैप्पी मदर्स डे टू ऑल लवली मॉम्स।

डिजिटल वॉइसवर्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, मैं हूँ आरजे प्रीत, लेकर के आई मदर्स डे स्पेशल। आज आपने मदर्स डे स्पेशल प्रोग्राम सुना, उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। माँ के लिए ये शब्द बहुत कम है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ ये जरूर जानकारी देना चाहूँगी कि मदर्स डे सेलिब्रेशन जो हम करते हैं कि कब स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किया। मदर्स डे मनाने की शुरुआत सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में की हुई थी और इसे शुरू करने का श्रेय जाता है अन्ना जार्विस को। उन्होंने अपनी माँ की याद में ये दिन मनाना शुरू किया। उसके बाद 1914 से मदर्स डे को आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की गई। कुछ भी हो, हमें अन्ना जार्विस को भी थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमने खास दिन चुना अपनी माँ को प्यार और सम्मान देने के लिए। जयपुर रेडियो की पूरी टीम बहुत आदर और सम्मान देती है हर माँ को, और ये आप सबसे एक विनती करती है कि अपनी माँ को प्यार और सम्मान दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, वो आपकी जन्मदाता है। तो इतना तो ज़रूर बोल लूँगी कि मदर्स डे बहुत प्यारा दिन है, अपनी माँ के लिए ज़रूर से कोई गिफ्ट लाइए और उनको ज़रूर से गिफ्ट दीजिए। हमारे जयपुर रेडियो के कुछ सिंगर्स जिन्होंने मदर्स डे सेलिब्रेशन सेलिब्रेट किया, उनके नाम लेना चाहूँगी। अनुक्रॉन, डॉक्टर कंकना कालरा, किरण, प्रताप भार्गव, पंकज कुमार चतुर्वेदी, रचिता, सौरभ गुप्ता, वैदेही और जायो, सभी सिंगर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। इतना प्यारा सा सेलिब्रेशन, मदर्स डे सेलिब्रेशन में इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग हमारे जयपुर रेडियो के लिस्टनर्स तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वापस से फिर कोई नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक जयपुर रेडियो की पूरी टीम मदर्स डे पर सारी माओ को सलाम कहती है और बहुत प्यार और सम्मान देती है। तो सुनते रहिए जयपुर रेडियो, जल्दी ही फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ आपको मिलूंगी और फिर से आऊंगी वापस। तब तक अपना ध्यान रखिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी माँ को आज बिल्कुल भूलिएगा मत, से गिफ्ट देना।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, मैं हूँ आरजे प्रीत, लेकर के आ गई हूँ एक खास प्रोग्राम मदर्स डे स्पेशल। आज माँ का दिन है। वैसे मैं ये नहीं बोल सकती क्योंकि माँ के दिन तो रोज ही है, माँ के बिना कौन सा दिन है। लेकिन 10th of May जो मदर्स डे स्पेशल डे होता है, उसमें हमारे कुछ चुनिंदा सिंगर्स लेकर के आए हैं अपने कुछ प्यारे प्यारे से नगमे हर एक माँ को स्पेशल फील करवाने के लिए।

कृष्णा जी आपका आज के इस खास प्रोग्राम में, हम सबसे पहले माँ जो जननी है, माँ जो प्रकृति है, माँ जिसके आंचल के छांव तले हम पले हैं, बढ़े हैं, चले हैं और चल रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और आज का ये अंक उनके नाम करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो गीत हो वो माँ को समर्पित हो, लेकिन नाम तो किया ही जा सकता है, क्योंकि गीत किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। और ये क्या कह रहे हैं ये भी सुन ही लेते हैं। माँ का नाम लिखा रखा है, माँ का नाम, माँ को प्रणाम। अर्चना अग्रवाल हरिनारायण के साथ इस गीत में।

माँ का नाम, माँ के नाम ये पैगाम। अर्चना अग्रवाल के संग हरि नारायण।

तेरा ही नाम लिखा रखा है, चीर के देखे इस दिल को तो प्यार का नाम खुदा रखा है। और वो खुदा जिसके अनेक रूप नहीं हो सकते, वो माँ को अपना रूप देके इस दुनिया में भेजता है और हमसे बात करता है माँ के रूप में। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। और आज के गीत माँ के नाम, जो भी कहते हैं वो सब माँ के नाम। हरिनारायण और अचुरानो 16 को आपने सुना, आइए सुनते हैं अगला गीत। सैंडी चौहान दे रहे हैं अचुरानो का साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ड सुन रहे हैं आप।

तुम ही करो कोई फैसला ओ मेरी जाने जा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। सैंडी चौहान साथ दे रहे थे इस गीत में अर्चुरानु 16 का। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच लेके आता है हर सप्ताह आपके लिए सुरीले गीत। जो गीत इस मंच पर गाती हैं अर्चुरानु 16 और साथ देते हैं उनके को सिंगर्स। इस गीत में सैंडी चौहान ने अर्चना अग्रवाल का साथ दिया और आइए सुनते हैं अगला गीत। गीत के हिस्से गायक किशोर, सुशील ठिंगड़ा। आपकी आवाज आपकी पहचान, दोनों सुरीले सिंगर इस मंच पर।

किशोर फॉर यू अर्चुरानू का साथ दे रहे थे। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और इस कोशिश में हम कामयाब होते हैं जब हमारे गीतों के साथ आप गाते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में अर्चुरानू का साथ देने आए अब तक सैंडी चौहान, हरि नारायण और किशोर फॉर यू। आपकी आवाज आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। वादे की बात करते हैं एक और मुलाकात, और इस गीत में साथ दे रहे हैं अर्चुरानू का सिंग फॉर पीस।

और चलते चलते हम कहां आ गए हैं ये हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन जहां आ गए हैं वहां से हम वापस नहीं जा सकते, आगे ही बढ़ेंगे। और आपने सुना प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये पहला सोपान, और इसमें हमारे साथ रही अपनी

सुरीली आवाज के साथ सुपर सिंगर अर्चुरानू 16 यानी अर्चना अग्रवाल मुंबई से। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये प्रसारण आपने सुना जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस मंच पर हमारे एक मेल सिंगर और होते हैं जिनके नाम से आप वाकिफ होंगे और जिनके गीतों से आपको होने लगा है आजकल थोड़ा थोड़ा अनुराग। तो हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं अनुराग का इस मंच पर। अनुराग का पहला गीत फिल्म घर से

की खामोशियां भी आपकी आवाज हैं, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं। आपने सुना अनुराग को प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के इस पहले गीत में, और आइए सुनते हैं अगला गीत अनुराग की आवाज में।

इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर न सके। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और हमारे संग है जयपुर रेडियो के मेल सिंगर अर्चू रानू के साथ अनुराग मुंबई से। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच, आवाज आपकी है और हम आपके साथ हैं। आइए सुनते हैं अनुराग अगले गीत में क्या कहते हैं।

0: फिर वही रात है और फिर वही बात है, और बात ये कि आपने सुना ये खूबसूरत गीत जिसे आवाज दे रहे थे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग। आपकी आवाज, आपकी पहचान का ये मंच, और हम कहेंगे फिर वही सिंगर लेके आए हैं हम, यानी अर्चुरानो 16 को अगले दो गीतों में। तो आइए सुनते हैं पहला गीत। आपकी आवाज, आपकी पहचान, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। संजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं आइए सुन लेते हैं।
1: छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई।
0: अर्चुरानो के साथ

आवाज ने गीत को पुकारा और मुलाकात हो गई। मुलाकात का ये मंच, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। प्रोग्राम के तहत जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं, आपकी आवाज आपकी पहचान। अगले गीत में प्रीतपाल सिंधु आ गए हैं अचुरानू के साथ, आपकी आवाज आपकी

बहुत ही सुरीली आवाज में सुरीले सिंगर्स के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं को तू है गीत मेरा। प्रीतपाल सिंधु साथ दे रहे हैं अर्जुन।

अर्चुरानु 16 और प्रीतपाल सिंधु की आवाजें आपने सुनी, और अब एक ही तोर साथ दे रहे हैं सिंग फॉर पीस। अर्चुरानु के साथ आपकी आवाज आपकी पहचान। मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा।

वादा तो टूट जाता है लेकिन जयपुर रेडियो पर किया हुआ इरादा टूटता नहीं, क्योंकि ये है आपकी आवाज आपकी पहचान का मंच। आपने सुना अर्चुरानो सिक्सिन को सिंग फॉर पीस साथ दे रहे थे। आपकी आवाज आपकी पहचान, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये सुरीला सफर आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे आपके गीतों के साथ इसी तरह से जैसे रोज मिलते हैं। अनुमति दें, नमस्कार।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम माँ का आंचल। सभी सुनने वालों को मदर्स डे की शुभकामनाएं। माँ के चरणों में वंदन, नमन और प्रणाम। माँ मातृभूमि है, माँ हमें पालने वाली है, हमें दुलारने वाली है, हमें अपनी गोद में सुला के लोरी सुनाने वाली है। वही माँ जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया और एक समझ दी कि दुनिया क्या है और तुम कहाँ हो। उसी माँ का वंदन, नमन और प्रणाम। सबसे पहले माँ के आंचल प्रोग्राम में जो रचना लेके आई

0: बंधन भी तुम, मुक्ति भी तुम, माया भी तुम, मोक्ष भी तुम।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम माँ का आंचल। सभी सुनने वालों को मदर्स डे की शुभकामनाएं। माँ के चरणों में वंदन, नमन और प्रणाम। माँ मातृभूमि है, माँ हमें पालने वाली है, हमें दुलारने वाली है, हमें अपनी गोद में सुला के लोरी सुनाने वाली है। वही माँ जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया और एक समझ दी कि दुनिया क्या है और तुम कहाँ हो। उसी माँ का वंदन, नमन और प्रणाम। सबसे पहले माँ के आंचल प्रोग्राम में जो रचना लेके आई हैं, आइए उसको सुनते हैं और समझते हैं।
0: नमस्कार, मैं रचना अमित पाराशर नवदापुरम नवदा जी की नगरी से आप सभी के सामने मातृ दिवस के उपलक्ष्य में ये एक छोटी सी कविता सभी को समर्पित करती हूँ, सभी माओं को समर्पित करती हूँ, सभी बहनों को समर्पित करती हूँ। कविता का शीर्षक है हे माँ। हे माँ, माया भी तुम, मोक्ष भी तुम, बंधन भी तुम, मुक्ति भी तुम, माया भी तुम, मोक्ष भी तुम, बंधन भी तुम, मुक्ति भी तुम, प्रतिपल गुजरते समय के साथ गुजरती भी तुम, ठहरती भी तुम, कहे अनकहे शब्दों के साथ कानों में घुलती भी हो, महकती भी तुम, खंड खंड हुए इस जीवन की पतझड़ भी तुम, बसंत भी तुम, इस विश्वास में है दुनिया कि सिर्फ मेरी हो तुम, मैं इस यकीन में थोड़ी सी खुद की भी तुम, मन मंदिर के घंटा ध्वनि की ईश्वर भी तुम, पुजारण भी तुम, खुद से खुद तक पहुंचने को मजबूर भी तुम, जिम्मेदार भी तुम, एक आंख से हंसती हो, एक आंख से रोती, दुनिया के इस रंगमंच की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री भी तुम, अदाकारा भी तुम। नमस्कार।
1: बहुत खूब।
2: जिन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया, विशेष रूप से मैं डॉक्टर।
1: इस रचना के साथ रचना पाराशर को हमने सुना और दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। और वही माँ जो है वो विष्णु की माया है, इसलिए रचना जी ने बहुत ही सही फरमाया है, उसे सृष्टि के कण कण में व्याप्त देखा जा सकता है और वही माँ है। जब हम एक शब्द बोलते हैं माँ, तो हमारा पूरा मुंह जो है वो भर जाता है, जैसे हमने बहुत कुछ खा रखा है, और वो है माँ का आशीर्वाद। रचना पाराशर के बाद आइए सुनते हैं एक और रचना, जिसे सुना रही हैं सीमा जी कोलकाता से।
2: नमस्कार, मैं सीमा गुप्ता कोलकाता से हूँ। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जयपुर रेडियो और पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया। विशेष रूप से मैं डॉक्टर निशा अग्रवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे आप सबके सामने अपनी कविता सुनाने का अवसर दिया। मैं मातृ दिवस पर एक कविता, स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ। माँ, प्रेम का पहला नाम माँ। माँ केवल एक शब्द नहीं, माँ केवल एक शब्द नहीं, ईश्वर की सबसे, ईश्वर का सबसे

0: सुंदर वरदान है। माँ केवल एक शब्द नहीं, ईश्वर का सबसे सुंदर वरदान है। उसकी गोद में सिमटा बचपन जीवन का सबसे सुरक्षित स्थान है। माँ केवल एक शब्द नहीं। जब जब दुनिया ने ठुकराया, जब जब दुनिया ने ठुकराया, माँ ने बाहों में भर लिया मेरे हर आंसू को, चुपके से अपने आंचल में धर लिया। खुद भूखी रहकर भी जिसने, खुद भूखी रहकर भी जिसने मेरे हिस्से का सुख बोया, मेरी हर छोटी मुस्कान पर, मेरी हर छोटी मुस्कान पर अपने जीवन का दर्द खोया। मेरे गिरने से पहले ही, मेरे गिरने से पहले ही जिसका दिल घबराने लगता है, मेरी दुख की हल्की आहट से जिसका मन भर आने लगता है। माँ, माँ तो की ममता गंगा जैसी, माँ की ममता गंगा जैसी निर्मल पावन असीम होती है। उसके चरणों की धूल भी, उसके चरणों की धूल भी सारे तीर्थ के समान होती है। यदि इस जग में स्वर्ग कहीं है, यदि इस जग में स्वर्ग कहीं है तो माँ के चरणों के पास है। उसके प्रेम के आगे फीका हर सुख हर वैभव हर प्रकाश है, हर सुख हर वैभव हर प्रकाश है। माँ दिवस पर बस इतना कहूँ, मातृ दिवस पर बस इतना कहूँ, मेरा तेरा ऋण मैं चुका नहीं सकती। तूने जो जीवन दिया है माँ, उसकी कीमत बता नहीं सकती, उसकी कीमत बता नहीं सकती। तू है तो हर दिन उत्सव है माँ, तू है तो हर दिन उत्सव है। तुझसे ही मेरा संसार है, तेरी हर धड़कन कहती है, मेरी हर धड़कन कहती है माँ तू ही मेरा पहला प्यार है, माँ तू ही मेरा पहला प्यार है। धन्यवाद।
1: कितनी सुंदर बात, माँ तुम ही मेरा पहला प्यार है। और सच में पहला प्यार माँ का ही होता है और पहला गुरु भी माँ ही होती है। सीमा गुप्ता कोलकाता वेस्ट बंगाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे हमने ये मातृ दिवस पर बहुत ही खूबसूरत रचना सुनी। और अब इस प्रोग्राम का संयोजन करने वाली जयपुर रेडियो की आरजे डॉक्टर निशा अग्रवाल, जो सब प्रबंध करती हैं, सबको एक साथ जोड़ती हैं, इस मंच पर लाती हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि इस अवसर पर अपनी रचना हमें जरूर सुनाएं। लेकिन इससे पहले भोपाल से उन्होंने जोड़ दिया है निशा जी ने अनिशा संदीप नेमा को। अनिशा जी भी कवित्री हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। अब बारी आ गई है, हम आग्रह करें कि इस मंच पर अनिशा जी आज मातृ दिवस पर कोई अपनी छोटी सी रचना हमें सुनाएं।
2: रूप से मानी, नमस्कार, मैं अनिशा संदीप नेमा भोपाल से, जी हाँ, झीलों की नगरी भोपाल से गुलाबी शहर जयपुर तक के काव्य पाठ के सफर के लिए मैं डॉक्टर निशा अग्रवाल जी एवं जयपुर रेडियो का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने समय समय पर मुझे काव्य पाठ के लिए रेडियो पर आमंत्रित किया है और ये मेरे लिए बहुत ही गौरव एवं बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ। मातृ दिवस पर काव्य पाठ के लिए मैंने जो रचना चुनी है वह एक बेटी की अपने माँ के प्रति प्रेम की एक छोटे से क्षण है जिन्हें वो स्मृति में रखती है। लीजिए, प्रस्तुत है मेरा काव्य पाठ माँ से बातें चादर में। जीवन की राहों में जब माँ ऊब बहुत मैं जाती हूँ, चादर को आंचल समझ माँ आंख मूंद सो जाती हूँ। जीवन की राहों में जब माँ ऊब बहुत मैं जाती हूँ, चादर को आंचल समझ माँ आंख मूंद सो जाती हूँ। तकिया तेरी गोद लगे माँ, तकिया तेरी गोद लगे माँ, थपकी हवा का झोंक लगे। तेरी ममता की यादों संग बचपन मेरा फिर लौट चले। मेरी बकबक सुन सुन कर माँ जब तुम झल्ला जाती थी, मेरी बकबक सुन सुन कर माँ जब तुम झल्ला जाती थी, मैं जब भी रूठी थी तुमसे तुम रबड़ी मुझे खिलाती थी। मैं जब भी रूठी थी तुमसे तुम रबड़ी मुझे खिलाती थी। जब कोई संगी ना थे माँ मैं तन्हा बैठी रोती थी। तब तुम सखा बनी थी मेरी और रोटी पैया खेली थी। तब तुम सखा बनी थी मेरी, रोटी पैया खेली थी। मेरी हर बातों को तुमने सहज रूप से मान लिया। जीवन के हर पल से लड़ने सब्र प्रेम का ज्ञान दिया। मुस्कान भरी तेरी सूरत माँ मन से आलिंगन देती है। मुस्कान भरी तेरी सूरत माँ मन से आलिंगन देती है। सचमुच माँ उस पल में ही मेरे दर्द सभी हर लेती है। सचमुच माँ उस पल में ही मेरे दर्द सभी हर लेती है। निराशा नहीं विश्वास भरा है मन की मेरी राहों में। निराशा नहीं विश्वास भरा है मन की मेरी राहों में। संस्कार दिए उत्साह दिया तुमने बातों ही बातों में। संस्कार दिए उत्साह दिया तुमने ही बातों बातों में। हो गई सहर माँ जाग उठी मैं नवजोश शक्ति भर के मन में। बहुत सुकून मिला है मेरे मन को माँ से करके बातें चादर में। बहुत सुकून मिला है मन को माँ से करके बातें चादर में। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को नमस्कार।
1: बहुत धन्यवाद अनीशा संदीप नेमा जी को। इतनी सुंदर रचना माँ को समर्पित की आपने उसके लिए। और बहुत धन्यवाद डॉक्टर निशा अग्रवाल को जिन्होंने इस मंच को सजाया और आपको बुलाया। और अब आ रही हैं यूएसए कैलिफोर्निया से मंजू शर्मा। जी हाँ, मंजू शर्मा की रचनाएं प्रोग्राम माँ का आंचल में आप तक प्रस्तुत है।
3: जीने की अब चाह।

0: मंजू शर्मा को सुन रहे
1: मौत
0: हैं आप।
1: से पनाह नहीं मांगती हूँ, कांटों की सतह पे चलना चाहती हूँ, कांटों की

चीर दे निर्झर हूँ ऐसी, सतत सलीला सुर सजी सरगम के जैसी, डूब कर अंत

0: कांति मुख की मंजू रवि प्रभा बनी, मैं स्वयं सौंदर्य से भरपूर हूँ जब, मैं स्वयं सौंदर्य से भरपूर हूँ जब, चांद की मैं चाह नहीं मांगती हूँ।
1: वाह, बहुत खूब।
0: चांद

0: फूलों से मेरा नहीं मांगती हूँ।
1: वाह, जीने की चाह इतनी बढ़ गई है कि मुझसे बना नहीं मांगती हूँ। और माँ को बनाने में सृष्टि के कण कण को मिला दिया जाए, हर एक चीज को, हर एक वस्तु को एकदम मिला के घोट के और फिर माँ की मूर्ति बनाई जाती है। माँ वही स्वरूप है, वही रूप है, और मंजू जी ने उसी का वर्णन किया है अपने सुरीले शब्दों में। भावबोध के साथ बहुत बधाई। मंजू शर्मा कैलिफोर्निया से हमारे साथ रहीं। निशा जी बहुत ही खूबसूरत माँ पर कविताएं लेके आई हैं, हम क्या कहें, बहुत कमाल है, बहुत बेमिसाल है। और अब मुंबई से जुड़ गई हैं सुखमिला अग्रवाल अपनी माँ पर रची रचना के साथ। आइए सुनते हैं सुखमिला अग्रवाल जी को। वेलकम, स्वागत।
2: जयपुर रेडियो का हार्दिक आभार करती हूँ। मैं जयपुर की हूँ, अभी मुंबई रहती हूँ, और मातृत्व दिवस पर मुझे निमंत्रित करने के लिए मैं डॉक्टर निशा अग्रवाल जी का भी हार्दिक आभार करती हूँ। एक स्वरचित रचना मेरी मैं प्रस्तुत करती हूँ। इसका शीर्षक है अम्मा की यादें।

0: अम्मा की मीठी यादें और आपको ये मीठी यादें सुन के जरूर सुख मिला होगा, क्योंकि हमारी कवित्री का नाम ही सुखमिला अग्रवाल है और आपने मुंबई से हमारे लिए ये कविता गाई है, आप तक पहुंचाई है। और इसमें निशा जी ने अपनी चतुराई दिखाई है, तो अब समय आ गया है कि आपने सबकी रचनाएं सुना दी। रचना पराशर जो नर्मदापुरम से थी, और उसके बाद सुखमिला जी की रचनाएं भी आपने सुनाई। सीमा गुप्ता कोलकाता से अपनी रचनाओं को लेके यहाँ उपस्थित हुई, तो अब अनिशा नेमा, जी हाँ अनिशा संदीप नेमा ने भी अपनी शानदार रचना यहाँ प्रस्तुत की इस मंच पर। और अब आज के इस खास प्रोग्राम में इसका संयोजन करने वाली डॉक्टर निशा अग्रवाल को हम आमंत्रित करते हैं कि माँ के आंचल जिसके तले हम पले हैं बड़े हैं, उसकी छांव में हम झुलसने से बचे हैं, उस माँ पर निशा जी के क्या विचार हैं, आइए सुनते हैं समझते हैं और आप तक पहुंचाते हैं।
1: माँ, ओ माँ, माँ सुन रही हो ना माँ, तुम केवल जन्म देने वाली ही नहीं, जीवों को दिशा देने वाली भी बनो माँ।

0: बच्चों के सपनों पर अपनी अधूरी इच्छाओं का बोझ मत थोपो माँ, मत थोपो। उनके नन्हे मन को अपेक्षाओं की जंजीरों से मत बांधो माँ, मत बांधो। आप जानती नहीं, हर बच्चा एक नई किताब है माँ, जिसके शब्द अलग अलग होते हैं। हर बच्चे की उड़ान का अपना अलग आकाश होता है माँ। कोई रंगों में दुनिया खोजता है माँ, कोई सुरों में अपना जीवन जीता है माँ, कोई किताबों में खो जाता है तो कोई खेल में अपना कल लिखता है माँ। तुम समझो माँ, तुम समझो, तुम बस पहचानो उसके भीतर छिपी रोशनी को। उसे इतना मत डांटो माँ, मत डांटो कि उसका आत्मविश्वास ही टूट जाए। उसे इतना मत रोको माँ, मत रोको कि उसके सपने ही छूट जाए माँ। माँ तुम समझो, तुम समझो माँ, बच्चे को डर नहीं केवल विश्वास चाहिए माँ। हर कदम पर ताने नहीं एक दोस्त का साथ चाहिए माँ, एक दोस्त का साथ चाहिए। जब जब वह हार जाए तो तुम उसकी हिम्मत बन जाना माँ, तुम उनकी हिम्मत बन जाना। जब वह रो पड़े तो उसकी मुस्कान बन जाना माँ। उसे अपनी इच्छा से विषय चुनने दो, चुनने दो विषय अपनी इच्छा से, अपनी राह बनाने दो। क्योंकि जब सपने अपने होते हैं तभी उन्हें पूरा करने का साहस भी जन्म लेता है माँ, साहस भी जन्म लेता है। हर समय तुलना करके उसका मन छोटा मत करो माँ, मत करो। हर बच्चे की चमक अलग होती है माँ, उसे किसी और जैसा बनने पर मजबूर मत करो माँ, मत करो। तुम प्रेरणा बनो, दबाव नहीं। तुम सहारा बनो, बोझ नहीं। क्योंकि एक समझदार माँ सिर्फ बच्चों को बड़ा नहीं करती बल्कि उनका व्यक्तित्व भी गढ़ती है माँ, उनका व्यक्तित्व भी गढ़ती है, उन्हें इतना मजबूत भी बनाती है कि वे दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सके माँ, अलग पहचान बना सके। तुम मेरी प्यारी माँ हो माँ, तुम मेरी अच्छी माँ हो माँ, इस दुनिया की सबसे प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ,
1: मेरी माँ, और दुनिया की सबसे प्यारी माँ। और ये खूबसूरत माँ के नाम संदेश और माँ के लिए ही ये रचना, और माँ ने ही रची है, निशा अग्रवाल ने खुद रची है और आप तक पहुंचाई है। आज की जो नई युग की माएं हैं उनके लिए एक संदेश भी छुपा है इसमें। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। और इस प्रोग्राम का संयोजन किया निशा अग्रवाल ने, और ये रचनाएं इस मंच पर लेके आई, और रचनाकार रहीं रचना अमित पाराशर नर्मदापुरम एमपी से, सीमा गुप्ता कोलकाता वेस्ट बंगाल से, मंजू शर्मा कैलिफोर्निया यूएसए से, अनिशा संदीप नेमा भोपाल से, और सुखमिला अग्रवाल मुंबई महाराष्ट्र से। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। और रचना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो क्यों ना निशा जी हम इनसे बातचीत कर लें।
2: हेलो, हेलो
3: जी सर, सर आप सुन रहे हैं?
2: जी बिल्कुल। तो
1: मैं तो ओपनिंग कर देता हूँ, उसके बाद तो बात आप ही करेंगे। स्वागत है आप दोनों का इस मंच पर।
3: बहुत बहुत आभार कृष्णा जी,
2: बहुत बहुत आभार,
3: बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी जयपुर रेडियो हेड हमारे आदरणीय व्यास जी ने बताया कि अभिव्यक्ति का आचरण एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि महिलाओं से, महिलाओं की अभिव्यक्ति से जुड़ा है, तो इसी कार्यक्रम की कड़ी में आज आपके साथ रचना पारासती नर्मदापुरम होशंगाबाद से हमारे साथ है। श्रोताओं इनको बहुत धन्यवाद। आप सभी रचना जी से पहले से परिचित हैं, एक बार फिर से इनकी आवाज और इनके शब्दों से आज समाज की संवेदनाओं को, इनके संस्कारों को एक नई पहचान देने के लिए आज का एक कार्यक्रम एक बार फिर से जयपुर रेडियो के द्वारा प्रसारित होने जा रहा है, जहां इनकी प्रतिभा, इनके विचारों और साहित्यिक अभिव्यक्तियों को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम जयपुर रेडियो बना है। और आज फिर से आपकी आवाज, आपकी कलम, आपकी प्रतिभा, आपके विचार अभिव्यक्ति का आचरण कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो पर प्रसारित करने जा रहे हैं। रचना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी क्योंकि आप एक अपने आप में एक इतनी बड़ी शख्सियत बन चुकी है, न जाने कितने पदों से सुशोभित। मैं रोज आपको देखती हूँ, सुनती हूँ, एक बहुत बड़ी कवयित्री के रूप में आपकी एक नई पहचान है। अखिल भारतीय नर्मदीय समाज की महासभा में साहित्यिक प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं, और क्या कहूं, भोपाल में महिलाओं के द्वारा आयोजित एक समाज सेवी संस्था समर्पण में विशेष अतिथि के रूप में भी आपने सम्मान पाया है। तो रचना जी आप बताइए कि इस कार्यक्रम में जो भोपाल में ऑर्गेनाइज हुआ था, इस कार्यक्रम में आपने कौन सी कविता सुनाई जिसके माध्यम से आपको बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ, क्योंकि आपके परिचय से थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देते हुए आप अपनी कविताएं सुनाएं।
4: जी मैं सबसे पहले तो मैं रचना अमित पाराशर नर्मदा नगरी से, होशंगाबाद नर्मदापुरम से, डॉक्टर निशा दीदी का और आदरणीय व्यास जी का बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, और कि आपने मुझे दोबारा इस मंच पर बुलाया, मुझे मौका दिया एक बार फिर से आपसे जुड़ने का, अपनी कविताएं पढ़ने का, अपने मन की बात करने का। तो सबसे पहले तो आप मेरा आभार स्वीकार करें। अभिव्यक्ति का आंचल के सभी श्रोताओं को का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ कि वो मुझे सुन रहे हैं, सुनेंगे और सराहेंगे। निशा जी, अभी एक प्रोग्राम हुआ था भोपाल में एक समर्पण ग्रुप की तरफ से, ये एक समाज सेवी ग्रुप है, तो इन्होंने मुझे बुलाया और ये नारी शक्ति के ऊपर एक प्रोग्राम उन्होंने किया था, तो उन्होंने मुझे वहां बुलाया और मुझे एक कविता पाठ करने का मौका दिया, मुझे सम्मान दिया, तो वो कविता भी मैं आपको सुनाऊंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर एक हाउसवाइफ हूँ, पर मैं साथ साथ एक ऑनलाइन बुटीक भी चलाती हूँ। खाली समय में मैं लिखना पढ़ना पसंद करती हूँ, मैं थोड़ा सा घूमने की भी शौकीन हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड एक आर्किटेक्ट है, और मुझे यहाँ नर्मदापुरम में, क्योंकि यहाँ नर्मदा जी हैं, तो मुझे मेरे शहर से बहुत प्यार है।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। तो सर क्या सुनना चाहेंगे?
1: बिल्कुल वही कविता जो इससे आपको नाम मिला, ख्याति मिली, और हमारे श्रोता भी वही सुनना चाहेंगे।
4: जी बिल्कुल, ये कविता स्त्रियों के ऊपर लिखी गई है, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि स्त्रियों पर लिखना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि स्त्रियां एक्चुअल में इतनी सरल, इतनी सहज होती है ना, कि उन पर लिखना मुझे बड़ा कठिन लगता है।
1: जैसे आप
4: माँ है, बहन है, जैसे मैं हूँ। अच्छा, इनकी एक विशेषता बताती हूँ आपको कि ये सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक पूरा काम करती है। थक जाती है,
1: हम देखते
4: हैं। वो बहुत, हाँ, पर वो करती रहती है। लेकिन पता क्या होता है कि इसी बीच में जब उनसे कोई ये कह देता है कि अरे आपने इतना काम किया, आपने कर लिया, आपसे हो गया, तूने, बताओ कैसा लगता है निशा जी? जैसे बुखार पे तपते हुए बदन पर कोई रख दे ठंडे पानी की पट्टियां, या कुआं जी, या कुआं की धूप में कोई ठंडी हवा का झोंका, और जैसे किसी जख्म पर मिल जाए कोई मलहम और धुल जाए सारे दिन का मलाल। तो ऐसी होती हैं स्त्रियां, ऐसी होती हैं स्त्रियां, ऐसा अनुभव करती हैं स्त्रियां।
1: बहुत खूब।
4: तो जी, मेरी ये कविता सभी माओं, सभी बेटियों, बहनों, सभी नारियों को समर्पित, ये मैंने भोपाल में जो पढ़ी थी, मैं आपको सुनाती हूँ। सबका आशीर्वाद चाहूंगी। मैं शुरू करती हूँ।
1: बिल्कुल, वेलकम
4: जी। इस कहानी का शीर्षक है केवल तुम।
1: केवल तुम।
4: जागृत जी, जागृत प्रातः का जागृत मन, जागृत प्रातः का जागृत मन, तुम और केवल तुम। स्थिर तन चंचल चितवन, नव नूतल नवीनतम तुम, नव जीवन नव संचरण तुम और केवल तुम। मौन प्रार्थनाएं, मौन इच्छाएं, मौन विचार, मौन वेदनाएं, परम अनुभूति की अभिव्यक्ति तुम और केवल तुम। प्राण चेतना की प्राण वायु, सहज सरल सुंदरतम तुम, स्वप्न आकृति का स्मृति चिन्ह तुम और केवल तुम। आधी रात में पूर्णमासी का चांद, पाठ्य पुस्तक का अक्षर ज्ञान, मोह माया राग आलाप, और मोह माया से मुक्ति भी तुम और केवल तुम। न्यून तुच्छ कमतर किंचित क्षणिक और तनिक है जीवन, न्यून तुच्छ कमतर किंचित क्षणिक और तनिक है जीवन, पूर्ण संपूर्ण परिपूर्ण तुम और केवल तुम।
1: वाह वाह, बहुत खूब,
4: बहुत धन्यवाद।
1: तुम पूरी सृष्टि हो और तुम ही रचना
4: जी।
1: हो
4: जी,
1: और इन्हीं को कहते हैं रचना। पाराशर हमारे साथ हैं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल
5: जी। तो रचना जी, आपने ये कविता आपने हमारे श्रोताओं को सुनाई, जिसमें आपने एक मौका के लिए पूरा समर्पण भाव दिखाया कि केवल तुम ही हो सृष्टि की रचनाकार, रचयिता, और सारी कामना भी जो है वो माँ को ही जाती है एक बेटे की। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आज सुबह घूम रहा था एकदम, कि क्या कल की माँ और आज की माँ में कुछ अंतर पाया है आपने?
4: जी,
5: जो कल की माँ कैसी थी और आज की माँ कैसी है? आज की वक्त के बदलते समय, वक्त बदल रहा है, आधुनिकता के दौर में एक बेटा एक माँ का जो संबंध है वो क्या पहले जैसा है या कुछ बदलाव है?
1: बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत शाश्वत हो गया है, और ये मोबाइल आने के बाद तो माँ भी अपना मातृत्व जो है जरा सा भूल गई हैं। तो इस को जोड़ते हुए कुछ कहिए
4: जी। मेरे हिसाब से तो प्रेम वही है, वात्सल्य वही है, बेटा भी वही है और माँ ही वही है। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में सब कुछ थोड़ा तो बदला ही है, क्योंकि हमारी माँ को हमने देखा कि वो अपने कार्य के प्रति, अपने घर के प्रति ही पूरी पूरी समर्पित रही है। लेकिन आज जो हम अपने आप को देखते हैं, हम हाउसवाइफ होते हुए भी हाउसवाइफ नहीं है, क्योंकि हम बाहर भी निकलते हैं, अपने बच्चों के लिए भी निकलते हैं, उन्हें 10 बार कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, स्विमिंग जाना है, डांस क्लास जाना है, कराटे क्लास जाना है, तो हम उनको टाइम टू टाइम लेके जाना, लेके आना, उनको शॉपिंग कराना, उनको पढ़ाना, मतलब उनके साथ हम भी उनकी तरह आधुनिक हो गए हैं। तो माए वही है, जीवन हमारा आधुनिक है। तो मेरे ख्याल से हाँ, हम हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, इसलिए हम जैसे हमारी माँ हमारी दोस्त थी, ऐसे हम आज हमारे बच्चों के दोस्त होना चाहते हैं, इसलिए हम ये सब करते हैं अपने बच्चों के लिए।
5: यानी आपका कहने का मतलब यही है कि कल की जो माँ थी वो एक त्याग की मिसाल थी, कारों की छाव थी, लाड़ थी, दुलार थी, बच्चों को गिरने से बचाती थी, बच्चों को गिरने से बचाती थी। लेकिन आज की माँ गिरने से बचाते बचाते समय और क्या करती है,
4: संभाल के साथ दौड़ती है।
5: जी जी बिल्कुल, आज की माँ गिरने को गिरते हुए बच्चे को संभालती है, आत्मनिर्भर बनाती है। और पहले की माँ चुपचाप कहती थी, अधिकारों और भावनाओं के साथ उनकी कद्र करती है। बस इतना सा अंतर आज की माँ और कल की माँ में आया है। माँ का जो स्वरूप है वो वैसा था जैसा था वैसा ही। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर ढंग से आपने इसको
1: रूपायित किया है,
5: हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो जी सर, आप कुछ बीच में इनसे पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, मेरा प्रश्न यही था कि जो आधुनिक जीवन शैली है और कोरोना के बाद में हमारे जीवन स्तर में बहुत सारे बदलाव आए हैं, और उनको अंकित करते हुए हमने जो है वो कहाँ कहाँ उन बदलावों को चुनौती समझा है, और कहाँ कहाँ हम उसमें विलग हो गए हैं, अलग हो गए हैं, या हम उनमें घुल मिल गए हैं। बात हम ये चाहना जानना चाहेंगे रचना जी से कि बदलाव आया तो है और परिवर्तन शाश्वत है, प्रकृति का नियम है, और धीरे धीरे बदलाव आता है। तो माँ में, क्योंकि कल हम मातृत्व दिवस मना रहे हैं, मदर्स डे मना रहे हैं, तो माँ में वैसे तो माँ को हमने भगवान का रूप दे रखा है, भगवान ने अपने रूप में माँ को धरती पर पैदा किया है, अवतरित किया है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी समय की चुनौतियाँ और परिवर्तन के जो साक्षी हैं, उन्होंने उसके मन मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डाला है। तो क्या है
4: आदरणीय सर, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि कोरोना काल से हमने जीना सीखा है। उस काल में हमने ये सीखा कि जीवन कितना क्षणिक है, कितना क्षण भंगुर है। आज हम हैं, कल हम नहीं हैं। लेकिन हम जब इस कोरोना काल से वापस बाहर निकले तो हमने जीना सीखा। हमारे अंदर एक डेयरिंग आ गई जीने के लिए कि देखो जो होना है वो तो होना है, लेकिन जो अभी हमारे पास समय है इसको हमें किस तरह से उसका सही उपयोग करना है, हमें जीना है, हमें जीना सीखना है। तो मुझे लगता है हमने जीना सीखा है कोरोना से।
1: और माँ के लिए क्या कहेंगे?
4: माँ के लिए तो अभी मैंने इतनी सारी बातें कही हैं, और माँ के लिए ही कहूंगी मैं कि वो तो ठंडी हवा का झोंका है माँ, उनका आंचल सबके सर पर बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। माँ के बिना तो जीवन ही संभव नहीं।
1: बच्चों के साथ माँ का जो सामंजस्य है वो आज की परिस्थिति में कैसे देखती हैं आप? क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं और पीछे माँ एक आदर्श के रूप में रही हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने को सुनने को मिलता है कि माँ ने बच्चे के साथ क्रूरता की। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है आगे चल के, क्या सोचती हैं?
4: मुझे तो लगता है जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण ही रहा होगा कि उस तरह की घटनाएं घटी, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी माँ कुमाता नहीं होती, कहते हैं पुत्र कुपुर हो और माता कभी कुमाता नहीं होती।
1: बिल्कुल, तो मैं इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक बात के
4: बिल्कुल मनोवैज्ञानिक कारण ही समझती हूँ इसके पीछे।
1: जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
5: जी,
1: तो एक कविता और हो जाए, रचना जी की एक रचना हम और सुनना चाहेंगे इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है अभिव्यक्ति का आंचल, और इस आंचल में न जाने कितनी कविताएं, कितने शब्द, कितने लफ्ज, कितने अल्फाज तारे मोती की तरह से जड़े हैं, तो उसमें से कोई एक हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाएं तो अच्छा रहेगा।
4: जी बिल्कुल। मेरी दूसरी कविता, जैसे कि मैं आपको मैंने बताया कि नर्मदापुरम से हूँ, नर्मदा जी की नगरी से, तो दूसरी मेरी कविता नर्मदा जी को समर्पित मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी। ये कविता एक माँ नर्मदा जी के किनारे एक पेड़ के ऊपर है, एक वृक्ष के ऊपर, जिसका नाम है मौलश्री। ये इसको मौरछल्ली भी कहते हैं
1: जी।
4: तो नर्मदा जी के किनारे एक मौलश्री एक वृक्ष था जो एक सदी से भी पुराना था, और सभी लोग नर्मदा जी के घाट को और उस मौरछल्ली के वृक्ष को जोड़कर ही देखते थे। मौरछल्ली का पेड़ मतलब माँ का घाट, और माँ नर्मदा मतलब मौरछल्ली का पेड़। तो उसके नीचे, मतलब मैंने भी उस पेड़ को 200 साल देखा है, मेरे पुराने लोग बताते हैं कि ये एक सदी से भी पुराना पेड़ वहां खड़ा हुआ है। तो पिछले समय में क्या हुआ था कि वो पेड़ बहुत बूढ़ा हो गया था, और बूढ़ा होके वो गिर गया। तो इस तरह मैंने उस पेड़ के प्रति संवेदनाएं देखी लोगों में, इतना मार्मिक रहा उसका गिरना। तो मैंने उस वृक्ष के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है जो मैं आप सबको समर्पित करना चाहूंगी। और मेरी ये कविता को यहाँ नर्मदापुरम में भी काफी सम्मान मिला, क्योंकि ये कविता कहीं ना कहीं उनके हृदय को कहीं ना कहीं अंदर से बहुत छू गई। तो ये
1: बिल्कुल,
4: कविता
1: बिल्कुल, मुझे ये कविता भी बहुत, तो आपकी आइडेंटिटी बन गई, आपका परिचय बन गई।
4: बिल्कुल। तो मैं ये कविता आपको सुनाना चाहूंगी, आप सभी को स्वागत करती हूँ आपका। मेरी कविता का नाम है मौलश्री। शुरू करती हूँ। माँ नर्मदा के तट पर खड़ा, माँ नर्मदा के तट पर खड़ा एक सदी से भी पुराना वह मौरछल्ली का झाड़। माँ नर्मदा के तट पर खड़ा एक सदी से भी पुराना वह मौरछल्ली का झाड़, जिसे मिला माँ रेवा का दुलार, सूरज की पहली किरण का प्यार, और चांद की चांदनी का दुलार। पता नहीं उस पेड़ के नीचे किसी को निर्वाण प्राप्त हुआ कि नहीं, पता नहीं उस पेड़ के नीचे किसी को निर्वाण प्राप्त हुआ कि नहीं, पर हाँ जब भी बैठा है कोई वहां भारी मन लेकर, तो कम हुआ है उसका दुख, उसकी उदासियां, उसकी उपेक्षाएं, उसकी दुविधाएं। कितने ही प्रेमियों की पूरी हुई है मन्नतें, उसके नीचे रचे गए कितने ही सुनहरे गीत, संगीत और भविष्य, लिखी गई कितनी ही कविताएं, किताबें और काव्य। उसने देखे हैं बदलते मौसम, बदलते रंग और बदलते रिश्ते। वो पेड़ उस एक पक्षी के लिए भी रहा तटस्थ और प्रतीक्षा रथ, जिसने बनाए थे उसके डाल पर घर। वो पेड़ एक पक्षी के लिए भी रहा हमेशा तटस्थ और प्रतीक्षारत, जिसने उसकी डाल पर बनाए थे घर। और एक लंबी यात्रा और तपस्या के बाद जब वो हुआ धराशायी, और जब एक लंबी यात्रा और तपस्या के बाद हुआ वो धराशायी, तो सुना है मैंने, देखा है मैंने कि पूरा शहर उतर आया था उस पेड़ को आखिरी बार देखने। पूरा शहर उतर आया था उस पेड़ को आखिरी बार देखने। मैंने देखा है नम आंखों से उसे विदा करते, उसके सूखे अवशेषों को बटोरते, उसकी स्मृतियों को सहेजते, उसकी स्मृतियों को सहेजते।
1: वाह, बहुत ही खूबसूरत,
5: बहुत
1: बहुत ही सुंदर।
4: जी बहुत धन्यवाद।
1: धरती हमारी माँ और पेड़ पिता, उसका मानवीकरण हो गया है, और वो सबके लिए सोच रहा है इतना तटस्थ होके, और जितने भावपूर्ण तरीके से रचना जी ने ये रचना प्रस्तुत की है, वो तो सच में क्या कहें, कमाल है, बेमिसाल है, इसका वर्णन जो है अवर्णनीय है, ऐसा ही हम कह सकते हैं। और जब प्रकृति की, पेड़ की, वृक्ष की बात चली है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ तो नदियां भी बहती है, पानी है, तो
4: जी।
1: पानी पे, नदी पे, प्रकृति पे कुछ कहा जाए आपके श्रीमुख से।
4: जी, हमारे नर्मदापुरम में बहुत पानी है, बहुत हरियाली है, बहुत सुंदरता है और बहुत शांति है। मैं यही कहना चाहूंगी बहुत सुंदर है हमारा शहर। कभी आप आए, कभी देखें, तो आप उसको समझेंगे कि बहुत सुंदर है हमारा शहर। यहाँ नर्मदा जी के पानी का जो प्रताप है वो यहाँ के लोगों में भी देखने को मिलता है। यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर, बहुत शांत और बहुत प्यारे,
5: जैसे कि आप प्यारी हो।
1: हाँ, ऐसा क्यों होता है रचना जी, ऐसा क्यों होता है? आप तो स्वयं रचना है, इसलिए आपसे ही प्रश्न कर रहे हैं हम कि ऐसा क्यों होता है कि जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, आसपास के जीव, चाहे वो मानव समुदाय हो, चाहे पशु पक्षी हो, उनका व्यवहार भी वैसा ही होता है। इसका क्या मनोवैज्ञानिक कारण है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप?
4: जैसे कहते हैं ना आदरणीय, कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि जैसी परिस्थितियों में, जैसी स्थितियों में, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उस वातावरण का असर भी हमारे मन पर, हमारे दिल पे और हमारे दिमाग पर बिल्कुल उसी तरह होता है। इसीलिए यहाँ के लोग सब इतने शांत, इतने प्यारे, इतने हरे हरे भरे। इसीलिए
1: बहुत को बहुत ही शानदार बातचीत रही निशा जी रचना जी के साथ, और रचना जी ने हमें बताया था कि गीत उनको बहुत ही प्रिय है, अच्छा लगता है, क्योंकि माँ से मोह होता है, वैसे ही प्रकृति से मोह होता है, नदियों से मोह होता है और पेड़ पौधों से भी मोह होता है। प्रकृति और से प्यार करना, मोह होना, तो ये मोह मोह के धागे कहाँ तक फैले हैं। रचना जी के इस गीत में जो इनको बहुत ही प्रिय है, आइए सुनते हैं हम भी रचना जी के साथ।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

एक ऐसा सिंगर जो न केवल बॉलीवुड को पूरी तरह एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहा, बल्कि इस यूनिवर्स को एक ऐसी आवाज दे गया जिसको सुनकर हम ईश्वर, भगवान या अल्लाह की आवाज की कल्पना के नजदीक पहुंच जाते हैं। आज के इस एपिसोड में आवाज के इस सम्राट को अपना स्वर नमन दे रही थी अर्जुन रानू 16 और आपका साथ दे रहे थे अनिल शर्मा 1961। और अब आंखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत को इस मंच पर लेकर आए हैं अर्जुन रानू के संग सोनी शिवकुमार।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चू रानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चु रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चु रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर। हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चु रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मनमोहन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में, जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो जीवन की रीत है। ये जीवन है, जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। इस गीत में साथ दे रहे थे अर्चुरानू का फनी भूषण। और अब राजा रानी क्या कह रहे हैं अपनी सुरीली आवाजों में, किशोर फॉर यू आए हैं अर्चुरानू के संग इस शॉर्ट वर्जन में।

राजा रानी की प्यार की कहानी हमने सुनी अर्जुन रानू और किशोर फॉर यू की जुबानी इस गीत में, और इस सुरीले से शॉर्ट वर्जन के साथ ही जयपुर रेडियो के इस मंच से मैं आरजे भूमिका आपको एक बार फिर बतला देती हूँ इस मंच के नंबर। हमारे नंबर हैं 9352-784-724। इस नंबर पर आप अपना सिंगिंग का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज की ये सुरीली सौगात सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग यहीं तक। आरजे भूमिका को विदा दें। नमस्कार।

बहुत शुक्रिया आरजे भूमिका। और इसके बाद अब आ गए हैं हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग, और अनुराग लेके आए हैं अपनी सुरीली आवाज में अपने गाए हुए कुछ गीत। आइए शुरुआत करते हैं, सुनते हैं आपका ये पहला गीत।

प्यार मांगा है तुम्हें से ना इनकार करो। और ये आवाज रही हमारे सुरीले सिंगर अनुराग की। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास एपिसोड। हमारे संग है अर्चुरानो 16 और अनुराग सिंगर के रूप में। आइए सुनते हैं अगला गीत अनुराग की आवाज में।

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, और यदि गीतों से प्यार हो जाए, बेशुमार हो जाए, तो आप जयपुर रेडियो पर आ जाएं। यही कह रहे हैं अनुराग, हमारे आज के मेल सिंगर। आपकी आवाज, आपकी पहचान और बहुत सारे तकनीकी कारणों के वजह से हम अनुराग से यही अनुमति लेंगे और जारी रखेंगे प्रोग्राम। भूमिका आज के सिंगर अर्चुरानू के संग।
1: और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चुरानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुल रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चुल रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर। हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चुल रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मुनमुन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

0: सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
1: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा JMD का बाम वेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाए।
2: JMD, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
3: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, अरे हल्ले हल्ले क्यों? जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

सही पहचाना, वो कोई और नहीं हम सबके चहेते मोहम्मद रफी जी हैं। रफी जी का जन्म 1924 में अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था और उनको बचपन में सब फिंकू के नाम से पुकारा करते थे। उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि असमीस, कोंकणी, भोजपुरी, तेलुगु, मैथिली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली जैसी भाषाएं। और तो और, उन्होंने इंग्लिश, फारसी, अरेबिक, सिन्हला, डच, स्पैनिश जैसी भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने हर तरह के गीत भी गाए, जैसे कि भक्ति गीत, शास्त्रीय गीत, गजल, कव्वाली, देशभक्ति गीत, मस्ती भरे गीत और दर्द भरे गीत। तो फिर आज के गीतों के कारवां का आगाज करते हैं 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं से, जिसमें ऋषि कपूर जी थे। इस फिल्म को बेमिसाल संगीत से सजाया आरडी बर्मन जी की धुनों ने और सुरों को लफ्जों से सजाया मजरू सुल्तानपुरी जी ने। इस फिल्म के सारे गाने खूब धूम मचा रहे थे, पर उस साल का फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला मोहम्मद रफी जी को और साथ ही साथ उसी गाने के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। तो फिर आइए उसी गीत को सुनते हैं मेरी और विद्या प्रकाश जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1980 की फिल्म आप ऐसे तो न थे से है, जिसमें राज बब्बर और रंजीता कौर थीं। इस फिल्म का जादू भरा संगीत दिया उषा खन्ना जी ने और गीत लिखे निदा फाजली जी ने। क्यों ना इसी जादू भरे गीत को सुना जाए विद्या जी और बिंदु जी की मधुर आवाज में।

0: मैंने।
1: क्या खूब पेशकश की। आइए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म एक नारी दो रूप से, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और रश्मि धवन थी। इस फिल्म में मात्र 4 गाने थे और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया गणेश जी ने और बेमिसाल शब्दों से सजाया असद भोपाली जी ने। चलिए इसी फिल्म के एक बेमिसाल गीत को सुनते हैं MD त्यागी जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म उस्तादों के उस्ताद से है, जिसमें प्रदीप कुमार के साथ शशिकला थी। इस फिल्म के सारे गाने खूब हिट हुए। इस फिल्म का बेहद शानदार संगीत दिया रवि जी ने और गीतों को शब्दों से पिरोया असद भोपाली जी ने। आइए इसी शानदार गीत को सुनते हैं अनिल झुमका वाला जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक शानदार पेशकश। दोस्तों चलिए एक खेल खेलते हैं, पर उसके लिए आप सबको पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जी हाँ, आंखें बंद। ये ना सोचिएगा कि मैं देख नहीं रहा, आंखें बिल्कुल बंद। अब अगर मैं आप सबको इस मौसम में कश्मीर की बर्फीली वादियों में ले चलूं तो कैसा रहेगा? चारों तरफ बर्फीली वादियां, बर्फीले पहाड़ और ये मस्त सर्द हवा। क्या कहा आपने? कोई फिल्म का नाम याद आया? सही कहा, कश्मीर की कली। ये एक ऐसी फिल्म थी जो कश्मीर की बर्फीली वादियों में शूट की गई थी। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे SH बिहारी जी ने और उतना ही मस्ती भरा संगीत दिया ओपी नैयर जी ने। आइए इसी मस्ती भरे फिल्म के मस्ती भरे गीत को सुनते हैं जूही जी और सज्जाद जी की मधुर आवाज में।

कैसी लगी ये बर्फीले पहाड़ों की सैर? कश्मीर की कली एक ऐसी फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर के सभी गीतों को स्वर दिया मोहम्मद रफी जी ने और सारे के सारे गाने खूब सुपरहिट हुए। चलिए एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं गायत्री जी और डॉक्टर आदेश जी की मधुर आवाज में।

कहिए कैसी रही ये मस्ती भरी पेशकश। चलिए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म धर्मा से, जिसमें प्राण, नवीन निश्चल और रेखा थी। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया मास्टर सोनिक और ओम प्रकाश सोनिक जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे वर्मा मलिक जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं अंजलि दत्त के और संजीव जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1967 की सुपरहिट फिल्म तीसरी मंजिल से है, जिसमें शमी कपूर के साथ आशा पारिक थी। इस फिल्म के सभी गीतों में मोहम्मद रफी जी ने शमी कपूर जी को अपनी आवाज दी और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने और उन्हीं गीतों को संगीत से सजाया आरडी बर्मन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक खूबसूरत गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1961 की फिल्म जंगली से है, जिसमें शम्मी कपूर जी के साथ सायरा बानू थी। इस फिल्म ने कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते और हर एक गीत सुपरहिट हुआ। इस फिल्म के शानदार गीतों में हसरत जयपुरी जी की कलम का जादू देखते ही बनता है और उन्हीं गीतों को मस्ती भरे सुरों में सजाया शंकर जयकिशन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं डॉक्टर तरुणा जी और रामकृष्ण जी की मधुर आवाज में।

क्या शानदार गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1967 की फिल्म अदालत से है, जिसमें प्रदीप कुमार जी के साथ नरगिस थी। इस फिल्म के सारे गाने इतने मशहूर हुए कि आज तक गुनगुनाए जाते हैं, और इस फिल्म का संगीत दिया मदन मोहन जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे राजेंद्र कृष्णन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मद भरा गीत सुनते हैं श्रुति जी और संजय जी की मधुर आवाज में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूँ।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: उफ, ये सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
2: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा जेएमडी का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाएं।
3: जेएमडी, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं एक शाम, 100 साल एक आवाज। सुना है आज हवा भी गुनगुनाएगी, और रफी साहब की जन्म शताब्दी में हर धुन रफी साहब की याद दिलाएगी। तो चलिए रफ़ी साहब की यादों के इस गहरे समंदर में डूबते हैं और उनकी अमर आवाज़ को एक बार फिर से दिल से महसूस करने के लिए बुलाते हैं जयपुर रेडियो में पुणे से आज के कलाकार। एक आवाज़ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपके चहेते जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, और वो हैं सुदर्शन फाटक। वेलकम सुदर्शन जी, आपका जयपुर रेडियो में स्वागत है।
5: नमस्कार दोस्तों, आज 24 दिसंबर और आज के दिन आपके सामने रफी जी के गाने पेश करना, ये मेरे लिए किसी अवार्ड रिवॉर्ड से कम नहीं है। सबसे पहले थैंक यू जयपुर रेडियो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं बोलना चाहूँ आज के बारे में, आज के दिन के बारे में, रफी जी के बारे में, तो मैं इतना ही कहूंगा कि समंदर से गहरा और आसमान से ऊंचा अगर कुछ है तो वो रफी जी का सुर है। रफी जी को जब सुनते हैं हम दूर से, सिर्फ सुनते हैं, तब ऐसा लगता है कितनी मुलायम आवाज, कितने आसानी से गा रहे हैं, लेकिन वही जब हम कोशिश करने जाते हैं

100 साल पहले एक आवाज ने इस दुनिया में कदम रखा जो हर दिल के दर्द का मरहम बन चुका था, मोहम्मद रफी। रफी साहब का हर सुर एक दुआ बन के उठा और उनकी हर धुन मोहब्बत का पैगाम बन चुकी थी। तो चलिए सुनते हैं पहला नगमा, हर दिल अजीज, सुदर्शन की आवाज।

बेहद खूबसूरत अंदाज सुदर्शन जी का। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, हुजूर चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। फ्रेंड्स, जिस तरह आपकी महबूबा का नूर कोई चुरा नहीं सकता, उसी तरह रफ़ी जी के किरदार की खुशबू कभी फीकी नहीं हो सकती। तो आइए ले चलती हूँ उनकी लाइफ के कुछ अनमोल किस्सों की तरफ और सुदर्शन फाटक के साथ उनके गीतों की तरफ। रफ़ी जी के परिवार का म्यूज़िक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उनका दुनिया का सबसे महान सिंगर में शुमार होना सिर्फ उनके जुनून और हार्डवर्क का सबूत है। जिस तरह सैगल साहब के शो में लाइट गुल हो जाने की वजह से मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका मिला और म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर जी ने उन्हें बॉम्बे आने का न्योता दिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री बिकॉज ऑफ हिज हार्डवर्क। चलिए इतिहास के एक पन्ने में से निकला एक सुकून भरा अगला गीत सुनते हैं, दिल को छूने वाली सुदर्शन की आवाज़ में।

0: जाएगी।
1: जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तबीयत बहलती थी नन्हे रफी जी की, जब एक फकीर गाते हुए उनके गांव की गली से गुजरता था, जो रफी जी की इंस्पिरेशन थे। और रफ़ी साहब उस फकीर से इतने इंस्पायर्ड थे कि उस फकीर के आने से उनका हर दिन मानो रोशन हो जाता और बहार छा जाती थी। तो सुनते हैं ऐसा ही एक गीत सुदर्शन की नर्म आवाज़ में।

सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये सफर सुदर्शन और गुरप्रीत के संग? मुझे पूरा यकीन है कि दिलदार गायक के दिलदार श्रोताओं का दिल भी बड़ा होगा, जैसे रफी साहब का किरदार। क्या आपको पता है कि नए आने वाले कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को मौका दिया था रफी जी ने, और सिर्फ एक रुपए की साइनिंग अमाउंट लेकर गीत गाए? कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आजकल? तो जिनका किरदार एक राजा जैसा हो, उनके लिए ये गीत तो बनता ही है। फ्रॉम अनदर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग सुदर्शन, जो वर्चुअल सिंगिंग प्लेटफॉर्म स्टार मेकर की फैमिली BML यानी बॉलीवुड म्यूजिक वर्ल्ड के कैप्टन यानी राजा हैं। तो चलिए सुनते हैं।

अब तक है जमाने पे जिस आवाज का जादू, उसके मेरे ऊपर उपकार बड़े थे। कहना है रफी के लिए बड़ा मुश्किल, इंसान बड़े थे या कलाकार बड़े थे। ऐसा कहना था हमारे म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी का। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजेश खन्ना काका और संगीत जगत के मसीहा मोहम्मद रफी की ऐसी जुगलबंदी हुई कि आज भी हर आशिक अपनी महबूबा के लिए वो गीत गाकर उसकी आंखों में डूब जाना चाहता है। उस गीत का जादू आज भी बरकरार है। तो सुनते हैं सुदर्शन की जादुई आवाज में वो गीत।

सो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो गीत सुने, हर गीत ने हमारे दिल में रफी जी के रंग छोड़े हैं सुदर्शन की आवाज में। अब जो अगला गीत है वो एक लाइवली एंड प्लेफुल सॉन्ग है, नहीं शम्मी जी पर नहीं, बल्कि बॉलीवुड के एक सौम्य और संजीदा एक्टर नवीन निश्चल पर फिल्माया गीत। तो दोस्तों, आनंद लेते हैं मस्ती और जोश से भरे अगले गीत का।

सुदर्शन फाटक की आवाज में ये गीत एक नए रंग में दिखाई दिया। तो चलिए बढ़ते हैं मस्ती से सरोबार एक और गीत की तरफ।

भर गए ना आप जोश में? ये जोश और उमंग ऐसे ही बरकरार रखी हमारे जोशीले गायक सुदर्शन फाटक ने। और मोहम्मद रफी जी की बात करें तो चाहे जॉनी वॉकर का मजाक मस्ती भरा अंदाज हो, दिलीप कुमार की गहरी और दर्द भरी गजल, अमिताभ बच्चन का पावरफुल परसोना हो या शम्मी कपूर का एनर्जेटिक और फ्लर्टेशियस स्टाइल, रफी साहब की आवाज हर हीरो के लिए एकदम फिट लगती थी। जब उनका गाना सुनते तो ऐसा महसूस होता जैसे वो खुद ही गा रहे हों। और इसी तरह हमारे आज के कलाकार सुदर्शन फाटक भी हर गीत उसी अंदाज से बखूबी निभा रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं, तो सुनते हैं अगला गीत सुदर्शन की आवाज में।

जैसे रफ़ी जी के रोमांटिक नंबर्स उनके सिग्नेचर बन चुके थे, उसी रोमांटिक इमोशंस को सुना सुदर्शन की रोमांटिक आवाज में। सुनते हैं अगला क्लासिक सॉन्ग।

ऐसे तो रफी साहब के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब धर्मेंद्र जी के लिए जट्टियमला पगला दीवाना नाश नाश कर स्टूडियो में रिकॉर्ड किया रफी जी ने, तो धर्मेंद्र ने उनको गले लगा कर कहा, वाह क्या अंदाज में गाया है। तो रफी ने उनसे कहा कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब पर्दे पर लाना तुम्हारा काम है। तो सुनते हैं धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया यमला पगला दीवाना से कहीं हटकर अगला गीत।

यूं तो मेरी हर बात समझ जाते हो तुम, फिर भी क्यों मुझे इतना सताते हो तुम? तुम बिन कोई और नहीं है मेरा, क्या इसी बात का फायदा उठाते हो तुम? सुदर्शन की आवाज ने इस गीत को पूरी तरह महसूस करवाया। और आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, 100 साल एक आवाज, मोहम्मद रफी की आवाज। और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं अगला।

0: नाउमीद थे चारागार मेरी हालत को देखकर, पाया तबस्सुम तेरा दवा उनकी काम कर गई। रफी जी का बेहद खूबसूरत सॉन्ग आपने सुना सुदर्शन की आवाज में। किसी को उसके कद का गुमाना था, वो आसमान था, सर झुका कर बैठा था। रफी जी की सिंगिंग इतनी एफर्टलेस और सोलफुल थी कि लगता ही नहीं था कि कोई गाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। सैड सॉन्ग में वो दर्द भर देते जो सीधा दिल को छू जाता, और कॉमेडी सॉन्ग में ऐसी मस्ती कि चेहरे पर हंसी आ जाए। तो चलिए सुनते हैं उनका एक और रंग सुदर्शन की आवाज में।
1: मारे,

सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज के कलाकार हैं सुदर्शन फाटक पुणे से, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत। चेहरे पर इसी हंसी को बरकरार रखें, और आज की शाम अपने अंतिम पड़ाव पर है तो थोड़ा और करीब आ जाएं और सुनिए ये गीत।

दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। आज की शाम का आखिरी नगमा, ये गीत उन्हें हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर रखेगा। तो दोस्तों, इस गीत और अपने जज्बात के साथ रफ़ी साहब को एक सच्चे ट्रिब्यूट में महसूस कीजिए। सुदर्शन की आवाज़ और गुरप्रीत यानी मेरे साथ पहली बार, सुनते हैं उनका बहुत ही खूबसूरत गीत सुदर्शन की आवाज़ में।

0: नौशाद साहब के कुछ अल्फाज रफी साहब के लिए। महफिलों के दामनों में, साहिलों के आसपास, यह सदा गूंजेगी सदियों तक दिल के आसपास। मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। एक और खूबसूरत प्रोग्राम आपके समक्ष पेश है और ये प्रोग्राम लेके आए हैं यूके से रवि कुमार। रफी साहब के गीतों को खूबसूरत तरीके से आपने पिरोया है, आपने अपने स्वर में गाया है और उन गीतों को हम तक पहुंचाया है, तो हम वेलकम करते हैं रवि कुमार साहब का जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर, आपकी आवाज आपकी पहचान। और हम क्या दें मिसाल।

आवाज में जो एक्टिंग अदायगी थी रफी साहब के, वही अदायगी रवि कुमार साहब की है। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं ये खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता जिसे लेके आए हैं रवि कुमार साहब यूके से हमारे साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो पर।

अमानत फिल्म के लिए इस गीत को रफ़ी साहब ने गाया था और आज हमारे साथ गा रहे हैं रवि कुमार साहब। इस गीत का संगीत दिया था रवि ने और गीत था साहिर लुधियानवी का। बेहद खूबसूरत गीत हम सुन रहे हैं रवि कुमार साहब की आवाज़ में। आपकी आवाज़ आपकी पहचान, जी हाँ, जयपुर रेडियो की पहचान बन चुकी है आपकी आवाज़। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं।

गीत की अपनी जुबान होती है, गीत की अपनी कहानी होती है, और रवि कुमार ये कहानी कह रहे हैं अपनी जुबानी। आपकी आवाज आपकी पहचान, अब क्या मिसाल दूं।

इंसान बन गई है किरण महताब की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबा की। एक खूबसूरत गीत आरती फिल्म से लिया गया है और ऑन स्क्रीन प्रदीप कुमार और मीना कुमारी एक्ट्रेस पे फिल्माया गया था। इस गीत का संगीत दिया था रोशन ने और इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। बेहद खूबसूरत गीत है ये और इस गीत को हम रोमांटिक गीतों में अमर गीत कह सकते हैं। और हमारे आज के जो स्वर हैं रवि कुमार साहब, उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस गीत को अपनी आवाज से सजाया और आप तक पहुंचाया। बहुत बधाई, आपकी आवाज आपकी पहचान।

शमशान नहीं देखा, इस फिल्म का ये गीत शमी कुमार साहब पर ऑन स्क्रीन फिल्माया गया था और अमिताभ ही साथ में एक्ट्रेस के रूप में था और गीत था साहिर लुधियानवी साहब का और आवाज हमारे इस प्रोग्राम में रही रवि कुमार साहब की। आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी स्पेशल प्रोग्राम और उसको स्वर दे रहे हैं हमारे आज के स्वर रवि कुमार। आपकी आवाज आपकी पहचान।

फिल्म असली नकली का ये गीत देवानंद साहब और साधना एक्ट्रेस पर फिल्माया गया था। ऑन स्क्रीन म्यूजिक शंकर जयकिशन साहब का था और गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और अपनी आवाज अपने स्वर में सजाया हमारे लिए यूके से रवि कुमार साहब ने। ये खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आपकी आवाज आपकी पहचान और रफी साहब का एक बहुत मशहूर गीत है ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। आइए सुनते हैं रवि कुमार साहब से ये गीत। आपकी आवाज आपकी पहचान

इस गीत को फिल्म महबूब की मेहंदी के लिए रफी साहब ने गाया था। म्यूजिक इस गीत का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का रहा और गीत लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। और आपके लिए आज के स्वर में रवि कुमार साहब ने ये गीत आप तक पहुंचाया। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

जब भी मौसम की बात चलेगी तो लोफर फिल्म का ये गीत कभी भी हमारे जहन से दूर नहीं हो सकता। इस गीत को ऑन स्क्रीन एक्टर धर्मेंद्र साहब और मुमताज पर फिल्माया गया था। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी साहब ने।

आपने सुना फिल्म प्यार ही प्यार का ये गीत। ऑन स्क्रीन धर्मेंद्र और वैजयंती माला पर फिल्माया गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और हमारे आज के स्वर रवि कुमार आप तक पहुंचा रहे थे ये गीत, आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड आज के

तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। जी हाँ, गीत को संगीत से सजाया था एसडी बर्मन साहब ने और इसको ऑन स्क्रीन देवानंद साहब और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था। और आप तक इस गीत को पहुंचा रहे थे हमारे आज के स्वर, आज के कलाकार रवि कुमार साहब। आपकी आवाज़, आपकी पहचान।

आज के छोटे प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। अभी आपने सुना एक गीत जिसे आवाज दे रहे थे रवि कुमार आज के स्वर। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था और धर्मवीर फिल्म से इस गीत को लिया गया। ऑन स्क्रीन जीनत अमान और धर्मेंद्र पे फिल्माया गया था ये गीत। आपकी आवाज आपकी पहचान आप सुन रहे हैं आज के स्वर प्रोग्राम में रवि कुमार साहब के वो गीत जो रफी साहब ने गाए हैं।

मुझे दर्द दिल का पता न था मुझे आप किस लिए मिल गए। एक खूबसूरत गीत आकाशदीप फिल्म से था। इसका संगीत दिया था चित्रगुप्त ने और गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। और आज इसको स्वर दे रहे थे हमारे आज के स्वर रवि कुमार साहब। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। खूबसूरत गीतों का ये गुलदस्ता लेके आए हैं यूके से रवि कुमार साहब जयपुर।

0: हसरत जयपुरी साहब का गीत, शंकर जयकिशन का संगीत और ऑन स्क्रीन शमी कपूर साहब और आशा पारिक पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म पगला कहीं का से था और इसे आज स्वर दे रहे थे इस मंच से हमारे आज के स्वर रवि कुमार साहब यूके से। दुआ है हमारी आवाज सुने आपकी दुनिया सारी। रवि कुमार साहब बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं, यूं ही गाते रहें और यूं ही हमारे लिसनर तक अपने गीत पहुंचाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये संगीतमय सफर यहीं तक, आपकी आवाज आपकी पहचान, बहुत आभार बहुत शुभकामनाएं रवि कुमार साहब यूके से। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: हे हाय दोस्तों, मेरा नाम है, अब तक तो आप मेरी आवाज पहचान गए होंगे। इतना पुराना और लंबा रिश्ता जो बन गया है आप लोगों के साथ, कोई फेमस सेलिब्रिटी तो नहीं, फिर भी खजाने की कमी नहीं है मेरे पास। अनमोल खजाने लेके आई हूँ अपने आओ झूमे गाए म्यूजिक ग्रुप से, सिर्फ जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान पे। मेरा नाम है रति भार्गव और पास में मेरे जो कोहिनूर हैं, नवरत्न हैं, उनके नाम कुछ यूं हैं: किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आरडी बर्मन, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, गुलजार और हमारी बॉलीवुड जगत के जगमगाते सितारे जैसे माधुरी, श्रीदेवी, डिंपल कपाड़िया, शर्मिला टैगोर, जूही चावला, जयप्रदा, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, शाहरुख खान, सनी देओल, संजय दत्त, आशा पारेख, शर्मिला, नीतू वगैरह वगैरह। हमारा आज का ये एपिसोड है बॉलीवुड की चांदनी और लोगों के दिलों पर राज करने वाली हवा हवाई पे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए हैं, मैं बात कर रही हूँ श्रीदेवी की, जो सिनेमा जगत की पहली महिला सुपरस्टार रह चुकी हैं। श्रीदेवी को लेडी अमिताभ बच्चन और पहली सुपरस्टार का दर्जा दिया जाता है। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का जन्म हुआ था शिवकाशी तमिलनाडु में। श्रीदेवी ने 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और चाइल्ड एक्टर के तौर पर साल 1967 में तमिलनाडु कंदन करुणे में काम किया था। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले श्रीदेवी तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी थी। श्रीदेवी ने बॉलीवुड में 4 दशक से भी ज्यादा समय तक लोगों को अपनी एक्टिंग से मनोरंजन किया। तो चलिए दोस्तों, आपको श्रीदेवी से जुड़े कुछ अनकहे किस्से सुनाते हैं और उनके कुछ बेहतरीन गाने जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो सुनते हैं श्रीदेवी का ये जादू भरा परफॉर्मेंस बिमल और कविता की मधुर आवाज।

चांदी के पर्दे पे जो चांदनी थी, जो बेजान सीन को अपने प्रेजेंस से जिंदा कर देती थी, और जिनकी आंखों में इन्फेक्शस सी चमक थी, एन एक्ट्रेस हु लिटरली ब्रॉट स्क्रीन टू लाइफ, वो लाइफलेस कैसे हो सकती हैं? श्रीदेवी, आपने हमें जादू दिखाया और जादू सिखाया। मेरी आंखों के सामने उभर रहे हैं वो इम्पेक्शियस एक्सप्रेशंस, वो चमकती आंखें, वो दमकते एक्सप्रेशंस, और हम तो उन्हें ऐसे ही याद रखेंगे। ट्रांसपेरेंट छतरी, ट्रांसपेरेंट रेनकोट, ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंसेस, श्रीदेवी सच में इस जादू के लिए शुक्रिया। फिल्म लम्हे को 30 साल हो चुके हैं। इस फिल्म में श्रीदेवी और अनिल को

क्या आप जानते हैं दोस्तों, श्रीदेवी का वास्तविक नाम श्री अम्मा अय्यर अय्यप्पन था। पर्दे पर उनके लिए श्रीदेवी नाम तय किया गया। बता दें कि श्रीदेवी उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल दोनों के साथ काम किया। श्रीदेवी के करियर की बात करें तो उन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर साउथ इंडस्ट्री से शुरुआत की थी। इसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने 16 सावन से डेब्यू किया, जिसमें वह जितेंद्र के साथ नजर आई थी। जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में से 13 उनकी सुपरहिट फिल्में रही। सुनते हैं ये हमारा अगला गाना फिल्म हिम्मत वाला से, बोल इंडिवर के, म्यूजिक दिया बपीदा ने और गाया बेहद खूबसूरती से किशोर दा और लता मंगेशकर ने। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं आपके लिए किशोर और संगीता अपनी सुरीली आवाज से।

श्रीदेवी ने 90s में आई थिंक लड़कियों से बहुत सारा प्रेशर हटा दिया है ना। हमेशा स्लिम होना, हमेशा खूबसूरत दिखना, एलिगेंट होना, प्रॉपर होना, स्टाइल मारना कोई जरूरी नहीं, ये समझा दिया। बी योर नेचुरल मैन, क्रेजी सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, आई मीन जो मूछे लगा के आंखें भेंगी करके भी पूरे देश का दिल जीत सकती थी वो कितनी हेल्दी रोल मॉडल थी, सोच के देखिए। पर्दे पर अपने चुलबुले अंदाज से सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली थी हवा हवाई, हर उम्र के लोगों की पसंदीदा थी। अगर आप भी तनाव फील कर रहे हो, अपना मूड अच्छा करने के लिए बस ये गाना सुन लीजिए और आपका मूड झट से अच्छा हो जाएगा। इसे सुनाने आ रही है गायत्री और मनीषा आपके लिए।

सिग्नेचर श्रीदेवी इन ऑल हर ग्लोरी, एक ही इंसान एक साथ मैड, इनसेन, सेक्सी, एलिगेंट, ब्यूटीफुल एंड स्टेलर परफॉर्मर कैसे हो सकता था। एक तरफ ऐसे गानों की मैडनेस सच एज न जाने कहां से आई, या करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, या फिर ऑफ कोर्स हवा हवाई न जाने कितने, तो दूसरी तरफ सेंसुअलिटी जो स्क्रीन पे आग लगा दे, मतलब जाबाज ले लो या मिस्टर इंडिया का दूसरा गाना ले लो एंड मेनी अदर्स, बीच में हम मेस्मराइज्ड। सुनते हैं दोस्तों वो गाना जाबाज मूवी का, हर किसी को नहीं मिलता, श्रीदेवी की स्टेलर परफॉर्मेंस जिसने आग लगा दी थी, मेरी यानी रति और गगन की आवाज में।

हिंदी फिल्मों में समाज को संपूर्ण बनाने की सारी विधा मौजूद है। नायक की खुददारी हो या नायिका का त्याग, या फिर आपसी प्रेम भाव का आचार विचार हो या समाज को एकजुट रखने का संदेश, यह सभी चीजें हिंदी फिल्मों में दिखाई जाती हैं। नायक और नायिकाओं के बीच प्रेम और आकर्षण की मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी और अनिल कपूर पर फिल्माया गीत कांटे नहीं कटते दिन ये रात इश्क और हुस्न की इंतहा को जग जाहिर करता है। किशोर कुमार और अलीशा चिनॉय की आवाज ने इस गीत को मधुरतम बनाया है। गीत आई लव यू के भाव से शुरू होता है और इसी भाव के साथ खत्म भी होता है। आइए सुनते हैं ये गीत प्रेरणा और रेस की आवाज में।

1989 में प्रदर्शित फिल्म चांदनी का ये गीत, इसमें श्रीदेवी और ऋषि कपूर ने पानी में आग लगा दी थी। हुस्न की अदा बारिश के मौसम में इस गीत में काफी सुहावनी बन पड़ी है। गीत संगीत और श्रीदेवी के बेजोड़ नृत्य के गीत को मधुर अंदाज दिया है आनंद बख्शी के लिखे इस गीत में। गीत काफी मनोहरी बना। इसे सुनते हैं मानवेंद्र और संगीता की सुमधुर आवाज में।

मैं आपके साथ रति भार्गव अपने आओ झूमे गायें के कलाकारों के साथ आज के इस स्पेशल सेगमेंट में याद कर रहे हैं उन्हें जो कुछ ज्यादा ही जल्दी चली गईं। हम उन्हें तो मिस करेंगे ही और अभी उन्हें जितनी बेहतरीन फिल्में करनी थी उन्हें भी मिस करेंगे। 80 के दशक में एक और गीत देखने और सुनने को मिला जिसमें हुस्न और इश्क का बेजोड़ संगम था। हमारा अगला गाना हुस्न और इश्क की अदा पर चांदनी मूवी का ये गाना सुनते हैं प्रियंका और गिरीश की मधुर आवाज में।

श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा में एक कमर्शियल हीरोइन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में नागिन से लेकर चाल पास, चांदनी, जुदाई, खुदा गवाह, नगीना, मिस्टर इंडिया जैसे कई शानदार फिल्मों में दमदार अभिनय किया। अभिनेत्री फिल्मी पर्दे से दूर हो गई थी, हालांकि 15 साल के लंबे समय के बाद 2013 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में शानदार वापसी की। सुनते हैं हमारा अगला नगमा दो दोस्तों की दास्तान पे, और इसे सुनाने आ रहे हैं मुकेश और मंदार अपनी मधुर आवाज में।

रानी मेरा नाम, जूली और सोलवा सावन जैसी चुटपुट फिल्में करने के बाद हिंदी सिनेमा को अपने करियर का अगला मुकाम बनाने वाली श्रीदेवी 1983 में जितेंद्र के साथ फिल्म हिम्मत वाला की तो पूरी हिंदी पट्टी में हंगामा हो गया था। इतनी मादक और इतनी मोहक अभिनेत्री इससे पहले हिंदी सिनेमा में कोई दूसरी उनको नजर ही नहीं आई। इसके बाद श्रीदेवी ने हिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। आखिरी रास्ता, नगीना, जाबाज और कर्मा जैसी फिल्म करने के बाद वह 3 साल में ही नंबर 1 की कुर्सी पर आ बैठी थी। इसके बाद मिस्टर इंडिया, निगाहें से होते हुए करियर उनका अगला टर्निंग पॉइंट था चांदनी। श्रीदेवी को सफेद लिबास में ढली चांदनी देख उस समय हर लड़की उन्हें कॉपी करना चाहती थी। श्रीदेवी की ये फिल्म गवाही देती है इस बात की कि आज 30 साल के बाद भी चांदनी की चमक फीकी नहीं पड़ी है। और सुनते हैं उनका ये सुपरहिट गाना रूही और विश्वजीत की सुमधुर आवाज में।

0: मुझे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।
1: डिंपो छे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

0: कौन? मैं?
1: यस यस यस यस।
0: क्यों?
1: कोई फूल कोई तोहफा, तुम कुछ भी साथ नहीं लाते, बड़े बहू समझाऊं तुम्हें?

0: सपनों से सुंदर लग रही थी चांदनी बनकर इस गाने में, याद रहेंगी वो हमें हमेशा। रेस्ट इन पीस श्रीदेवी जी, थैंक्स फॉर द मैजिक। श्रीदेवी के जितने सॉन्ग्स करो कम है, इतने सॉन्ग्स हैं, इतनी बातें हैं, पर ट्रिब्यूट पूरा नहीं लग रहा। भरपूर तब होता है ट्रिब्यूट जब भरपूर जी कर जाए वो जिन्हें हम चाहते। ऐसे ही अचानक से बेवक्त बीच में से जब कोई चला जाए, व्हाट डू यू से, हाउ डू यू रिमेम्बर देम। जिस चेहरे में इतनी जान थी वो अब बेजान है, अभी तक यकीन नहीं होता है। इतनी जिंदा दिल परफॉर्मेंस जो दे गई वो अब खुद जिंदा नहीं है, पर रहेंगी ना हमेशा उसी चांदी के पर्दे पर जिसकी वो चांदनी थी, एंड ऑफ कोर्स हमारे दिलों में भी।
1: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम भजनों की सरिता में। लक्ष्मी का सादर प्रणाम। मित्रों, भक्ति गीत प्रार्थना की एक विशेष अंश है, भगवान के साथ एक मिलाप का समय है। प्रार्थना में हम अपने आप को एक ऐसी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं

वाह संजीव जी, बहुत खूब। मित्रों, भारतीय परंपरा के कई महान संत थे, जैसे रामानुजाचार्य, संत रविदास, कबीर आदि, जिन्होंने हमें धार्मिकता का सही मार्ग दर्शाया। इनमें से एक थे गुरु अर्जन, जिन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ को संकलित किया, जिसमें पिछले कई गुरुओं के गुरुवाणी शामिल थे। गुरु ग्रंथ साहिब में आधे से अधिक शब्द गुरु अर्जन द्वारा रचित हैं। चलिए एक शब्द सुनते हैं ललिता कृष्णमूर्ति की मधुर वाणी में।

वाह ललिता जी, अति मधुर प्रस्तुति। मित्रों, भक्ति संगीत में ऐसी शक्ति है कि वह सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। संगीत ऐसा सात्विक आनंद है जो जाति, धर्म, लिंग, आयु, वर्ग सभी से परे है। संगीत सबके लिए है। संगीत को न सीमाओं से बांधा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये आबाद धारा सबके लिए सर्वत्र सुलभ है। हमारा अगला गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए इंदी वर्जी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्या शंकर जी।

वाह विद्या जी, इस सुमधुर प्रस्तुति से मन प्रफुल्ल हुआ। मित्रों, हमारे देश के संतों ने समय समय पर यह शिक्षा दी है कि वास्तव में भगवान और उनके नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम भगवान राम से भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि कलयुग में श्री हरि के नाम के जाप से ही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सब में राम और राम में है सब। तुलसी का प्रभु भी वही, नानक का रब भी वही। नाम भजन में ज्योति असीमित। पेश है एक राम धुन जो मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है प्रसिद्ध एल्बम राम श्याम गुणगान में। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागता पॉल और संजय हर्न।

और संजय जी हम मन विभोर हुए। मित्रों, भगवान राम एक अवतार पुरुष थे, असाधारण पुरुष थे, करुणा मूर्ति थे। ये सभी के प्रति स्नेह और अपनापन का सामान्य भाव रखते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन हो। वह तो ऐसे करुणा मूर्ति थे जो उनके शत्रु के प्रति भी स्नेही और दयालु थे। चलिए सुनते हैं एक भजन जो श्री अरबिंदो सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा रचाया गया है। इस भजन को स्वरबद्ध किया था जगजीत सिंह जी ने। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय फड़के जी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बेहद खूबसूरत संजय जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा साथ दिया। मित्रों, सुविचार, सत्संग और निरंतर भगवान के जाप से सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होती है। हम आशा करते हैं आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से प्रकाशित हो।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
0: मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि संकट के समय हम भगवान की ओर रुख करते हैं। हम घोर विनम्रता और प्रत्याशा दोनों के दोहरे रवैया के साथ आते हैं। हम परमेश्वर को आदेश तो नहीं देते, लेकिन हम साहसपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनके सिंहासन के सामने आते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। नक्शलयालपुरी की ये पंक्तियां फिल्म राम नगरी के लिए लिखा गया था। इसे संगीत से सजाया था जयदेव जी ने। इस गीत को मूल रूप से हरिहरन जी और नीलम सानी जी ने गाया है। आपके लिए इस गीत को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय फड़के जी।

वासंजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, एक व्यक्ति का आंतरिक जीवन और बाहरी ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। मन एक दर्पण की तरह है, जो कुछ भी सामने आता है वह उसमें प्रतिबिंबित होता है। आप जिस किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी भावनाएं और उसकी मनस्थिति आप पर टिकी रहती है। अगर आप खुश लोगों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। दुखी चीजों के बारे में सोचकर आप दुखी महसूस करते हैं। इसलिए साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस गीत को काजल फिल्म के लिए संगीतकार रवि ने स्वरबद्ध किया था और आशा भोसले जी ने अपने मधुर वाणी से इसे सजाया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मोनिका दश और अनुराधा वैद्यनाथन।

वाह मोनिका जी और अनुराधा जी, अति मधुर प्रस्तुति। हमारे अगले भक्ति गीत में कौशल्या मैया कागर से पूछती है, तुम सच बोलो और मुझे बताओ कि मेरे प्राणों से प्यारे वे लोग कब आएंगे। तुलसीदास जी की गीतावली से ये रचना बैठी सगुन मनावती माता, आइए सुनते हैं संजय हरने जी की आवाज में।

बड़ी सुंदर प्रस्तुति संजय जी, आइए स्वागत करते हैं इस खूबसूरत शिव धुन के साथ। इस पारंपरिक धुन को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय हरने जी, संजय फड़के जी, अनूप शर्मा जी, जय कृष्णन जी, ललिता कृष्णमूर्ति, श्वेता, शोमा सी रॉय, प्रेरणा जकादार, मधुलिका शर्मा और स्वयं मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बेहद खूबसूरत प्रस्तुति, हम सचमुच मन विभोर हुए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम भजनों की सरिता। इस भक्तिमय संगीतमय साधना को प्रस्तुत कर रही थीं लक्ष्मी बालाचंद्रन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: आप सुन रहे थे बिंदु व्यास की आवाज में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो आपका अपना रेडियो,
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा?
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
0: आज की हमारी सिंगर है दुबई की।

जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम भी हमने यही रखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आप सुन रहे हैं राम रेडियो। जी हाँ, स्वतः ही ये नाम मुंह से निकला है और आप तक पहुंचा है। और जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को अनाउंस किया, जयपुर रेडियो के सभी सिंगर्स ने हमें बहुत ही उत्साह दिया और हर्ष से भरे हुए अपने गीत अपनी आवाज में हमें प्रेषित किए। हम उन सब का आदर करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और सभी के गीत हम इस मंच पर इस प्रोग्राम के तहत रखेंगे, जिसका नाम है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आज की इस संगीत यात्रा की शुरुआत हमने की है दुबई की बहुत ही सुरीली सिंगर संगीता माल्या। कुछ गीतों में आपका साथ देंगे यूके के रवि कुमार। तो शुरू करते हैं ये सुरीली यात्रा का विशेष प्रोग्राम, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।

हे राम, तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है। कोई सिंगर बन जाए सहज सौभाग्य है, और ये सहज सौभाग्य जयपुर रेडियो के सभी सिंगर्स को प्राप्त है। राम का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे सभी सिंगर्स पे, लिस्टर्स पे बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम वेलकम करते हैं संगीता माल्या का। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

राम स्वनाम है धाम, राम धन्य है नाम, राम को प्रणाम। आइए राम को बार बार प्रणाम।

राम भजन करमन, राम है स्वनाम धाम, राम है स्वनाम धन, राम धन्य है नाम, राम को प्रणाम, राम धाम को प्रणाम। अयोध्या में आए हैं श्री राम, वो राम जो केशव है, जो माधव है, जो अच्युत है और जो सबके दृष्टा है, उस राम को प्रणाम, उस केशव को प्रणाम। अगले भजन में संगीता माल्या, अच्युतम केशवम।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का राम रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रोग्राम पायू जी मैंने राम रतन धन पायू, और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं दुबई से संगीता माल्या। हे राम, जग में सबसे सांचा तेरा नाम, हे अवध बिहारी पधारो, स्वागत है अभिनंदन है आपका। इस गीतमाला में इसको सफल बनाएं और हमारे सिंगर्स के साथ आप भी गाएं। मैं खोजता रहा अपने आप को, खोजता रहा सच को, लेकिन सच तो केवल केवल और केवल आपका ही नाम है। संगीता माल्या के साथ।

आप सुन रहे हैं राम रेडियो और राम से कृपालु कौन है? कोई नहीं ना, उसकी दयालुता, उसकी कृपालुता को प्रणाम है, शत शत प्रणाम है, अभिनंदन है, स्वागत है।

श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। ये खूबसूरत भजन आपने सुना रवि कुमार और संगीता माचार्य की आवाज में। आप सुन रहे हैं राम रेडियो।